आखी त्यों मानसा पवे अचिंता जाल रहाओ। सब जग बादो काल को बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार। हौं तिनके बलिहारने दर सच्चे सच्यार, सीचाने ज्यों पंखिया जाली बद्दक हाथ। गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ, बिन नामे चुन सुटिये कोई न संगी साथ।

मुख झूठे झूठ बोलना क्यों कर सूचा होए, बिन अब शब्द न मांझिए साचे ते सच होए। मुंदे गुणहीनी सुख के फिर रलिया रस मानसी साच शब्द सुख ने रहाओ, फिर परदेसी जेती है तन वांडी चूरे। ज्यों जल सोरे मछली करण पलाव करे, फिर पावे सुख पाई है जा आपे नदर करे। फिर साला ही अपना सखी सहेली नाल, तन सो है मन मोहया रत्ती रंग निहाल। सबत सवारी सोहनी फिर रावे गुण नाल, कामन काम ना आवे खोटी अवगणियार। ना सुख पेई है सहुरे झूठ जली बेकार, आवन

त्रिभवन सो प्रभ जानिए साचो साचे नाए। सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग, मैली मैल बुलाई है सो पिर रावे रंग। सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग, पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूगर जा।

कर ठाक न होए, नानक एक और अव रहा दूजा अवर न कोए। श्री राग महला पहला, गुर ते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर, निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर, सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर। पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए, निर्मल साचा एक तू होर मैल परी सब जाए। रहाओ हर का मंदिर।

देखि निरंजन पाए। गुपत प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे ले मिलाए। कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए। आस अंदेसा दूर कर क्यों मल जाए समाए, सुख को मांगे सबको दुख ना मांगे कोए। सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए, सुख दुख सम कर जानिए शब्द पेद सुख होए। वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास। सच रते से जिन गए हो सद बलिहारे जास, चौ जुग मैले मल परे जिन मुख नाम ना होए। भगती पाए विहूनिया मुह काला पत खोए, जिन्नी नाम विसारिया अवगुण मुठी रोए। खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप पछाने कर वसे हो मैं तृष्णा जाए। नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए, श्री राग महला पहला। सुन मन पूले बावरे गुर की चरणी लाग, हर जप नाम से आए तू जम डर पे दुख पाग। दुख कणों दोहागनी क्यों थिर रहे सुहाग।

गुरुमत पद सावास तिस तिसके संग मिलाओ, तिस बिन कड़ी ना जीवउ बिन नावे मर जाओ, मैं अंधले नाम ना विसरे टेक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंधुला चेले नाही ठाओ, बिन सतगुरु नाव ना पाये बिन नावे क्या सुआओ, आए गया पछतावना ज्यो सुन्ने कर काओ। बिन नावे दुख देहोरी ज्यो कलर की पीत, तब लग महल ना पाई है जब लग साच ना चीत, शब्द रपे कर पाई है निर्बाणी पदनीत। हों गुर पूछो अपने गुर पुछ कार कमाओ, शब्द सलाही मन वसे हों मैं दुख जल जाओ, सहजे हुए मिलावड़ा साचे साच मिलाओ। शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार, नाम सलाहन सद सदा हर राखे उर्धार, सो क्यों मनो विसारिय सब जिया का आधार। शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार, शब्द ही ते पाये हर नामे लगे प्यार, बिन शब्द जग पूला फिरे मर जन्मे वारो वार। सब साला है आपको वढ़ो वडेरी होए, गुर बिन आप ना चीनिए कहे सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए हो मैं करे न कोए। श्री राग महला पहला। बिन फिर तन सिगारिए जोबन बाद खुआर, ना माने सुख सेजड़ी।

मन में मनुआ जे मरे ता फिर डावे नार, इकत तागे रल मिले गल मोतियन का हार, संत सवा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार, खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाने रव रहे ना तिस काल संताए, साहिब अतुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए, वापारी बन जा रहा आए वजो लिखाए, कार कमावे सच की लाहा मिले रजाए, पूंजी साची गुर मिले ना तिस चिल ना तमाए, गुरमुख तोल तोलाए सी सच तराजी तोल, आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल, आप तुलाए तोल सी पूरे पूरा तोल, कथने कह न छुटिए ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच न पाइए बिन हर भगत प्यार, नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार, श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे

ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए सफल्यो बिरख हरी आवला छाव कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए गुर पंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार पवजल बिखम डरावनो ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार सतगुर पैका बोहे था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए जेवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए कट बिन सह दुख अगलो जम पकड़े पछताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ बिन नामे तन बाद है पूलो मार गयाथ साचो साहिब सेविए गुरमुख अकथो काथ आवे जाए पवाइए पये किरत कमाए पूरब लिखिया क्यों मेटिए लिखिया लेख रजाए बिन हर नाम न छुटिए गुरमुत मिले मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हों मैं ममता जल बलो।

बिन जल मरण तिने हे। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरुमुख अंतर रल रहा, बसे भगत पनार रहाओ। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत करे, जैसी मछली नीर, ज्यों अधिको त्यों

हमें मैल न जाए। सो हम आप पछाणिए शब्द तेज पति आए, गुरुमुख आप पछाणिए अवर के करे कराए। मिलिया का क्या मेलिए शब्द मिले पति आए, मन मत सो जीना पवे विचड़ चोटा खाए। नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला, मन मत पुले पुलाइए पुली थौर न काए। गुरु बिन को ना दिखावे अंगी आवे जाए, ज्ञान पदार्थ खोया ठगिया मुठा जाए। बाबा माया परम पुलाए, परम पुली दोहाजनी ना फिर अंक समाए। रहाओ पुली फिरे दिसंतरी, पुली द्रोह तज जाए। पुली डूंगर थल चढ़े पर मैं मन डोला।

ने जग छद्या लब लोभ अहंकार मोह ठगौली हों हुई सावर कै संसार मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर न कोए मैं तुझ बिन अवर न पावई तू पावे सुख होए रहाओ नाम सलाही रंग स्यों गुर कै सबद संतोख जो जी सह सोचल सी कूड़ा मोह न वेख वाट वटाणु आया नित चलदा साथ देख आखन आखे केतड़े गुर बिन बूझ न होए नाम वडाई जे मिले सत रपे पत होए जो तुद पावे से पले खोटा करा न कोए गुर शरणाई छुटी है मन मुख खोटी रास अष्ट तात पाप साहती करिए सबद विदास।

जिन कन मन साज सुधारिया तिस सेती निवलाए रहाओ। तन दै संतर होमी है इक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अंदिन अगन जलाए। हर नामे तुल न पुजई जे लख कोटि कर्म कमाए, अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत धराए। तन है मंचल गालिए ती मन के रोग न जाए, हर नामे तुल न पुजई सब जिठी ठोक बजाए। कंचन के कोट बत करी।

ऊंचा आखिया नीच ना दूसै कोई। इतने पांडे साजिया इक चानन के हो लोए। कर्म मिले सच पाइए थुर बख्श ना मेटे कोई। साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाए। अकथ कथा विचारिय जो सतगुर माहि समाए। अमृत

सारी सेज पतार चोआ चंदन लाइए कापड़ रूप सिगार केहू फेर लाइए छोड़ चले कारबार मेहर मलूक कहा।

निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक करिए सच नाम सिर साहा पाप चाहो मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन वे साहो मन मुख पौ जल पच मोए गुरमुख करे अथाहो श्री राग महला पहला कर दूजा मुकाम कर कर बै

गुरुमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुरु भगत न होए। आपे आप मिलाए बूझे ता निर्मल होवे कोई हर जियो सच्चा।

रहाओ। आपे हर जग जीवन दाता, आपे बख्श मिलाए, जी जंत एक आवे चारे, क्या को आप सुनाए, गुरुमुख आपे दे वडियाए, आपे सेव कराए, देख पुटंब मोह लुभाना, चल दिया नाल ना जाए। सतगुरु से गुण निधान पाया, किसकी कीम न पाई, प्रभ सखा हर जियो मेरा, अंते होए सखाई। तेरी अड़े जग जीवन दाता, मन मुखपत गवाई, बिन सतगुरु को मग न जाने, अंधे ठौर न काई, हर सुख दाता मन नहीं वस्या, अंत गया पछताई। तेरी अड़े जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया, अंग दिन भगत करें दिन राती, हूं मैं मोह चुकाया, जिस क्यों राता कैसो होवे, सच्चे सच समाया। आपे नदर करे पाओ लाए, गुर शब्दी विचार, सतगुर सेवे सहज उपजे, हूं मैं तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे, सच रखिया उद्धार। प्रभु मेरा सदा निर्मला, मन निर्मल पाया जाए, नाम निधान हर मन वसे, हों मैं दुख सब जाए, सतगुरु शब्द सुनाया, हों सद बलिहारे जाऊं। अपने मन चित कहे कहाए, बिन गुर आप ना जाए, हर जियो भगत वचन सुखदाता, कर कृपा मन वसाई, नानक सोबा सुरत दे, प्रभ आपे गुरुमुख दे वडियाई। श्री राग महला तीजा, हों मैं कर्म कमाव दे, जम दंड लगे तिन आए, जे सतगुर सेवन से उबरे, हर सेती लिवलाए, मन रे गुरमुख नाम ते आए, गुर पूरब करते लिखिया, किना गुरमत नाम समाए, रहाओ जिन सतगुर प्रतीत ना आवई, नाम ना लागो पाओ, सुपने सुख ना पावई, दुख में सवे समाए, जे हर हर की चै बहुत लोची है, किर्त नामे ते आ जाए, हर का पाना भगती मन्या, से भगत पै दर खाए। गुर शब्द दिलावे रंग स्यों, बिन कृपा ले आना जाए, जो सो अमृत नीरिय है, पी दिख फल लागे ताए, से जन सच्चे निर्मले, जिन सतगुरु नाल प्यार, सतगुरु का पान।

है, हर का नाम निधान है, जिस अंत ना पारावार, गुरुमुख से ही सो दे जिन कृपा करे करतार। नानक दाता एक है, दूजा और न कोए, गुरु प्रसादी पाये कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा, पंखी बिरख सुहावड़ा, सच चुग गए गुरु।

लाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना चाओ, तिन्ना पास न बहती है ओना कर ना गिराओ। कटिया तै नित जालिए ओना सबदना ना।

सच समाओ। हुकम ना जाने बपुणे पूले सिरे गवार, मन हट कर्म कमाऊं दे नित नित होए कुआर। अंतर शांत न आवई ना सच लगे प्यार, गुरमुखिया मोह सोने गुर के हेत प्यार। सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सच्चार आए।

आए बिन शब्द परम न चूके ना विच्चों हो मैं जाए बिन प्रीति भगत न हो वही बिन शब्द थाए न पाए शब्दे हो मैं मारिये माया का परम जाए नाम पदार्थ पाये गुरमुख सह सुभाए बिन गुर गुण न जापनी बिन गुण भगत न होए भगत वत्सल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए नानक शब्द हसा लाहिए कर्म प्राप्त होए श्री राग महला की जा माया मोह मेरे प्रभ कीना आपे परम पुलाए।

कार कमाए, सिर वडपा जी जिनी पाया सहजे रहे समाए। माया विच सहज ना उपजे, माया दूजे भाए, मन मुख कर्म कमावने।

सबद अपार आपे बख्श मिलायन पूरे गुर करतार सहजे अदृष्ट पछाणिए निरपौ ज्योत निरंकार सबना जिया का इकदाता ज्योति ज्योत मिलावन हार पूरे सबद सलाहिए।

पूरे शब्द सब सोजी होई, हर नामे रह समाए, मन मेरे सब गुरसियों चित लाए, निर्मल नाम सद नवतनो आप वसे मन आए, रहाओ हर जियो राखो अपनी शरणाई, ज्यो राखे त्यों रहना, गुर कै शब्द जीवत मरे, गुरमुख पव जल तरना, वड्डे पाग नाउ पाईए, गुरमुख शब्द सुहाई, आपके मन वसिया प्रभ करता सहजे रहा समाई, इतना मनमुख शब्द न पावे, बंधन बंद पवाया, लक्ष्यो राशि फिर आवे, दिखा जन्म गवाया, पगता मन आनंद है, सच्चे शब्द रंग राते, अंगिन गुण गावे सद निर्मल, सहजे नाम समाते, गुरमुख अमृत बाणी बोले, सब आत्म राम पछाणी, एको सेवन एक आराधे, गुरमुख अकथ कहानी, सच्चा साहिब सेवी है, गुरमुख वसे मन आए।

रोए। सतगुरु जिनी ना सेवेओ सेवित आए संसार, जम दरबदे मारिए फूक न सुने पुकार। बिरखा जन्म गवाया मर जमे वारो वार। एहो जग जलता देख के पज पै सतगुर शरणा, सतगुर सत दिलाया सदा सच संजम रहना। सतगुर सच्चा है बोहिखा सबदे पवजन करना। लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त न होई, पर पंडित मोनी थके दूजे पाए पट होई।

होए दुश्मना साफ दे पज कले सबो पजे आसरा चुके सब असराओ चुत आवे उस पार ब्रह्म लगे न पतिवाओ साहेब नितान्या का तान आए न जाई फिर सदा गुरु सब जी सच जान रहाओ जे के होवे दुबला नंग पुख की तीर दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे तीर स्वार्थ स्वाओ ना को करे।

रोग ग्रस्त पुतंग पलेतिया कद हरख कदे सोग गौण करे चौ कुंट का करी न बैसन सोए चित आवे उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए काम क्रोध मोह वस्तिया किरपन लोभ प्या

विचरे, तपे तपीसर जोगिया तीर्थ गमन करे, खट कर्मा के दुगने पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए, राज मिलक सिकदारिया रस ओगन विस्तार, बाग सुहावे सोने चले हुक्म अपार, रंग तमासे बहुविधि चाहे लग रहा, चितना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया, बहुत तनाद अचार वंत शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत पाया साजन संग परीत,

एक लूक न देवे दर्शा, एक मन ही जाता काट ना सिन ही कहाया, सब कहते हैं पाया जिस मेले सो भगता, सगल उकत उपावा त्याग शरण पावा, नानक गुरु चरण।

का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया पगतार रह समानिया सुख सेवा अंदर रखे अपनी नगर करें निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिले नाम वखाणिए सतगुर बाज न पायो सब थकी कर्म कमाए जियो ओ सतगुरु विट्टो कुमाया जिन परम पुला मार्ग पाया नदर करे जे आपनी आपे लहर लाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत करी सरकार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की तैग रखिया दोए कर मस्तक तार जियो सब संजम रहे स्यान पा मेरा प्रभ सब कुछ जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोक करे जयकार जियो मेरे गुण अवगुण ना विचारिया प्रभ अपना बिरज समारिया कंठ लाए कह रखियो न लगे न पक्की वाओ जियो मैं मन तन प्रभु ते आया जिए इच्छेड़ा फल पाया सा पाप सा सिर खसम तू जप नानक जीवे नाओ जियो तुद आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सच्चो सच वर्तदा जिस पावे किसे बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया कृपा करके अपनी आपे ने समाए जियो गोपी ने गो

निर्मल ज्योत तिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगियाया मैं रात दिह वड्याईया अन

किस जेवड अवर न कोई जियो रहाओ गोसाई महिंदा इच्छदा अम अबे थावो मिचड़ा तैन पाई सब सजना तुझ जेहा नाही कोई जियो तेरे हुक्मे सामने आया मैं सतका हल जो आया नाव बीजन लगा आस्तर हर बोहल बख्श जमाए जियो हौ गुर मिल इक पछाणदा दोया कागल चित न जानदा हर इतकै काणे लायो ने ज्यो पावे तिवे निभाए जियो तुसी पोगो पुंचो पाइयो गुर दीवान कवाए तैनाइयो हौ होआ मां।

لگا پائے جیو سن گلاں گر کہ آیا نامدان اس نام دلایا۔

तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा खसम सेती अरदास खसम सेती अरदास वखाने उर्द ध्यान लिव लागा ना मर जाद आया कल पीतर बाहुर जासी नागा जैसी कलम बुड़ी है मस्तक तैसी जीड़े पास कहो नानक प्राणी पहले पहरे हुकुम पया गरवास दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान हथो हथ नचाई एवन जा रहा मित्रा ज्यो जसदा कर कान हथो हथ नचाई प्राणी माप कह सुत मेरा चेत अचेत मूर मन मेरे अंत नहीं कच तेरा जिन रच रचिया तिसे न जाने मन भीतर कर ज्ञान कहो नानक प्राणी दूजे पहरे विसर गया ध्यान तीजे तहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा तन जोबन स्यो चित हर का नाम न चेत ही बन जा रहा मित्रा बद्दा चुके जित हर का नाम न चेत प्राणी विकल पया संग माया तन स्यो रता जोबन मता अहला जन्म गवाया धर्म से ती वापार ना कीतो कर्म ना कीतो मित कहो नानक की जय पहरे प्राणी तन जोबन स्यो चित चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा लावी आया खेत जा जम पकड़ चलाया वन जा रहा मित्रा किसे न मिलिया पेत पेत चेत हर किसे न मिलियो जा जम पकड़ चलाया झूठा रुदन हुआ दो आले छिन में पया पराया साई वक्त प्राप्त होई जिस

ज्ञान ज्ञान गुण संयम नाही जन्म मरोगे झूठे। तीरथ वर्त सुच संयम नाही कर्म तर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापे दूजा। तीजे पैरे रैन कैवन जा रहा मित्रा सर हंस उलखड़े आए जोबन कटे जरुआ जिने बन जा रहा मित्रा आव कटे दिन जाए। अंत काल पछतासी अंगले जा जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन में पया कराया। बुद्ध विसर्जी गई सियानप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रव चेतो लिवलाए। चौथे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा बिद पया तन खीन

तन चितवे तन संचवे वन जा रहा मित्रा हर नामा हर ना समाल हर नामा हर हर कदे ना समाल जे होवे अंत सखाई त्यो तन संपै माया झूठी अंत छोड़ चलिया पछताई जिसनो कृपा करे गुर मेले सो हर हर नाम समाल कहो नानक की जय पहरे प्राणी से जाए मिले हर नाल चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा हर चलन वेला आदि का सेवो पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्रा सब चली रहन विहादी हर सेवो खिन खिन टिल मूल न करे हो जित अस्थिर जुग जुग होवो हर सेती सद मानो रलिया जन्म मरण दुख खोवो गुर सतगुर स्वामी पेद न जानो जित मिल हर भगत सुखांदी कहो नानक प्राणी चौथे पहरे सफल्यो रहन भगता दी श्री राग महला पंजवा पहले पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा तर पाए ता उदरे माहे दसी मासी मानस की आवन जा रहा मित्रा कर मोहलत कर्म कमाए मोहलत कर गिनी कर्म कमाने जैसा लिखत तुर पाया मात पिता पाई सुत बनता तिन पीतर प्रभु संजोया कर्म सो कर्म कराए आपे इस जंते वस किछ नाहे कहो नानक प्राणी पहले पहरे तर पाए ता उदरे माहे।

बहु जोनी दुख पावे। सिद्ध नहार विसारिया स्वामी, एक निमख ना लगो ध्यान, कहो नानक प्राणी चीज पहरे, भिक्षंचे अंध अज्ञान।

गुरमुख हर हर सदा ते आए, सैया विच फिरे सुहेली, हर दरगे बहा लुडाए, लेखा धर्म राय की बाकी, जप हर हर नाम।

अज्ञान अंधेरा कटिया गुरु ज्ञान पर चंड बलाया बलिया गुरु ज्ञान अंधेरा बिनसिया हर रतन पदार्थ लादा हो मैं रोग।

जिन पेवकड़े नाम समालिया सब सफलियो जन्म तिना दा गुरमुख जिना मन जिन पासा टालिया हर संत जना मिल कारज सोया वर पाया पुरख आनंदी हर सत मेरे बाबुला हर जन मिल जंज सुहंदी हर प्रभ मेरे बाबुला हर देवो दान में दाजो हर कपड़ो हर शोभा देवो जित सवरे मेरा काजो हर हर पंक्ति काज सुहेला गुर सतगुर दान दिवाया खंडवर पंड हर शोभा होई इहो दान नार लै रलाया और मनमुख दाज जे रख दिखा ले सो कूड़ अहंकार।

चरण कमल चितलाए। जल थल पूर रहा बनवारी, कट कट नदर निहाले। नानक सिख दे मन प्रीतम, साध संग प्रम जाले। मन प्यारिया जी मित्रा, हर दिन झूठ पसारे। मन प्यारिया जी

पैर प्रभु जापे। आप जुगादि सेवक स्वामी पगता नाम आधारे, नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे। मन प्यारिया जियो मित्रा हर लब्दे खेप सवली, मन प्यारिया

दुख मिटाया। चित्रगुप्त का कागज फाड़िया, जम दूता कछु न चली। नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लदे खेप सवली। मन प्यारिया जियो मित्रा, कर संता संग निवासो। मन प्यारिया जियो मित्रा, हर नाम जपत परगासो। सिमर स्वामी सुखे गामी, इच्छ सगली पुनिया। पुरबे कमाए श्री रंग पाए, हर मिले चिरी विचुनिया। अंतर बाहर सर्वत रविया, मन उपजिया दिशासो। नानक सिख दे मन प्रीतम, कर संता संग निवासो। मन प्यारिया जियो मित्रा, हर प्रेम भगत मन लीना। मन प्यारिया जियो।

आपे ही आप मोहे हो। जस नानक आप सुनियो हो, संत प्रेम खगौरी पाए रि जाए, गोविंद मन मोहया जियो। संतन के प्रसाद अगाध कंठे लग सोया जियो, हर कंठ लग सोया दोख सब जोया। भगत लखन कर वस पए, मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे। जन्म मरना सब मिट गए, सखी मंगलो गाया इच्छ पुजाया। बहुड़ न माया होया, कर गैली ने नानक प्रभ प्यारे। संसार सागर नहीं पोया दखना, साईं नाम अमोल।

हर हर उत्तम नाम है जिन श्रेया सब कोई जियो, हर जी सबे प्रतपाल दा कट कट रमैया सोए, सो हर सदा त्याई है तिस बिन अवर न कोए, जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए, जन नानक नाम ते आया हर अंत सखाई होए, मैं हर दिन अवर न कोए, हर गुरसरण आई पाई है मन जारिया मित्रा, वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना विण पाया हर किने न पाया नाओ, विच हो मैं कर्म कमाव दे ज्यो वेसुआ पुत ने नाओ, पिता जात ता होई है गुर तुठा करे पसाओ, वद पागी गुर पाया हर एनस लगा पाओ, जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ, मन हर हर लगा चाओ गुर पूरे नाम दृढ़ाया, हर मिलिया हर प्रवनाओ रहाओ, जब लग जोबन सांस है तब लग नाम से आए चल।

नाम न चेत्यो से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम से आए। मन हर हर पीत लगाए वट पागी गुर पाया गुर सब जी पार लगाए। रहाओ हर आपे आप उपायदा हर आपे दे वैले हर आपे परम पुलायदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन प्रगास है से विरले तेई के। हों बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल प्रगासिया मन हर हर उठड़ा है। मन हर हर जपन करे हर गुर शरणाई पज पो। जिंदु सब किल विख दुख पर हरे। रहाओ कट कट मैया मन वसै क्यों पाई है कित पत। गुर पूरा सतगुर पेटी है हर आए वसै मन चित। मैं तार नाम आधार है हर नाम में ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम तिराया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरु बचनी हर प्रभ जानिया। सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिनको पूरब लिखिया से आए मिले गुर पास। सेवक पाए बन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वणज वपारिया जिन वखर लगेड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया जिना आप सुखा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी।

आओ आपो जे को भला कहाए नानक ता पर जा पै जा पत देखै पाए। महला दूजा जिस प्यारे सोने हो तिस आगे मर चलिए त्रिज जीवन संसार ता कै पाछे जीवना पौड़ी। खुद आपे धरती साजी है चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट खुद साजिया व्यापार करीवे इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जम काल ना व्यापई जिन सच अमृत पीवे कोई आप छुटे परवार स्यों तिन पिछे सब जगत छुटीवे। श्लोक महला पहला कुदरत कर कै वस्या सोए वक्त विचारे सो बंदा होए कुदरत है कीमत नहीं पाए जा कीमत पाए ता कहीं ना जाए सरे सरयत करें विचार बिन बूझे कैसे पावे पार सिद्ध कर सिजदा मन कर मकसूद जे तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा गुरसभा एव ना पाईए ना नेड़े ना दूर नानक सतगुर ता मिले जा मन रह हदूर। पौड़ी सपत दीप सपत सागरा नव खंड चार वेद दस अस पुराणा हर सबना विच तू वरतदा हर सबना पाणा सब तुझे त्यावे जी जंत हर सारग पाणा जो गुरमुख हर आराध दे तिन्हो कुर्बाणा तू आपे आप वरतदा कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा कलो मसाजनी क्या सदाई है हिरदे ही लिख ले हो सदा साहिब कै रंग रह कबू न टूटसने हो। कलो मसाजनी जायसी लिखिया भी ना ले जाए नानक सह प्री

व्यो पाए, सतगुरु सत दृढ़ाया सत रहो निवलाए, नानक सब जी सच है करमी पल्ले पाए पौड़ी। हर अंदर बाहर एक तू तू जाने पेत, जो की कह सो हर जानदा मेरे मन हर चेत, सो डरे जे पाप कमावदा तरमी विरसेत, तू सच्चा आप न्याओ सच ता दरिया केत, जिना नानक सच पछाणिया से सच रलेत। श्लोक महला तीजा। कलम जलो सन मसवाणी है, कागज भी जल जाओ, लिखण वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ, नानक पूरब लिखिया कमावना अवर ना करना जाए। महला तीजा। होर कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार, नानक बिन नावे को थिर नहीं पढ़ पढ़ हो एक वार पौड़ी। हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का, हर की वड्याई वड्डी है जा न्याओ है धर्म का, हर की वड्याई वड्डी है जा फल है जी का, हर की वड्याई वड्डी है जा ना सुनई कह चुगल का, हर की वड्याई।

कालिया बार चिटविया रीसा करें तिनाड़िया जो सेवे दर खलिया नाल खसमे रतिया माने सुकर लिया होंदे तान नितानिया रह निमानिया नानक जन्म सकार था जे तिनके संग मिला। पौड़ी तू आपे जल मीना है आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएदा आपे विच सेवाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हत्था विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएदा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर तुदो बार किच नहीं गुर सब्दी वेख निहाल। श्लोक महला तीजा हुक्म ना जाने बहुता रोवे अंदर तोखा नींद ना सोवे जे तन खसमे चले रजाई दर कर शोभा महल बुलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई। महला तीजा मन मुख नाम विहूनिया रंग कुसुम्बा देख न पुल इक्का रंग दिन खोड़िया सोचा इसदा मुल दूजे लगे पत मोए मूरख अंध गवार

पौड़ी। शिष्ट उपाई सब तुद आपे रिजक समाया, एक वल छल करके खाम दे मोह कूर कुसत तिन्नी ताया। तुद आपे पावे सो करें, तुद ओते कम कोई लाया, इकना सच बुझायोन तिना अतुट पंडार देवाया। हर चेत खाहे तिना सफल है, अचेता हथ तदाया। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाने, माया मोह सुवाए, दूजे पाए हर नाम विसारिया, मन मूरख मिलै सजाए। जिन जियो पिंड दिता तिस कभू न चेते, जो देंदा रिजक समाहे, जम का पाथा गलो न कटिए, फिर आवे जाए। मन मुख किछु न सूजे, अंगले पूरब लिखिया कमाए, पूरे पाग सतगुर मिले, सुखदाता नाम वसे मन आए। सुख माने सुख पहनना, सुखे सुख विहाए, नान सो नाओ मनो ना।

माया सतनाम गुण तास गुरमति आप पछाणिया राम नाम प्रगास सचो सच तमावना वडियाई वड्डे पास जियो पिंड सब तिस्ता शिव करे अरदास सचे सब सलाना सुखे सुख निवास जप तप संजम मने माहे बिन नावे त्रिग जीवास गुरमति नाव पाईए मनमुख मोह विनाश ज्यों पावे त्यों रास तू नानक तेरा दास पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब ना रास सब तुदे पासो मंग दे नित कर अरदास जिस तू दे तिस सब किछ मिले इक ना दूर है पास तुद बाजो थाओ को नाही जिस पासो मंगी

ता कर ही परचा पाए आत्मा अडोल ना डोलई गुर कह पाए सुभाए गुर विण सहज न आवई लोभ मैल ना विचों जाए खिन पल हर नाम मन वसे सब अर्थ तीरथ नाए सच्चे मैल न लग गई मन लागे दूजे पाए तोती मूल न उतरे जे अर्थ तीरथ नाए मन मुख कर्म करे अंकारी सब दुखो दुख कमाए नानक मैला उजल कांसी है जा सतगुरु माए समाए महला तीजा मन मुख लोक समझाई है कदो समझाया जाए मन मुख रलाया ना रले पै किरत फिराए लिवतात दोए राह है हुक्मी कार कमाए गुरमुख अपना मन मारिया सबद कसवटी लाए मन ही नाल झगड़ा मन ही नाल सत मन ही मंझ समाए मन जो इच्छे सोल है सच्चे सबद सवाए अमृत नाम सद कुंची है गुरमुख कार कमाए विण मने जे होरी नाल लुजना जासी जन्म गवाए मन मुखी मन हठ हारिया कूर कुसत कमाए गुर प्रसादी मन जिने हर सेती लिवलाए नानक गुरमुख सच कमावे मन मुख आवे जाए पौड़ी हर के संत सुनो जन पाई हर सतगुर की एक साखी जिस तुर पाग होवे मुख मस्तक तिन जन ले हृदय राखी हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम गुर बचनी सहजे चाखी तह पया प्रगास मिटिया अंधियारा ज्यो सूरज रहन के राखी अदिष्ट अगोचर अलख निरंजन सो देखिया गुरमुख आखी। श्लोक महला तीजा सतगुर सेवे अपना सो सिर लेखे लाए विचों आप गवाए कह रहन सच लिवलाए सतगुर जिनी ना सेवे हो तिना बिरथा जन्म गवाए नानक जो तिस पावे सो करे कहना किछु न जाए। महला तीजा मन वेकारी वेड़िया वेकारा कर्म कमाए दूजे पाए अज्ञानी पूज दे दरगह मिले सजाए आत्म दियो पूजिए बिन सतगुरु बूझ न पाए जप तप संजम पाना सतगुरु का करनी पल्ले पाए नानक सेवा सुरत कमावनी जो हर पावे सो थाए पाए। पौड़ी हर हर नाम जपो मन मेरे जित सदा सुख होवे दिन राती हर हर नाम जपो मन मेरे जित सिमरत सब किलविक पाप लहाती हर हर नाम जपो मन मेरे जित दालद दुख कुख सब ले जाती हर हर नाम जपो मन मेरे मुख गुरमुख प्रीत लगाती जित मुख पाग लिखिया तुर साचे हर सित मुख नाम जपाती। श्लोक महला तीजा सतगुर जिनी ना सेवियो शब्द ना कीतो विचार अंतर ज्ञान ना आयो मृतक है संसार लख चौरासी फेर पया मर जमे होए खुआर सतगुर की सेवा सो करे जिसनो आप कराए सोए सतगुर विच नाम निदान है कर्म प्राप्त होए सच रखे गुर शब्द स्यों तिन सच्ची सदा लिव होए नानक जिसनो मेले ना बिछड़े सहज समावे सोए। महला तीजा सो पगवती जो पगवंत जाने गुर प्रसादी आप पछाने तावत राखे इकत कर आने जीवत मरे हर नाम वखाने ऐसा पगवती उत्तम होए नानक सच समावे सोए। महला तीजा अंकर कपट पगवती कहाए पखंड पार ब्रह्म कदे न पाए पर निंदा करे अंतर मल लाए बाहर मल तोवे मन की जूठ न जाए सत्संगत क्यों बाद रचाए अंगन दुखिया दूजे पाए रचाए हर नाम न चेते बहु कर्म कमाए पूर्व लिखिया सो मेटना न जाए नानक बिन सतगुर सेवे मोख न पाए। पौड़ी सतगुरु जिन्नी त्याया से कर ना सवाही सतगुरु जिन्नी त्याया से त्रिपत अगाही सतगुरु जिन्नी त्याया तिन जम डर नाही जिन को हो आ कृपाल हर से सतगुरु कैरी पाही तिन ऐसे उठे मुख।

सो ऐसा हर नाम से आये मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय छाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरुमुख नाम जपिया वड पागी तिन निंदक दुष्ट सब कैरी पाए। नानक नाम अराध सबना ते वड्डा सब नाम अग्गे आन निवाए। श्लोक महला तीजा। वेस करे कुरूप कुलखणी मन खोटे कूड़ियार तिरके पाने ना चले हुक्म करे गावार। गुर के पाने जो चले सब दुख निवारण हार लिखिया मेट न सकी।

पे कंस को सबदे तरे प्यार, बिन नावे किने न पाया देखो हृदय विचार, नानक सा सुवालियो सुलखनी जे रावी सिरजनहार। महला तीजा, माया मोह गुवार है किसदा ना दिसे उरवार ना पार, मनमुख अज्ञानी मा दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार, पलके उठ बहु कर्म कमावे दूजे पाए प्यार, सतगुर सेवे अपना पौजल उतरे पार, नानक गुरमुख सच समावे सच नाम उरधार। पौड़ी, हर जल तल मैयल भरपूर दूजा नाहे कोए, हर आप बह करे न्याओ कुड़ियार सब मार कडोए, सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ की ओए, सब हर की करो उस्तत जिन गरीब अनाथ राख लियो।

सो प्रभ सदा सदा गुर कहे प्यार, नानक जिस नजर करे तिस मेल ले, साई सुहागण नार महला तीजा। गुर सेवा ते हर पाई है जा को नजर करे, मानस ते देवते पए त्याया नाम हरे। हौ मैं मार मिलायन गुर कै शब्द तरे, नानक सहज समायन हर अपनी कृपा करे पौड़ी। हर अपनी भगत कराए वड्याई वे खालियन, अपनी आप करे प्रतीत आपे सेव कालियन। हर भगतानो दे आनंद फिर करी बहालियन, पापियानो ना दे फिर रहने चुन नरक कोर चालियन।

इतना को न जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड कर देखत ही जमराव हसे, ऐसा तें जग परम लाया कैसे बूझे जब मोया है माया। रहाओ कह कबीर छोड़ बिखिया रस, इस संगत ने चो मरना। रमैया जपो प्राणी अनंत जीवन बाणी, इन विद पव सागर तरना। जात पावे ता लागे पाओ, परम पुलावा विच्चों जाए। उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे। इत संगत ना ही मरना, हुकम पछाण ता खसमे मिलना। रहाओ दूजा श्री राज त्रिलोचन का, माया मोह मन अगलड़ा। प्राणी जरा मरण पौ विसर गया, कुटुंब देख बिगसे कमला ज्यों। पर कर जो है कपट नरा, दूरा आयो हो जम है तना। तिन अगलड़े में रह न जाए, कोई कोई साजन आए कहे। मिल मेरे बीसला ले बाहरी बलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए। रहाओ अनेक अनेक भोग राज बिसरे, प्राणी संसार सागर पे अमर पया। माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया। बिखम कोर पंथ चालना प्राणी, रव सप तहना परवेसं। माया मो तब बिसर गया, जा तजियले संसारं। आज मेरे मन प्रगट भया है, पेखियले तर्म राओ। तह कर दल करन महाबली, तिन आग लड़े में रहन न जाए। जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिन रतड़ा नारायण। ए जी तू आपे सब किछ जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जीओ का। अचरज एक सुनो रे पंडिया, अब किछ कह न जाए। सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, त्रिभुवन मेखली लाए। राजा राम अनहद किंगरी बाजे, जाकी दिस्त नाद लिव लागे। रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश इक पाया। तिस में तार चुए अत निर्मल, रस में रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया। तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरुषोत्तम, कहो कबीर रंग राता। और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता। श्री राजबाणी भगत बेणी जियो की।

रे नर गर्भ कुंडल जब आचत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद ना एनस एक अज्ञान सोनागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारया फिर पछतावेगा मूड़या तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे रस मिस मेद अमृत दिख चाकी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज परत्रय मुख जो है सर अफसर ना पछाणिया उनमत काम महा बिख पूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख एव मन गर्भया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो पग मुख जन्म विगोया कुंडर केस कुसुम ते तौले सपत पताल की बाणी लोचन समय बुद्ध बल नाथी ता काम पवस माधानी ताते बिखे पई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुटी देह देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे थाका तेज उड़िया मन पंखी कर आंगन ना सुखाई बेनी कह सुनो रे भगतो मरण मुकत किन पाई श्री राग तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटिक जल तरंग जैसा जो पे हम ना पाप करंता अहे अनंता पतित पावन नाम कैसे हुंता रहाओ तुम जो नायक आछो अंतर

हर हर नाम में हर मन भाया, वड पागी हर नाम ते आया। गुरपुरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चले। गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया। हो रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हो रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हो हर बिन दूजा अवर ना जाना। कोई सज्जन संत मिले वड पागी, मैं हर तक प्यारा दसे जियो। हौ मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभु वसे जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, हम बारक दीन करो प्रतिपाला। मेरा मात पिता गुरु सतगुरु पूरा, गुर जल मिल कमल विकसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे। हर हर दया

चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सत्संगत हर गुण गाए जग पौजल दुत्तर तरिए जियो आओ सखी हर मेल करेहा मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई मैं दसे हर नर हरिए जियो मेरी बेदन हर गुरु पूरा जाने हाँ रह ना सका बिन नाम वखाने मैं औखद मंत्र दीजे गुरपूरे मैं हर हर नाम उधरिए जियो हम चात्रिक दीन सतगुर शरणाई हर हर नाम बूंद मुख पाई हर जल निद हम जल के मीने जन नानक जल बिन मरिए जियो माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते मिल हर दर्शन मन पी जय जियो मिल सत्संग बोली हर बाणी हर हर कथा मेरे मन भाणी हर हर अमृत हर मन पावे मिल सतगुर अमृत पी जय जियो वड पागी हर संगत पावे पागहीन प्रम चोटा खावे बिन पागा सत्संग न लब्बे बिन संगत मैल परी जय जियो मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे हर हर नाम दया मन तारे गुरमत नाम मीठा मन पाया जन नानक नाम मन पी जय जियो माज महला चौथा हर गुरु ज्ञान हर रस हर पाया मन हर रंग राता हर रस पी आया हर हर नाम मुख हर हर बोली मन हर रस टुल टुल पौदा जियो आवो संत मैं गल मेल आईए मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए हर के संत मिलो मन देवा जो गुरबाणी मुख चौदा जियो वड पागी हर संत मिलाया गुरपूरे हर रस मुख पाया पागहीन सतगुर नहीं पाया मन मुख गर्भ जूनी नित पौदा जियो आप दयाल दया प्रभ तारी मल हो मैं बिखिया सब निवारी नानक हट पट्टन विच काया हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो माज महला चौथा हाँ गुण गोविंद हर नाम ते आई मिल संगत मन नाम वसाई हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी मिल सतगुर हर रस की चै जियो तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता जाए पुछा जन हर की बाता पाप मलोवा मल मल तोवा मिल हर जन हर रस पी चै जियो सतगुर दाते नाम दृढ़ाया वड पागी गुर दर्शन पाया अमृत रस सच अमृत बोली गुर पूरे अमृत ली चै जियो हर सत्संगत सतपुरख मिलाइए मिल सत्संगत हर नाम ते आइए नानक हर कथा सुनी।

तिसके हों वारियां, मिल सत्संगत लद्दा हर सज्जन, हों सतगुरु विट्टो कुमाइया जियो, जै जै देखा तै तै स्वामी, तू कट कट रविया अंतर जामी, गुरपूरे हर नाल दिखा लिया, हों सतगुरु विट्टो सदवारिया जियो, एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया, सब इका जोत वरते पिन पिन नार

लाइया गुर प्रसादी एक नदरी आया हो सतगुरु विट्टो बताया जियो जन नानक बोले अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पानी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महले चौथे के माज महला पंजवा चौपदे घर पहला मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिल्प करे चात्रिक की न्याई त्रिखा ना उतरे सांस ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बाणी चिर होआ देखे सारंग पानी तन सो देश जहां तू वस्या मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हों कोली हों कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो रहाओ एक कड़ी ना मिलते ता कल युग होता हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता मोहे रैन ना बिहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ पाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी कर में पाया सेव करी पल चसा ना बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ राग माज महला पंजवा सारुत सुहावी जित तुद समाली सो कम सुहेला जो तेरी काली सो रिदा सुहेला जित रिदे तू उठा सबना के दातारा जियो तू सांझा साहिब बाप हमारा नौ निध तेरे अखुट पंडारा जिस तू दे सो त्रिपत अघावे सोई भगत तुम्हारा जियो सबको आसे तेरी बैठा कट कट अंतर तू है उठा सबे सांझी वाल सदाइन तू किसे न दिसे बहरा जियो तू आपे गुरमुख मुक्त कराए तू आपे मनमुख जन्म पवाए नानक दास तेरे बलिहारे सब तेरा खेल दसहरा जियो माज महला पंजवा अनहद बाजे सहज सुहेला शब्द आनंद करे सद केला सहज गुफा में

पापा गवन किया तरती परमाता एक खिन हृदय शांत ना आवे जोगी बहुड़ बहुड़ उठतावे जियो कर कृपा मोहे साध मिलाया मन तन शीतल तीरज पाया प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावे जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम अगोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावो गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधुसूदन निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाये होरत कित न पाती जियो निरहारी केशव निर्वैरा कोट जना जाके पूजे पैरा गुरमुख हृदय जाके हर हर सोई भगत एकाती जियो अमोघ दर्शन बेअंत अपारा वड समरथ सदा दा तारा गुरमुख नाम जपिए तित तरिए गत नानक विरली जाती जियो माज महला पंजवा कहया करना दिता लेना गरीबा नाथा तेरा माणा

पाणे हर गुण गुरमुख गावा, पाणे परम पवे बहु जूनी, सब किछ तिसे रजाई जियो, ना को मूरख ना को स्याणा, वरते सब किछ तेरा पाणा, अगह अगोचर बे अंत अथाह, तेरी कीमत कहन ना जाई जियो। खास संतन की देहो प्यारे, आए पया हर तेरे द्वारे, दर्शन पेखत मन आघावे, नानक मिलन सुभाई जियो। माज महला पंजवा, दुख तदे जा विसर जावे, उख व्यापे बहु विद तावे, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। सतगुर मेरा वड समरथा, जी संभाली ता सब दुख लथा, चिंता रोग गई हौ पीड़ा, आप करे प्रतपाला जियो। बारिक वांगी हौ सब किछ मंगा, देन दे तोट नाही प्रभ रंगा, पैरी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जियो। हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे, हृदय नाम दे निर्मल किए, नानक रंग रसा।

ऊंच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायन मंत्र पतायण, गुरमुख अमृत पीवा जियो। दुख सुख प्यारे तुद त्याई, ए सुमत गुरु ते

कर कृपा भगतन संग राते दिन सरैन ज्यो तुद त्याई एहो दान मोहे करना जियो माटी अंधी सुरत समाई सब किश दिया पलिया जाई अनद बिनोद चोज तमासे तुद पावे सो होना जियो जिस दा दिता सब किश लेना शक्ति अमृत भोजन खाना सेज सुखाली शीतल पवना सहज केल रंग करना जियो सा बुद्ध दीजै जित विसरे नाही सा मत दीजै जित तुद त्याई सास सास तेरे गुण गावा कोट नानक गुर चरणा जियो माज महला पंजवा सिफत सलाहन तेरा हुक्म रजाई सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई सोई जप जो प्रभ जियो पावे पाणे पूर ज्ञाना जियो अमृत नाम तेरा सोई गावे जो साहिब तेरे मन पावे तू संतन का संत तुम्हारे संत साहिब मन माना जियो तू संतन की करे प्रतपाला संत खेले तुम संग गोपाला अपने संत तुद खरे प्यारे तू संतन के प्राणा जियो उन संतन के मेरा मन कुर्बाने जिन तू जाता जो तुद मन पाने तिनके संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त अघाना जियो माज महला पंजवा तू जल निद हम मीन तुम्हारे तेरा नाम बूंद हम चात्रिक तिखारे तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो ज्यो बारिक पी खीर अगावे ज्यो निर्धन तन देख सुख पावे त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जियो ज्यो अंधियारे दीपक परगासा परता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चट कगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जियो जो जो पीवे सो तृप्तावे अमर होवे जो नाम रस पावे नाम निधान तिसे प्राप्त जिस शब्द गुरु मन बुठा जियो जिन हर रस पाया सो तृप्त अघाना जिन हर साध पाया सो नाहे दुलाना तिसे प्राप्त हर हर नामा जिस मस्तक पागी था जियो हर इकत हाथ आया वरसाने बहु तेरे तिस लग मुकत पय कनेरे नाम निधाना गुरुमुख पाई है कहो नानक विरली डीठा जियो माज महला पंजवा निद सिद रिद हर हर हर मेरे जन्म पदार्थ गैर गंभीर है लाख कोट खुशियां रंग रावे जो गुर लागा पाई जियो दर्शन पेखत पय पुनीता सगल उधारे पाई मीता अगम अगोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जियो जा को खोजे सर्व उपाय वड पागी दर्शन को विरला पाए ऊंच अपार अगोचर थाना ओ महल गुरु देखाई जियो गैर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त पया जिस हृदय सेरा गुर बंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाई जियो माज महला पंजवा प्रभ कृपा ते हर हर प्यावो प्रभु दया ते मंगल गावो उठक बैठक सोवत जागत हर त्याय सगल अवरदा जियो नाम औखद मोको साधु दिया किलबिक काटे निर्मल छिया आनंद पया निकसी सब पीरा सगल बिना से दर्दा जियो जिसका अंग करे मेरा प्यारा सो मुक्ता सागर संसारा हट करे जिन गुरु पछा

पियो। जब ते साधु संगत पाए गुर पेटत हो गई बलाए, सास सास हर गावे नानक, सतगुर टाक लिया मेरा पर्दा जियो। माज महला पंजवा। ओत पोत सेवक संग राता, प्रप्रत पाले सेवक सुखदाता, पानी पखा पीसो सेवक कै, ठाकुर ही का आहार जियो। काट सिलक प्रभ सेवा लाया, हुकम साहिब का सेवक मन पाया, सोई कमावे जो साहिब पावे, सेवक अंतर बाहर माहर जियो। तू दाना ठाकुर सब विद जाने, ठाकुर के सेवक हर रंग माने, जो किछ ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो। अपने ठाकुर जो पहराया, बहुर न लेखा पुछ बुलाया, तिस सेवक के नानक कुर्बानी, सो गहर गंभीरा गहर जियो। माज महला पंजवा। सब किछ कर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही, गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बार सुहेला जियो। चिम चिम वरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द बिचारा, अनद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर के लाजियो। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सु का हरिया, सुमत पाए नाम ते आए, गुरमुख होए मेला जियो। जल तरंग ज्यो जले समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया, कहो नानक प्रम कटे किवाड़ा, बहुड़ ना होई है जौला जियो। माज महला पंजवा। तिस कुर्बानी जिन तू सुनिया, तिस बलिहारी जिन रसना पणिया, वार वार जाई तिस विटो, जो मन तन तुद आरा दे जियो। तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले, नैन निहाली तिस पुरख दयाले, मन देवा तिस अपने साजन, जिन गुर मिल सो प्रबला दे जियो। सेवड पागी जिन तुम जाने, सब के मदे अलिपत निर्बाणे, साध के संग उन पौजल तरिया, सगल दूत उन सा दे जियो। तिनकी शरण परिया मन मेरा, मान तान तज मोह अंधेरा, नाम दान दीजे नानक को, तिस प्रभ अगम अगा दे जियो। माज महला पंजवा। तू पेड़ साख तेरी फूली, तू सूखम होआ अस्थूली, तू जल निद तू फेन बुदबुदा, तुद बिन अवर न पाली है जियो। तू सूत मणिये भी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है, आद मद अंत प्रभ कोई, अवर न कोई दिखा लिए जियो। तू निर्गुण सरगुण सुखदाता, तू निर्माण रसिया रंग राता, अपने कर सब आपे जाने, आपे तुद संभालिए जियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुपत प्रगट प्रभ आपे, नानक दास सदा गुण गावे, एक पोरी नदर निहालिए जियो। माज महला पंजवा। सफल सोबाणी जित नाम वकाणी, गुर प्रसाद किने विरले जानी, तन सोवेला जित हर गावत सुनना, आए ते परवाना जियो। से नेत्र परवान जिनी दर्शन पेखा, से कर पले जिनी हर जस लेखा, से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले, हौं बल तिन संग पछाणा जियो। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, साध संग खिन माहे उदारे, किलविक काट हुआ मन निर्मल, मिट गए आवन जाना जियो। दो कर जोड़ एक बिनो करी जाए, कर कृपा दुबदा पत्थर ली जाए, नानक कहो प्रभ भय कृपाला, प्रभ नानक मन पाना जियो। माज महला पंजवा। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। सुख पया दुख दूर पराना, संत रसन हर नाम।

मेहरवान कृपाल दयाला सगले तृप्त अघाए जियो। वन त्रिण त्रिभवन की तोन हरिया करण हार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसे अराधे मन की आस पुजाए जियो। माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदक तू मेरा प्राता तू मेरा राखा सबनी थाई तांबो के आकारा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाना तू मेरी ओत तू है मेरा माना तुझ बिन दूजा अवर न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तुद उपाए जित जित पाना तित तित लाए सब किछ कीता तेरा होवे नाही किछ असाड़ा जियो। नाम ते आए महा सुख पाया हर गुण गाए मेरा मन सीत लाया गुरपूरे वजी वधाई नानक जिता विखाड़ा जियो। माज महला पंजवा जी प्राण प्रभ मने अदारा भगत जीवे गुण गाए अपारा गुण निधान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूरे होवे पेटत गुर दर्शाया जियो। अगम अगोचर किछ मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्यावे ज्ञानी खुद ही मिटी चूका पोलावा गुर मन ही मैं प्रगटाया जियो। आनंद मंगल कल्याण निधाना सुख सहज हर नाम वखाना होए कृपाल स्वामी।

प्रीतम ठाकुर अतारी तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो, तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे। पेटत संग साध संतन कै, सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना साथ साथ समारो, ए मत गुर प्रसाद मन तारो। तुमरी कृपा ते हुए परगाता, सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई, सदा सदा सद आपे।

जो बार माता संहारे दुख पंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारे जियो। जल थल पूर रहा मेरवाना सद बलिहार जाइए कुर्बाना रैन दिन स्थित सदा ते आए जे खिन में सगल उधारे जियो। राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो। माज महला पंजवा जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थल सोइन चुबारे जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से नगर उजाड़ी जियो। हर रुखी रोटी खाए समाले हर अंतर बाहर नदर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान विसु की वाड़ी जियो। संता सेती रंग न लाए साकत संग विकर्म कमाए दुलब दे कोई अज्ञानी जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो। तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला कर कृपा नानक गुण गावे राखो शर्म असाड़ी जियो। माज महला पंजवा चरण ठाकुर के हृदय समाने कल कलेश सब दूर पयाने सांत सुख सहज तुन उपजी साधु संग निवासा जियो। लागी प्रीत ना टूटे मूले हर अंतर बार गया पर पूरे सिमर सिमर सिमर गुण गावा काटी जम की फासा जियो। अमृत वर्षे अनहद बाणी मन तन अंतर सांत समाणी त्रिपत अघाए रहे जन तेरे सतगुरु किया दिलासा जियो। जिसका साथ तिसते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आवन जान रहे वड पागी नानक पूरन आसा जियो। माज महला पंजवा मियो पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी वसाया दया कलेस पया सुख साचा हर हर नाम समाली जियो। जिसके से तिन ही प्रतपारे पार ब्रह्म प्रभ पैर खवारे सुनी बिनंती ठाकुर मेरे पूरन होई काली जियो। सर्व जिया को देवन हारा गुर प्रसादी नदर निहारा जल थल मैयल सब तृप्ताने साधु चरण पखाली जियो। मन की इच्छे पुजावन हारा सदा सदा जाई बलिहारा नानक दान की।

जल फल मैयल जयदीश्वर साया, सांत पई बुझी सब कृष्णा, आनंद पया सब थाई जियो। सुखदाता दुख पंजन हारा, आते बख्श करे जी सारा, अपने कीते नो आप प्रतपाले, तै पैरी तिसे मनाई जियो। जाकी शरण पया गत पाये, साफ साफ हर नाम ते आये, तिस बिन होर न दूजा ठाकुर, सब तिसे किया जाई जियो। तेरा मान तान प्रभ तेरा, तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा, नानक दास कह बेनंती, आठ पहर तू त्याई जियो। माज महला पंजवा, सबे सुख परे प्रभ तुठे, गुरपूरे के चरण मन उठे, सह समाज लगी लिव अंतर, सो रस सोई जाने जियो। अगम अगोचर साहिब मेरा, कट कट अंतर वर्ते मेरा, सदा अलिप्त जिया का दाता, को विरला आप पछाने जियो। प्रभ मिलने की ए निशानी, मन इको सच्चा हुकुम पछाने, सहज संतोष सदा तृप्ता से, आनंद खसम कह पाने जियो। हथी दिती प्रभ देवन हारे, जन्म मरण रोग सब निवारे, नानक दास किए प्रभ अपने, हर कीर्तन रंग माने जियो। माज महला पंजवा, तीनी दया गोपाल गुसाई, गुर के चरण वसे मन माही, अंगीकार किया तिन करते है, दुख का डेरा काया जियो। मन तन वसिया सच्चा सोई, बिखड़ा थान न दिसे कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन होए, एको स्वामी आया जियो। जो किस करे सो आपे आपे, बुद्ध सियाण किछु न जापे, अपने संतानो आप सहाये, प्रभ परम पुलावा लाया जियो। चरण कमल जन का आधारो, आप पैर राम नाम वपारो, सहज आनंद गावे गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्व समाया जियो। माज महला पंजवा, सो सत मंदर जित सच त्याई है, सो रिदा सुहेला जित भर गुण गाई है, सा तर्क सुहावी जित वसे हर जन सच्चे नाम वितों कुर्बानो जियो। सच वडाई कीम न पाई, कुदरत कर्म न कहना जाई, त्याए त्याए जीवे जन तेरे, सच शब्द मन मानो जियो। सच सालाहन बड़ पाजी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है, रंग रते तेरे तुद पावे है, सच नाम निशानो जियो। सच्चे अंत ना जाने कोई, थान संतर सच्चा सोई, नानक सच से आई है सद ही, अंतर जामी जानो जियो। माज महला पंजवा, रैन सुहावड़ी दिन सुहेला, जप अमृत नाम संत संग मेला, करी मूरत सिमरत पल वंजे, जीवन सफल तिथाई जियो। सिमरत नाम दोख सब लाथे, अंतर बाहर हर प्रभ साथे, तै पाओ परम खोया गुरपूरे, देखा सबनी जाई जियो। प्रभ समरथ वड ऊंचा पारा, नौ निज नाम परे पंडारा, आद अंत मद प्रभ सोई, दूजा लवे न लाई जियो। कर कृपा मेरे दीन दयाला, जाचित जाचे सादर वाला, देह दान नान।

खाते, खुद बिन अवर न कोई करते, मैं तर ओत तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवे स्वामी, पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी, जिन सेव्या तिन ही सुख पाया, सो जन्म न जुए हारी जियो। नाम अवखद जिन जन तेरे पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल एहा है कारी जियो। दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, इकत बिन होर दूजा नाही, बाबा नानक एह मत सारी जियो। माज महला पंजवा, मन तन रत्ता राम प्यारे, सर्व सुख दीजे अपना वारे, आठ पैर

कटिए जम की फासा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप अलख अपेवा, काम क्रोध किल दुख गुर काटे, पूरन होई आशा जियो। पूरन पाग पै जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पानी, नानक नाम वस्या जिस अंतर, परवान गृहस्थ उदासा जियो। माज महला पंजवा, सिमरत नाम हृदय सुख पाया, कर कृपा पंक्ति प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपिया, बिन से आलस रोगा जियो। जा कै गृह नव निध हर पाई, तिस मिलिया जिस पूर्व कमाई, ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर, प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो। किन में थाप उठा पनहारा, आप इकंती आप पसारा, लेप नहीं जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लहन विजोगा जियो। अंचल लाए सब सिस्त्राए, अपना नाव आप जपाई, गुरबो हित पाया कृपा ते, नानक तुर संजोगा जियो। माज महला पंजवा, सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सा पली जाए, सोई सियाना सो पतवंता, हुक्म लगे जिस लीठा जियो। सब परोई इकत तागे, जिस लाए ले सो चरणी लागे, ऊंड कवल जिस होए परगास।

जिन देखे सब उतरे कलमल, नानक नाम त्याय त्याय जीव है, बिनस्या परम पौ तीर्था जियो। माज महला पंजवा, चूठा मंगन जे कोई मांगे, तिसको मरते करी ना लागे, पार ब्रह्म जो सद ही सेवे, सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी, गुण गावे अनदिन नित जागी, बाह पकड़ तिस स्वामी मेले, जिसके मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की तूड़ नित बांचे, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाये, जिस सिमरत वर ने चल पाये, नानक कहो प्रभु होए दयाला, तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदिया, महला पहला कर पहला, इको अंकार सतगुरु प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए, सच्ची दरगे मैल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा, सच्चे मन पति आवणिया। हों वारी जियो वारी शब्द सुहावणिया, अमृत नाम सदा सुखदाता, गुरमति मन वसावणिया। रहाओ ना को मेरा हों किस केरा, साचा ठाकुर त्रिभुवन मेरा, हों मैं कर कर जाए कनेरी, कर अवगुण पछोतावणिया। हुकुम पछाणे सो हर गुण वखाणे, गुर के शब्द नाम निशाने, सबना का दर लेखा सके, छूटत नाम सुहावणिया। मन मुख फूला ठौर ना पाए, जम दर बद्दा चोटा खाए, दिन नामे को संग ना साथी, मुक्ते नाम ते आवणिया। साकत कूड़े सच ना पावे, दुबदा बांदा आवे जावे, लिखिया लेख न मेसे कोई, गुरमुख मुक्त करावणिया। पेयड़े फिर जातो नाही, झूठ विछुनी रोवे ताही, अवगण मुठी महल न पाए, अवगण गुण बख्शावणिया।

कर पहला कर्म होवे सतगुरु मिलाए सेवा सुरत शब्द चित लाए हो मैं मार सदा सुख पाया माया मोह चुकावणिया हो वारी जियो वारी सतगुर के बलिहारणिया गुरमती प्रगास हुआ जी अंगन हर गुण गावणिया रहाओ तन मन खोजे ता नाउ पाए तावत राखे ठाक रहाए गुर की बाणी अंगन गावे सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साच मिले ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया सच्चा साहिब सच्ची नाई गुर प्रसादी मन वसाई अंदिन सदा रहे रंग राता दर सके सोजी पावणिया पाप पुन की सार न जानी दूजे लागी परम पुलाणी अज्ञानी अंधा मग न जाने फिर आवन जावणिया गुर सेवा ते सदा सुख पाया हौ मैं मेरा ठाक रहाया गुर साखी मिटिया अंधियारा बजर कपाट खुलावणिया हौ मैं मार मन वसाया गुर चरणी सदा चित लाया गुर कृपा ते मंतन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया जीवन मरना सब तू दैताई जिस बख्शे किस दे वडियाई नानक नाम त्याय सदा तू जम्मन मरण सवारणिया माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा बिन तकड़ी तोले संसारा गुरमुख हो वह तोई बूझे गुण कह गुणी समावणिया हों वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावणिया जो सच लागे से अंगन जागे दर्श कै शोभा पावणिया रहाओ आप सुने ते आपे वेखे जिसनो नदर करे सोई जन लेखे आपे लाए ले सो लागे गुरमुख सच कमावणिया जिस आप पुलाए सो किथे हथ पाए पूरब लिखिया सो मेकना ना जाए जिन सतगुर मिलिया सेवड़ पागी पूरे कर्म मिलावणिया पेयड़े तन अंगन सुती कंक विसारी अवगण मुती अंगिन सदा फिरे बिल लांदी बिन फिर नींद न पावणिया पेयड़े सुखदाता जाता हौ मैं मार गुर शब्द पछाता सेज सुहावी सदा फिर रावे सत सिगार बनावणिया लख चौरासी जी उपाय जिसनो नजर करे तिस गुरु मिलाए किल बिख का सदा जन निर्मल दर सच्चे नाम सुहावणिया लेखा मांगे ता किन दिए सुख नाही फुन दुए तीए आपे बख्श ले प्रभ साचा आपे बख्श मिलावणिया आप करे तै आप कराए पूरे गुर के शब्द मिलाए नानक नाम मिले वडियाई आपे मेल मिलावणिया माज महला तीजा इको आप फिरे परछन्ना गुरमुख वेखा ता एहो मन पिन्ना तृष्णा तज सहज सुख पाया एको मन वसावणिया हौ वारी जियो वारी इकस क्यों चित लावणिया गुरमती मन इकट कर आया सच्चे रंग रंगावणिया रहाओ एहो जग पूला तें आप पुलाया इक विसार दूजे लोभाया अन दिन सदा फिरे परम पूला दिन नावे दुख पावणिया जो रंग राते कर्म विदाते गुर सेवा ते जुग चारे जाते जिसनो आप दे वडियाई हर कै नाम समावणिया माया मोह हर के तैनाही जमपुर बद्दा दुख सहाही अन्ना बोला किछ नजर ना आवे मन मुख पाप पचावणिया इक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुख दाता सब इच्छा आप पुजावणिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्शे दे वडियाई जम काल तिस नेड़ ना आवे जो हर हर नाम ते आवणिया अंग दिन राते जो हर पाए मेरे प्रभ मेले मेल मिलाए सदा सदा सच्चे तेरी शरणाई तू आपे सच बुझावणिया जिन सच जाता से सच समाणे हर गुण गावे सच वखाणे नानक नाम रते बैरागी निज कर ताड़ी लावणिया माज महला तीजा
शब्द मरे सो मोआ जापे, काल न चापे दुख ना संतापे, ज्योति विच मिल जोत समानी, सुन मन सच समावने आ। हों वारी जियो वारी, हर के नाए शोभा पावने आ, सतगुर सेव सच चित लाया, गुरमती सहज समावने आ। रहाओ काया कच्ची कच्चा चीर हंडाए, दूजे लागी महल न पाए,

है सच कमाए सतगुर सेवन से तनवंते ऐथे ओथे नाम समावणिया तै पाए सिंगार बनाए गुर प्रसादी महल कर पाए अन दिन सदा रवे दिन राती मजीठे रंग बनावणिया सबना पिरवसे सदा नाले गुर प्रसादी को नदर निहाले मेरा प्रभ अत ऊंचो ऊंचा कर कृपा आप मिलावणिया माया मोए इहो जग सुत्ता नाम विसार अंत विगुत्ता जिते सुत्ता सो जा गाए गुरमत सोजी पावणिया अप्यो पिए सो परम गवाए गुर प्रसाद मुकत गत पाए भगती रखा सदा बैरागी आप मार मिलावणिया आप उपाए संदै लाए लख चौरासी रिजक आप अपड़ाए नानक नाम से आए सच राते जो तिस पावे सो कार करावणिया माज महला तीजा अंदर हीरा लाल बनाया गुर के शब्द परख परखाया जिन सच पल्ले सच वखाणे सच कसवटी लावणिया होवारी जियो वारी गुर की बाणी मन वसावणिया अंजन माहे निरंजन पाया ज्योति ज्योत मिलावणिया रहाओ इस काया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अत अगम अपारा गुरमुख हो वै सोई पाए आपे बख्श मिलावणिया मेरा ठाकुर सच दिड़ाए गुर प्रसादी सच चित लाए सचो सच वरते सबनी थाई सच्चे सच समावणिया रे प्रवाहो सच मेरा प्यारा किलविख अवगुण काटन हारा प्रेम प्रीत सदा त्याय पै पाए भगत दृढ़ावणिया तेरी भगत सच्ची जे सच्चे पावे आपे दे ना पछो तावे सबना जिया का एको दाता सब दे मार जीवावणिया हर तुद बाजो मैं कोई नाही हर तुद ऐ सेवी तै तुद सलाही आपे मेल लहो प्रभ साचे पूरे कर्म तू पावणिया मैं होर न कोई तुदे जेहा तेरी नदरी सीजस देहा अंदिन सार समाल हर राखे गुरमुख सहि समावणिया तुद जेवड़ मैं होर न कोई तुद आपे सिरजी आपे गोई तू आपे ही कर पन सवारे नानक नाम सुहावणिया माज महला तीजा सब कट आपे भोगण हारा अलख वरते अगम अपारा गुर के शब्द मेरा हर प्रभ त्याये सहजे सच समावणिया हों वारी जियो वारी गुर शब्द मन वसावणिया शब्द सूजे ता मन स्यों लूजे मनसा मार समावणिया रहाओ पंच दूत मुहे संसारा मनमुख अंधे सुध ना सारा गुरमुख हो वैसो अपना कर राखे पंच दूत शब्द पचावणिया एक गुरमुख सदा सच्चे रंग राते सहजे प्रभ सेवे अंदिन माते मिल प्रीतम सच्चे गुण गावे हर दर शोभा पावणिया एकम एक है आप उपाया दुबदा दूजा त्रिविध माया चौथी पौड़ी गुरमुख ऊंची सच्चो सच कमावणिया सब है सच्चा जे सच्चे पावे जिन सच जाता सो सह समावे गुरमुख करनी सच्चे सेवे साचे जाए समावणिया सच्चे बाजो को अवर ना दुआ दूजे लाग जग खप खप मुआ गुरमुख हो वैसो एको जाने एको सेव सुख पावणिया जी जंत सब शरण तुम्हारी आपे तार देखे कच्ची पक्की सारी अंग दिन आपे कार कराए आपे मेल मिलावणिया तू आपे मेले वेखे हदूर सब मैं आप रहा भरपूर नानक आपे आप वरते गुरमुख सोजी पावणिया माज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरले किने चख दीठी अंतर प्रगास महारस की वह दर सच्चे शब्द बजावणिया हों वारी जियो वारी गुर चरणी चित लावणिया सतगुर है अमृत सर साचा मन नावे मैल चुकावणिया रहाओ तेरा सच्चे किने अंत न पाया गुर प्रसाद किने विरले चित लाया तुद सला है न रजा कबहू सच्चे नावे की पुखलावणिया एको वेखा अवर न बिया गुर प्रसादी अमृत पिया गुर के शब्द तिखा निवारी सहजे सुख समावणिया
रतन पदार्थ पलर त्याग है, मन मुख अंधा दूजे पाए लागे, जो बीजे सोई फल पाए, सुखने सुख न पावणिया, अपनी कृपा करे सोई जन पाए, गुर का शब्द मन वसाए, अंदिन सदा रहे पै अंदर, कै मार परम चुकावणिया, परम चुकाया सदा सुख पाया, गुर प्रसाद परम पद पाया, अंतर निर्मल निर्मल बाणी, हर गुण सहजे गावणिया, सिमरत शास्त्र वेद वखाणे, परमे पूला तत न जाने, बिन सतगुर सेवे सुख न पाए, दुखो दुख कमावणिया, आप करे किस आखे कोई, आखन जाइए जे पूला होई, नानक आपे करे कराए, नामे नाम समावणिया, माज महला तीजा, आपे रंग हर रंग चढ़ाए, मन तन रत्ता रसना रंग चलूली, पै पाए रंग चढ़ावणिया, हों वारी जीओ वारी निरपो मन वसावणिया, गुर कृपा से हर निरपो त्याया, बिख पौजल शब्द करावणिया, रहाओ मन मुख मुग्ध करे चतुराई, नाता तोता थाए ना पाई, जेहा आया तेहा जाती, कर अवगण पछोतावणिया, मन मुख अंधे किछु न सूजे, मरण लिखाए आए नहीं बुझे, मन मुख कर्म करे नहीं पाए, बिन नावे जन्म गवावणिया, सच करनी शब्द है सार, पूरे गुर पाईए मोख द्वार, अंधिन बाणी शब्द सुनाए, सच राते रंग रंगावणिया, रसना हर रस राती रंग लाए, मन तन मोहया सह सुभाए, सहजे प्रीतम प्यारा पाया, सहजे सहज मिलावणिया, जिस अंदर रंग सोई गुण गावे, गुर के शब्द सहजे सुख समावे, हों बलिहारी सदा तिन विटो, गुर सेवा चित लावणिया, सच्चा सच्चो सच पति जय, गुर प्रसादी अंदर पी जय, बैठ सुखान हर गुण गावे, आपे कर सत मनावणिया, जिसनो नजर करे सो पाए, गुर प्रसादी हो मैं जाए, नानक नाम वसे मन अंतर, दर सच्चे सोबा पावणिया, माज महला तीजा, सतगुर सेवे वड्डी वड्याई, हर जी अचिंत वसे मन आई, हर जी ओ सफल्यो बिरख है अमृत, जिन पीता तिस तिखा लहावणिया, हौ वारी जीओ वारी सत संगत मेल मिलावणिया, हर सत संगत आपे मेल है, गुर शब्दी हर गुण गावणिया, रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया, जिन हर का नाम मन वसाया, हर निर्मल हो मैं मैल गवाए, दर सच्चे शोभा पावणिया, बिन गुर नाम न पाया जाए, सिद्ध साधक रहे बिन लाए, बिन गुर सेवे सुख न होवी, पूरे पाग गुर पावणिया, एहो मन आरसी कोई गुरमुख वेखे, मोर्चा ना लागे जाहो मैं सोखे, अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए, गुर शब्दी सच समावणिया, बिन सतगुर क्यों ना देखिया जाए, गुर कृपा कर आप जित्ता दिखाए, आपे आप मिल रहया, सहजे सहज समावणिया, गुरमुख हो वै सो इक्कस क्यों लिवलाए, दूजा परम गुर शब्द जलाए, काया अंदर वणज करे वा पारा, नाम निधान सच पावणिया, गुरमुख करनी हर कीरत सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, अंधिन रंग रता गुण गावे, अंदर महल बुलावणिया, सतगुर दाता मिले मिलाया, पूरे पाग मन शब्द वसाया, नानक नाम मिले वड्याई, हर सच्चे के गुण गावणिया, माज महला तीजा, आप वंजाए ता सब किछ पाए, गुर शब्दी सच्ची लिवलाए, सच वणन जै सच संग्रह, सच व्यापार करावणिया, हौ वारी जियो वारी हर गुण अंधिन गावणिया, हौ तेरा तू ठाकुर मेरा, शब्द वड्याई देवणिया, रहाओ वेला वक्त सब सुहाया, जित सच्चा मेरे मन भाया, सच्चे सेवे सच वड्याई, गुर कृपा ते सच पावणिया, पाओ पोजन सतगुर तुथे पाए, अनरस चूके हर रस मन वसाए, सत संतोख सहज सुख बाणी, पूरे गुरते पावणिया।
सतगुर ना सेवै मूरख अंध गवारा, फिर ओए कित्थों पाएं मोख द्वारा, मर मर जमे फिर आवे जमदर चोटा खावणिया। शब्द साफ जाने ता आप पछाने, निर्मल बाणी शब्द वखाने, सच्चे सेव सदा सुख पाएन नौनिद नाम मन वसावणिया। सो थान सुहाया जो हर मन भाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अंदिन हर साला है साचा निर्मल नाद वजावणिया। मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूर कमावन दुख लागे पारा, परमे पूले फिरन दिन राती, मर जन्मे जन्म गवावणिया। सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर के शब्द आधारा, नानक नाम मिले वड्याई दुख सुख सम कर जाननिया। माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावे सब परम पुलानी, गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुर कोई न पावणिया। हौ वारी जियो वारी हर सेती चित लावणिया, हर सच्चा गुर भगती पाये सहजे मन वसावणिया। रहाओ सतगुर सेवे ता सब कुछ पाए, जेही मनसा कर लागे तेहा फल पाए, सतगुर दाता सबना वस्तु का पूरे पाग मिलावणिया। एहो मन मैला इक ना त्याए, अंतर मैल लागी बहु दूजे पाए, तट तीरथ दिसंतर पवे अहंकारी, होर वधेरे हो मैं मल लावणिया। सतगुर सेवे ता मल जाए, जीवत मरे हर स्यों चित लाए, हर निर्मल सच मैल न लागे, सच लागे मैल गवावणिया। बाज गुरु है अंग गुवारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता कमावे, फिर बिस्ता माए पचावणिया। मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, होमे ममता सबदे खोवे, अंधिन हर जियो सच्चा सेवी पूरे पाग गुर पावणिया। आपे बक्से मेल मिलाए, पूरे गुरते नाम निध पाए, सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावणिया। सदा हजूर दूर ना जानो, गुर सबदी हर अंतर पछाणो, नानक नाम मिले वड्याई पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, ऐसे साचे सो आगे साचे, मन सच्चा सच्चे शब्द राचे, सच्चा सेवे सच कमावे, सच्चो सच कमावणिया। हौ वारी जियो वारी सच्चा नाम मन वसावणिया, सच्चे सेवे सच समावे, सच्चे के गुण गावणिया। रहाओ पंडित पढ़े साध न पावे, दूजे पाए माया मन परमावे, माया मोह सब सुध गवाई, कर अवगुण पछो तावणिया। सतगुर मिले ता तत पाए, हर का नाम मन वसाए, शब्द मरे मन मारे अपना, मुक्ति का दर पावणिया। किलविख काटे क्रोध निवारे, गुर का शब्द रखे उर्धारे, सच रते सदा बैरागी, होमे मार मिलावणिया। अंतर रतन मिले मिलाया, त्रिविध मनसा त्रिविध माया, पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, चौथे पद की सार न पावणिया। आपे रंगे रंग चढ़ाए, से जन राते गुर शब्द रंगाए, हर रंग चढ़िया अत अपारा, हर रस रस गुण गावणिया। गुरमुख रिद्ध सिद्ध सच संजम सोई, गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई, गुरमुख कार सच कमावे, सच्चे सच समावणिया। गुरमुख थापे थाप उथापे, गुरमुख जात पत सब आपे, नानक गुरमुख नाम ते आए, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत परलो सब दे होवे, सब दे ही फिर ओपत होवे, गुरमुख वरते सब आपे सच्चा, गुरमुख उपाय समावणिया। हौ वारी जियो वारी गुर पूरा मन वसावणिया, गुरते सांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया। रहाओ गुरमुख तरती गुरमुख पानी, गुरमुख पावन बैसंतर खेले विडाणी, सो निगुरा जो मर मर जमे, निगुरे आवन जावणिया। तिन करते इक खेल रचाया, ताया शरीर है विच सब किच पाया, शब्द पेद कोई महल पाए, महले महल बुलावणिया।
सच्चा साहो सच्चे बन जा रे, सच बनन जय गुर हेत अपारे, सच विहा जय सच कमावे, सचो सच कमावण्या। बिन राशि को वत क्यों पाए, मन मुख पूले लोक सवाए, बिन राशि सब खाली चले, खाली जाए दुख पावण्या। एक सच बनन जय गुर शब्द प्यारे, आप करें सगले कुल पारे, आए से परवान होए मिल प्रीतम सुख पावण्या। अंतर वस्त मूड़ा बाहर पाले, मन मुख अंधे फिरे बेताले, जिथे वत होवे तिथो कोई न पावे, मन मुख परम कुलावण्या। आपे देवे शब्द बुलाए, महली महल सहज सुख पाए, नानक नाम मिले वड्याई, आपे सुन सुन त्यावण्या। माज महला तीजा, सतगुर साची सिख सुनाई, हर चेतो अंत होए सखाई, हर अगम अगोचर अनाथ अजूनी, सतगुर कह पाए पावण्या। हौ वारी जियो वारी आप निवारण्या, आप गवाए ता हर पाए, हर स्यों सह समावण्या। रहाओ पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन पागा गुर पाईए नाही, सबदे मेल मिलावण्या। गुरमुख अलिपत रह संसारे, गुर के तकिए नाम आधारे, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावण्या। मन मुख अंधे सुध न काई, आत्म काती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु पार उठावे, बिन मजूरी पार पहुंचावण्या। एहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जे ही वासना पाए ते ही वरते, वासु वास जनावण्या। मन मुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अगम अपारा, दुखिए नित फिरे बिल्ला दे, बिन गुर शांत न पावण्या। जिनकी ते सोई बिद जाने, आप करे ता हुकम पछाने, जेहा अंदर पाए तेहा वरते, आपे बाहर पावण्या। तिस बाजो सच्चे मैं होर न कोई, जिस लाए लए सो निर्मल होई, नानक नाम वसे कट अंतर, जिस देवे सो पावण्या। माज महला तीजा, अमृत नाम मन वसाए, हौ मैं मेरा सब दुख गवाए, अमृत बाणी सदा सलाहे, अमृत अमृत पावण्या। हौ वारी जियो वारी, अमृत बाणी मन वसावण्या, अमृत बाणी मन वसाए, अमृत नाम ते आवण्या। रहाओ अमृत बोले सदा मुख वैणी, अमृत वेखे परखे सदा नैनी, अमृत कथा कहे सदा दिन राती, अवरा आख सुनावण्या। अमृत रंग रता लिव लाए, अमृत गुर प्रसादी पाए, अमृत रसना बोले दिन राती, मन तन अमृत पियावण्या। सो किछ करे जो चित न होई, किसदा हुक्म मेट ना सके कोई, हुक्मे वरते अमृत बाणी, हुक्मे अमृत पियावण्या। अजब कम करते हर केरे, त्यो मन पूला जांदा फेरे, अमृत बाणी त्यों चित लाए, अमृत शब्द बजावण्या। खोटे खरे तुद आप उपाए, तुद आपे परखे लोक सवाए, खरे पर खजाने पाए, खोटे परम पुलावण्या। क्यों कर वेखा क्यों सलाही, गुर प्रसादी सबद सलाही, तेरे पाने विच अमृत वरसे, तू पाने अमृत पियावण्या। अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेवे हृदय समाणी, नानक अमृत नाम सदा सुखदाता, पी अमृत सब कुख लै जावण्या। माज महला तीजा, अमृत वरसे सह सुवाए, गुरमुख विरला कोई जन पाए, अमृत पी सदा तृप्ता से, कर कृपा तृष्णा बुझावण्या। हौ वारी जियो वारी, गुरमुख अमृत पियावण्या, रसना रस चाक सदा रहे रंग राती, सहजे हर गुण गावण्या। रहाओ गुर प्रसादी सहज को पाए, दुबदा मारे इक स्यों लिवलाए, नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावण्या। सदना उपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी, तुझते बाहर किछ न होवे, गुरमुख सोजी पावण्या। गुरमुख तत है बिचारा,
अमृत परे तेरे पंडारा, बिन सतगुर सेवे कोई न पावे, गुर कृपा ते पावनिया। सतगुर सेवे सो जन सो है, अमृत नाम अंतर मन मोहे, अमृत मन तन बाणी रत्ता, अमृत सह सुनावनिया। मन मुख पूला दूजे पाए फुआए, नाम ना लेवे मरे बिख खाए, अंदिन सदा विस्ता में वासा, बिन सेवा जन्म गवावनिया। अमृत पीवे जिसनो आप पियाए, गुर प्रसादी सहज लिव लाए, पूरन पूर रहा सब आपे, गुरमत नदरी आवनिया। आपे आप निरंजन सोई, जिन फिर जी तिन आपे गोई, नानक नाम समाल सदा तू, सहजे सच समावनिया। माज महला तीजा, से सच लागे जो तुद पाए, सदा सच सेवे सह सुभाए, सच्चे सब सच्चा सलाही, सच्चे मेल मिलावनिया। हों वारी जियो वारी सच सलाणिया, सच त्यायन से सच राते, सच्चे सच समावनिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई, गुर प्रसादी मन वसाई, तन सच्चा रसना सच राती, सच सुन आख वखानिया। मनसा मार सच समाणी, इन मन दीखी सब आवन जानी, सतगुर सेवे सदा मन नहीं चल, निज कर वासा पावनिया। गुर के शब्द हृदय दिखाया, माया मोह शब्द जलाया, सचो सच्चा वेख सलाही, गुर शब्दी सच पावनिया। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम संभाले सेवड पागी, सच्चे शब्द आप मिलाए, सत संगत सच गुण गावनिया। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे, ओ अगम अगोचर शब्द शुद्ध होवे, अंदिन सच शब्द सलाही, होर कोई ना कीमत पावनिया। पर परखा के सांत ना आई, तृष्णा जाले शुद्ध ना काई, बिख बिहाजे बिख मोह प्यासे, कूड़ बोल बिख खावनिया। गुर प्रसादी एको जाना, दूजा मार मन सच समाना, नानक एको नाम वरते, मन अंतर गुर प्रसादी पावनिया। माज महला तीजा, वर्ण रूप वरते सब तेरे, मर मर जमे फेर पवे कनेरे, तू एको ने चल अगम अपारा, गुरमती बूझ बुझावनिया। हों वारी जियो वारी राम नाम मन वसावनिया, तिस रूप ना रेखिया वरन ना कोई, गुरमती आप बुझावनिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई, सतगुर सेवे प्रगट होई, गुप्त प्रगट वरते सब थाई, ज्योति जोत मिलावनिया। तिसना अगन जले संसारा, लोभ अभिमान बहुत अहंकारा, मर मर जन्मे पत गवाए, अपनी बिरथा जन्म गवावनिया। गुर का शब्द को विरला बूझे, आप मारे।

गुर के सबद सदर है समाए सच सलाहे सब कट अंतर सचो सच सुहावणिया सच सलाही सदा हजूरे गुर के सबद रहा पर पूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवे सच्चे ही सुख पावणिया सच मन अंदर रहा समाए सदा सच निश्चल आवे न जाए सच्चे लागे सो मन निर्मल गुरमती सच समावणिया सच सलाही अवर न कोई जित सेवे सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत सब माए समाणी निर्मल बाणी हर सलाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया हौवारी जियो वारी सुख दाता मन वसावणिया हर निर्मल गुर सब सलाही सबदो सुन पिसा मिटावणिया रहाओ निर्मल नाम वस्या मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया निर्मल अमृत गुर ते पाया विच्चों आप मुआ सिखे मोह न माया निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल निर्मल बाणी मन वसावणिया जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे होमे मैल गुर सबदे तोवे निर्मल वाजे अनहल सुन बाणी दर सच्चे सोबा पावणिया निर्मल ते सब निर्मल होवे निर्मल मनुआ हर शब्द पर होवे निर्मल

तीजा गोविंद उजल उजल हंसा मन बाणी निर्मल मेरी मनसा मन उजल सदा मुख सो है अत उजल नाम त्यावण्या हों वारी जियो वारी गोविंद गुण गावण्या गोविंद गोविंद कह दिन राती गोविंद गुण शब्द सुहावण्या रहाओ गोविंद गावे सह सुभाए गुर कह पै उजल हों मैं मल जाए सदा आनंद रहे भगत करें दिन राती सुन गोविंद गुण गावण्या मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए गुर के शब्द मने मन मिलाए सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए शब्दे नृत्य करावण्या ऊंचा कूके तने पछाड़े माया मोह जोहया जमकाले माया मोह इस मने नचाए अंतर कपट दुख पावण्या गुरुमुख भगत जा आप कराए तन मन दाता सह सुभाए बाणी वजै शब्द वजाए गुरुमुख भगत थाए पावण्या बहुताल पूरे वाजे वजाए ना को सुने ना मन वसाए माया कारण पिड़ बंद नाचे दूजे पाए दुख पावण्या जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता इंद्री वस सच संजम जुगता गुर कै शब्द सदा हर त्याए एहा भगत हर पावण्या गुरमुख भगत जुग चारे होई होरत भगत ना पाए कोई नानक नाम गुरु भगत।

सुख दाता सेवन सुख पायन गुरमत मन वसावणिया। हौ वारी जियो वारी सुख सहज समाध लगावणिया। जो हर सेवै थे सदा सोहै शोभा सुर सुहावणिया। रहाओ सबको तेरा भगत कहाए सही भगत तेरे मन पाए। सत बाणी तुदे सलाहन रंग राते भगत करावणिया। सबको सके हर जियो तेरा गुरमुख मिले ता चूकै फेरा। जा तुद पावे ता नाए रचावै तू आपे नाउ जपावणिया। गुरमती हर मन वसाया हरख सोग सब मोह गवाया। इक्कस सिउ लिव लागी सधी हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए नौ निज नाम वखरा मन आए। पूरे पाग सतगुर पाया सब दे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता तू आपे मेले गुरमुख जाता। तू आपे देवे नाम वडाई नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुद सलाही गुरमुख जाता दूजा को नाही। एक सियो मन रहा समाए मन मने मन है मिलावणिया। गुरमुख होवे सो साला है साचे ठाकुर वे परवाहे। नानक नाम वसे

तेरे पगत सो है साचे दरबारे, गुर के शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया। हो वारी जियो वारी, नाम सुन मन वसावणिया, हर जियो सच्चा ऊंचो ऊंचा, हो मैं मार मिलावणिया, रहाओ हर जियो साचा साची ना।

होए तू कर कर वेखे जाने सोए आपे करे कराए करता गुरमत आप मिलावणिया कामन गुणवंती हर पाए पै पाए सिगार बनाए सतगुरु सेव सदा सुहागण सच उपदेश समावणिया शब्द विसारण तिना ठौर न ठाओ तम पूले जो सुन्ने कर पाओ हलत पलत तिनी दोवे गवाए दुखे दुख विहावणिया लिखदिया कागद मस कोई दूजे पाए सुख पाए न कोई कूड़ लिखे ते कूड़ कमावे जल जावे कूड़ चितलावणिया गुरमुख सच्चो सच लिखे विचार से जन सच्चे पावे मोख द्वार।

गुर प्रसादी परम पद पाए, सतगुरु आपे मेल मिलाए, मिल प्रीतम सुख पावणिया। एक कूड़ लागे कूड़े फल पाए, दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए, आप डूबे सगले कुल डोबे, कूड़ बोल बिखावणिया। इस तन में मन को गुरमुख देखे, पाए पगत जा हूं मैं सोखे, सिद्ध साधिक मोन तारी रहे लिव लाए, तिन भी तन में मन ना दिखावणिया। आप कराए करता सोई, होर के करे कीते क्या होई, नानक जिस नाम देवे सो लेवे, नामो मन वसावणिया। माज महला तीजा, इस गुफा में अकुट पंडारा, तिस विच वसे हर जियो अलख अपारा, आपे गुप्त प्रगट है आपे, गुर शब्दी आप वजावणिया। हौ वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसावणिया, अमृत नाम महा रस मीठा, गुरमती अमृत पियावणिया। रहाओ हौ में मार बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया, बिन शब्द नाम न पाए कोई, गुर कृपा मन वसावणिया। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चामन अज्ञान अंधेर गवाया, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावणिया। शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम नाल है बहुत बेगार दुख पाए, मन मुख अंधे सूजे नाही, फिर किर आए गुरमुख वच पावणिया। गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, मन तन वेखे हो में मैल जाए, बैठ सुतान सद हर गुण गावे, सच्चे सबद समावणिया। नौ दरखा के तावत रहाए, दसवें निज करवासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। बिन शब्द अंतर आनेरा, ना वसल है ना चूके फेरा, सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही, गुर पूरे पाग मिलावणिया। गुप्त प्रगट तू सबनी थाई, गुर प्रसादी मिल सोजी पाई, नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरमुख मन वसावणिया। माज महला तीजा, गुरमुख मिले मिलाए आपे, काल न जो है दुख न संतापे, हौमे मार बंधन सब तोड़े, गुरमुख शब्द सुहावणिया। हौ वारी जियो वारी, हर हर नाम सुहावणिया, गुरमुख गावे गुरमुख नाचे, हर से ती चित लावणिया। रहाओ गुरमुख जीवे मरे प्रवाण, आर जा ना छीजे शब्द पछाण, गुरमुख मरे न काल न खाए, गुरमुख सच समावणिया। गुरमुख हर दर शोभा पाए, गुरमुख विच्चों आप दवाए, आप करे कुल सगले तारे, गुरमुख जन्म सवारणिया। गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर, गुरमुख हों में चूके पीर, गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे, गुरमुख सहज समावणिया। गुरमुख नाम मिले वड्याई, गुरमुख गुण गावे शोभा पाई, सदा आनंद रहे दिन राती, गुरमुख शब्द करावणिया। गुरमुख अन दिन सब दे राता, गुरमुख जुग चारे है जाता, गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल, शब्दे भगत करावणिया। बाज गुरु है अंध अंधारा, जम काल गरठे करे पुकारा, अंधिन रोगी बिस्ता के कीड़े, बिस्ता में दुख पावणिया। गुरमुख आपे करे कराए, गुरमुख हृदय उठा आप आए, नानक नाम मिले वड्याए, पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, एका जोत जोत है शरीरा, सबद दिखाए सतगुर पूरा, आपे फर्क की तोन कट अंतर, आपे बनत बनावणिया। हौ वारी जियो वारी, हर सच्चे के गुण गावणिया, बाज गुरु को सहज न पाए, गुरमुख सहज समावणिया। रहाओ तू आपे सो है, आपे जग मोह है, तू आपे नदरी जगत परोवे, तू आपे दुख सुख दे रहे करते, गुरमुख हर देखावणिया। आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुर मन वसाए, शब्दे उपजे अमृत बाणी, गुरमुख आप सुनावणिया।
आपे करता आपे पुगता, बंधन तोड़े सदा है मुक्ता, सदा मुक्त आपे है सच्चा, आपे अलख लखाणिया। आपे माया आपे छाया, आपे मोह सब जगत उपाया, आपे गुण दाता गुण गावे, आपे आप सुनावणिया। आपे करे कराए आपे, आपे थाप उठापे आपे, तुझते बाहर कछु न होवे, तू आपे कारे लावणिया। आपे मारे आप जीवाए, आपे मेले मेल मिलाए, सेवा ते सदा सुख पाया, गुरुमुख सहज समावणिया। आपे ऊंचा ऊंचो होई, जिस आप विखाले सो वेखे कोई, नानक नाम वसै कट अंतर, आपे वेख विखालणिया। माज महला तीजा, मेरा प्रभ भरपूर।

जग जीवन मन वसावणिया, हर जग जीवन निरपो दाता, गुरमत सहज समावणिया, रहाओ कर मैं करती तौल पताला, कर ही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रहे सुख दाता, गुरमत सहज समावणिया, काया अंदर हो मैं मेरा, जमन मरण न चूके फेरा, गुरमुख हो वैसो हो मैं मारे, सच्चो सच त्यावणिया, काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दो ही मिलके सृष्ट उपाई, दो में मार जाए इक्कत कर आवे, गुरमत सहज समावणिया, कर ही माहे दूजे पाए अनेरा, चानन होवे छोड़े हो मैं मेरा, प्रगट सब रह सुख दाता, अंदर नाम ते आवणिया, अंतर जोत प्रगट पासारा, गुर साखी मिटिया अंधियारा, कमल विगास सदा सुख पाया, ज्योति जोत मिलावणिया, अंदर महल वतनी परे पंडारा, गुरमुख पाए नाम अपारा, गुरमुख वन जे सदा वपारी, लाहा नाम सद पावणिया, आपे वस राखे आपे दे, गुरमुख वणजे केई के, नानक जिस नजर करे सो पाए, कर कृपा मन वसावणिया, माज महला तीजा, हर आपे मेले सेव कराए, गुर के शब्द पाओ दूजा जा।

सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसाणिया रहाओ। आपे गुरदाता कर्म विदाता, सेवक सेवे गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सोवे, गुरमत हर रस पावणिया। इस गुफा में एक थान सुहाया, पूरे गुर हो में परम चुकाया। अंदिन नाम सलाहन रंग राते, गुर कृपा ते पावणिया। गुर के शब्द एहो गुफा विचारे, नाम निरंजन अंतर वसे मुरारे। हर गुण गावे शब्द सुहाए, मेरे प्रीतम सुख पावणिया। जम जागाती दूजे पाए कर लाए, नामो पुल्ले दे सजाए। करी मोहत का लेखा लेवे, रतियो मासा

संगत होई आप करे सगले कुल तारे हर नाम मन वसावणिया हो वारी जियो वारी हर रस चक साध पावणिया हर रस चाखे से जन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया रहाओ सो नेह कर्मी जो शब्द विचारे अंतर तत ज्ञान हो मैं मारे नाम पदार्थ नौ निद पाए त्रै गुण मेच समावणिया हो मैं करे नेह कर्मी ना होवे गुर प्रसादी हो मैं खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणिया हर सर सागर निर्मल सोई संत चुगे नित गुरमुख होई इस नाम करे सदा दिन राती हो मैं मैल चुकावणिया निर्मल हंसा प्रेम प्यार हर सर वसे हो मैं मार एनस प्रीत सबद साचे हर सर वासा पावणिया मन मुख सदा बग मैला हो मैं मल लाई इस नाम करे पर मैल न जाई जीवत मरे गुर शब्द विचारे हो मैं मैल चुकावणिया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा घट चानन आप पछानणिया आप उपाय तै आपे वेखे सतगुर सेवे सो जन लेखे नानक नाम वसै कट अंतर गुर कृपा ते पावणिया माज महला तीजा माया मोह जगत सवाया तै गुण दीसे मोहे माया गुर प्रसादी को विरला बूजे चौथे कद लिवलावणिया हौ वारी जियो वारी माया मोह शब्द जलावणिया माया मोह जलाए सो हर्षो चित लाए हर दर मैली सो बा पावणिया रहाओ देवी देवा मूल है माया सिमरत फास जिन उपाया काम क्रोध पथरिया संसारे आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन इक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जप सत संजन सच कमावे गुर पूरे नाम ते आवणिया पेयड़े तन परम पुलाणी दूजे लागी फिर पछो ताणी हलक पलक

गुरुमुख सदा रह रंग राती मिल सच्चे शोभा पावणिया। मन मुख कर्म करे अंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर आवन जावणिया। आपे करता दे वड़ियाई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पौ पंजन गुर सबदी सुख पावणिया। माद महला पंजवा कर पहला अंतर अलख ना जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर सब।

सोतम ममता सो वड साहा जो गुर चरणी मन लावण्या। पहलो देते रिजक समाहा पिछो देते जंत उपाहा तुझे वरदाता अवर न स्वामी लवे न कोई लावण्या। जिस तू तुथा सो तुद त्याए सात जना का मंत्र कमाए आप करे सगले कुल तारे तिस दरगे खाक न पावण्या। तू वड्डा तू ऊंचो ऊंचा तू बेअंत अत मूचो मूचा।

कौन सो बक्ता, कौन सो गिरही, कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो। किन बिद बांदा, किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन टूटा, कौन कर्म कौन नेह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो। कौन सो सुखिया, कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख।

कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ते आए, किन विद कीर्तन गाए जियो। गुरुमुख मुक्ता गुरुमुख जुगता, गुरुमुख ज्ञानी गुरुमुख बक्ता, तन गिर ही उदासी गुरुमुख, गुरुमुख कीमत पाए जियो। होमे बांदा गुरुमुख चूटा, गुरुमुख आन जान टूटा, गुरुमुख कर्म गुरुमुख ने कर्मा, गुरुमुख करे सो सुभाए जियो। गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरुमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरुमुख मिलिए मनमुख विचरे, गुरुमुख विद प्रगटाए जियो। गुरुमुख अक्षर जित तावत रहता, गुरुमुख उपदेश दुख सुख सम सहता, गुरुमुख चाल जित पार ब्रह्म ते आए, गुरुमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस से होयो अनंता, नानक एकस माए समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभ अविनाशी ता क्या काड़ा, हर परवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुख दाता, तू करे सोई सुख पावनिया। हों वारी जियो वारी, गुरुमुख मंतन पावने।

चाड़े कर कृपा दास नगर निहाले गुण गावे पूरन अविनाशी कह सुन तोट ना आवणिया ऐसे ओथे तू है रखवाला मात गर्भ में तुम ही पाला माया अगर न पोहे तिनको रंग रते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आख समाली मंतन अंतर तुद नगर निहाली तू मेरा मीत।

तू साहिब शरण सुखदाता सत संगत जप प्रगटावणिया तू ऊंच अथाओ अपार अमोला तू साचा साहिब दास तेरे गोला तू मीरा साची ठकुराई नानक बल बल जावणिया माज महला पंजवा कर दूजा नित नित दया संभालिए मूल न मनो विसारिए रहाओ संता संगत पाइए जित जम के पंथ न जाइए तोसा हर का नाम।

ए प्रभ अवगाहिया ए रस पोगण पातशाहिया मंदा मूल ना उपजियो तरे सच्ची कारे लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हरे तेरा थिर होआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की शरण आया लाए अंचल ना

सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे कट कट एक वर्तदा जल फल महियल पूरे पाप विनाशन सेविया पवित्र संतन की दूरे सब छदाई खसम आप हर जप पई थरूरे करते किया कपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे।

जल बिन साफ कुमलावती उपजे नाही दाम, हर ना न मिलिए साजने कत पाए विश्राम। जित पर हर कंस न तगती पथ नगर से ग्राम, सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंक विहूनिया।

मानन हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाग मथन असार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास असार तपंदा तिस लगे।

प्रभ तुध बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास आसार सुहंदा किस लगे, जिस मन हर

धर्म मिलावन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया हौ तिनके सब बलिहार नानक हर जी मया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार पादोए परम पुलाणिया दूजे लगा हेत लग सिगार बनाया कारज नाही केत जित दिन देह बिनस सी तित वेले कैसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी पेत छंद खड़ोते खिने माहे जिनस्यों लगा हेत हाथ मरोड़े।

अक्षर तीरथ सगल पुन जी दया परवान, जिसनो दे दया कर सोई पुरख सुजान, जिना मिलिया प्रभु अपना नानक तिस कुर्बान, माग सुचे से कांडी है जिन पूरा गुर मेहरवान, फल गुण आनंद।

इच्छ पुनी वड पागुनी वर पाया हर राय। मिल सैया मंगल गावही गीत गोविंद अलाय। हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे न लाए। हालत पलत

सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे सर्व सुखा निज चरण हरे

नानक जीवे जप हरि दोख सबे ही हंत दिन रैन जिसना विसरे सो हरिया होवे जंत। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंज निमाणी थाओ हर ओट दही मन

तें क्या दूजा आख वखाणी है, जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले, विन ज्योति कोई किछ करो दिखा सियाणी है। नानक गुरमुख नदरी आया, हर इको सुगुर सुजानी है पौड़ी। तुद आपे जगत उपाय कै, तुद आपे तंदे लाया, मोठ गौली पाए कै, तुद आपो जगत खुआया।

मर जम में आया जाया दिन सतगुरु मोह न टूटई सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम की आई है सुख रजा जा कुद पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया शोभा सुरत।

हंस संजोग मेल मिलाया, तिन्ही किया विजोग जिन उपाया, मूर्ख भोगे भोग दुख सवाया, सुखों उठे रो

महला चौथा जिस दे अंदर सच है सो सच्चा नाम मुख सच अलाए ओ हर मार्ग आप चलदा होर नानो हर मार्ग पाए जो अग्गे तीर्थ होए ता मल लहे छप्पर नाते सगरी मल लाए तीर्थ पूरा सतगुरु जो अंदिन हर हर नाम के आए ओ आप छुटा कुटुंब स्यो दे हर हर नाम सब सृष्टि सदाए जन नानक तिस बलिहारण जो आप जपे अवरा नाम जपाए पौड़ी एक कंद मूल चुन खाए वन खंड वासा एक भगवा वेश कर फिरे जोगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन की आशा बिरथा जन्म गवाए न गृही ना उदासा जमकाल सिरो ना उतरे त्रिविद मनसा गुरमती काल ना आवे नेड़े जा होवे दासन दासा सच्चा शब्द सच मन कर ही मह उदासा नानक सतगुर सेवन अपना से आसा ते निराशा श्लोक महला पहला जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत नानक नाम खुदाई का दिल हच्छे मुख ले हो अवर दिल

कहया कसना परया पर तोवा आप न बुझा लोक बुझाई ऐसा आगू होवा नानक अंधा होए कह दसे राह सब समुहाए साथे अग्गे गया मोहे मोहे पाहे सो ऐसा आगू जापे पौड़ी महारुति सब तू करी मूर्त विचारा तू गणते किने न पायो सच्चे अलख अपारा पड़िया मूर्ख आसी है जिस लब लोभ अहंकारा नाव पड़ी है नाव बुझी है गुरमति विचारा गुरमति नाम तन खत्या भक्ति परे पनारा निर्मल नाम मन्या दर सच्चे सच्यारा जिसदा जियो प्राण है अंतर जोत अपारा सच्चा साहो इक तू होर जगत वनजारा। श्लोक महला पहला। मेहर मसीत सिदक मुसल्ला हक हलाल कुरान है।

मुसलमान सदाए नानक जेते कूड़ियार कूड़े कूड़ी पाए। पौड़ी एक रतन पदार्थ वणज दे एक कच्चे देवा पारा सतगुर तुठे पायन अंदर रतन पंडारा गिन गुर किने ना लद्या अंधे पौके मुए कुड़ियारा मन मुख दूजे पच मुए ना बूझे विचारा एक बाजो दूजा को नहीं किस अगे करे पुकारा एक दिल तन सदा पौक दे एक ना परे तुजारा गिन नावे होर तन नाही होर बिख्या सब छारा नानक आप कराए करे आप हुकम सवारन हारा। श्लोक महला पहला मुसलमान कहावन मुश्किल जा होए ता मुसलमान।

हसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर पे पंडार रीते इक खने ताजी रथ सुखार हाथी पाथरे बाग मिलक कर बार किथे से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दातार सिनाफत कुदरती। श्लोक महला पहला। नदियां होवे तीनवा सुम होवे दुध कियो सगली धरती शक्कर होवे खुशी करे नित जियो पर्वत सोयना रूपा होवे हीरे लाल जड़ाओ पी तू है सालाहना आखन लह न चाओ। महला पहला। पार अठारे मेवा होवे गरुड़ा होए सुआओ चंद सूरज दो सिर दे रखे नेह चल होवे खाओ पी तू है सालाहना आखन लह न चाओ। महला पहला। जे दे हैं दुख

सच्चा सोए। क्या मेवा क्या त्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या सेज खाली, कीजे भोग विलास, क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विण सबे तोल विनास। पवड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए, मोहरा होवे हाथ मरिए चखिए, सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए, हुक्म मने सिरदार दर दीवानिए, फुरमानी है कार खसम पठाया, तबलबाज बिचार सबक सुनाया, एक होए असवार।

पास, पत्थर पाला क्या करे, खुसरे क्या घरवास, कुत्ते चंदन लाई है, पीसो कुत्ती ताट, बोला जे समझा।

बेदा गंध बोले सच कोए, मोया गंध ने की सत होए, एक गंध वरते संसार, मूरख गंध पवे मोहे मार, नानक आखे एवो विचार, सिफती गंध पवे दरबार। पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे।

मन मुखसदा कूड़ियार परम कुलानिया विस्ता अंदर वास साध ना जानिया गिन नामे दुख पाए आवन जानिया नानक पारख आप जिन खोटा करा पछाणिया। श्लोक महला पहला। सीहा बाजा चरगा कुहिया एना खवाले काहा काओ थान तिना मास खवाले एह चलाए राहा नदियां विच टिब्बे जे खाले थली करे असगाहा कीड़ा थाप दे पात साई लस्कर करे स्वाहा जेते जी जीवे ले साहा जीवाले ताके असाहा नानक ज्यों ज्यों

चार कर्म कमाई है, गुरमती आप गवाई नाम से आई है, दूजी कार है लग जन्म गवाई है, बिन नाम है सब विश्व तै जय खाई है, सच्चा सबल सलाह है, सच समाई है।

नदर शराब की बहुर ना पाई ताओ सती पैरी सत पला बही है पड़िया पास उसे पाप पुन बिचारी है कूड़े कत्ते रास उसे खोटे सती है खरे की चैसा बास बोलन फादल नानका दुख सुख खसमे पास महला दूजा पौन गुरु पानी पिता माता करत मात दिन रात।

पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्के कर्म त्यान पत के साध खादा लहै दाना कै सिरदान महला पहला सोने का बिरख पत पर वाला फुल जवे हर लाल कित फल रतन लगे मुख पासित हृदय हृदय निहाल नानक कर्म होवे मुख मस्तक लिखिया होवे लेख असर तीरथ गुर की चरणी पूजे सदा विशेख हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग पवे दज्जे नानका करिये करमी लग पौड़ी जीवदियां मर मार ना पछोताइए झूठा इहो संसार किन समझाइए सच ना करे प्यार तंदे ताइए काल बुरा छै काल सिर दुनिया आइए हुक्मी सिर जंदार मारे दाइए आपे दे प्यार मन वसाइए मोहत ना चसा विलम परिये पाइए गुर प्रसादी बुझ।

ਤਨ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤ ਪੰਖੇ ਰੂ ਕਿਰਤ ਸਾਥ ਕਬ ਉੱਤਮ ਕਬ

तू सच्चा दातार नित देवे चरण सवाया नानक मंगे दान जो तुद पाया। श्लोक मैला दूजा दीखिया आख बुझाया सुस्ती सच समेओ।

सिर पर चलिए सही है पार, नगरी कर्मी गुर विचार। कै बिन कोई ना लंगस पार, कै पाओ राख्या पाए सवार। रहाओ कै तन अगन पखे पै नाल, कै पाओ कड़िए सब दुसवार। कै बिन कारत कच निकच, अंधा सच्चा अंधी सच। बुद्धि बाजी उपजे चाओ, सियाणप पवे न पाओ। नानक मन मुख बोलन वाओ, अंधा अखर वाओ दुआओ। गौड़ी महला पहला, डर पर कर डर डर डर जाए। सो डर के हा जित डर डर पाए, तुद बिन दूजी नाही जाए। जो किछ वरते सब तेरी रजाए। डरिए जे डर हो वै होर, डर डर डरना मन का सोर। रहाओ ना जियो मरे ना डूबे तरे, जिन किछ किया सो किछ करे। हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आखा समान, किस विच पूख बहुत ने।

तेरा तू सबना का सोए जाके जी जंत तन माल नानक आखण बिकम विचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख

देही माटी बोले कौन, गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, मुई सुरत बाद अंकार, ओ नाम हुआ जो देखन हार, जय कारण तट तीरथ जाही, रत्न पदार्थ कट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने, पीकर हो दी वक्त न जाने, हाउ नाम हुआ मेरी मुई बलाए, ओह नाम हुआ जो रहा समाए, कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नजर न आया। गौड़ी मेला पहला दखनी, सुन सुन गूजे माने नाओ, ताके सब बलिहारे जाओ, आप पुलाए ठौर न ठाओ, तू समझावे मेल मिलाओ, नाम मिले चले मैं।

तुम संजोगी गण दस द्वार पंच वसे मिल जोत अपार आप तुले आपे वणजार नानक नाम सवारन हार गौड़ी महला पहला जातो जाए कहां ते आवे कह उपजे कह जाए समावे।

मन से उपजे मन माए समाए, गुरुमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए, तरवर पंखी बहु निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाव तक है आगास, देह दिस पावे कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोयल खाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरब संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग, मन सन दे ले सहज सुभाए, नानक तिनके लागू पाए। गौड़ी महला पहला।

परपंच व्याप रहा मन दोए, फिर नारायण करे सोहोए। बोहित चढ़ो जावे वार, ठाके बोहित दरगे मार, सत्साला ही तन गुरुद्वार, नानक दर कर एकंकार। गौड़ी महला पहला, उल्ट्यो कमल ब्रह्म विचार, अमृत तार गगन।

जय रहा जन्म जीत मरण मन मानिया आप मुआ मन मन ते जानिया नजर पई कर करते जानिया जप सत तीरथ मज्जन नाम अजक विचार करो किस काम नर नारायण अंतर जाम आन मनो तो पर कर जाओ किस जाचो नाही को थाओ नानक गुरु।

मरण रहन रस अंतर पाए, गर्भ निवार गगनपुर पाए, मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर शरणा रहाओ, सतगुर मिले त दुबदा पागे, कमल विगास मन हर

गए हुए ज्योतिष पाना सोई हुआ, अगर न करने वाला दुआ, न जाना कर्म केवट तेरी दात, कर्म कर्म तेरे नाम की जात रहाओ। तू एवड दाता देवन हार, सोत नाही खुद भगत पंडार, किया गर्द न आवे रात, जियो पिंड सब तेरे पास। तू मार जीवाले बख्श मिलाए, जो पावी त्यो नाम जपाए, तू दाना बीना साचा सिर मेरे, गुरमत दे परोसे तेरे। तन में मैल नाही मन राता, गुरबचनी सच शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वड्याई, नानक रहना भगत शरणाई। गौड़ी महला पहला, जिन अपख कहाया अपयोपी आया, हम पै विसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डरे समाना, पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ। जिस नर राम हृदय हर रास, सहज सुभाए मिले सावास, जाए सवारे सांझ बिहाल, इत उत मन मुख बांधे काल, एनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले परम दूरे। गौड़ी महला पहला।

हर जान राम तगत गुर सेवा करना बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कहे सब कोई सिमरत शास्त्र पंडित भुक्सोई बिन गुर अर्थ विचार न पाया मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जाऊ कह हृदय वस्या हर सोई गुरुमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरुमत पाए परमानंद जिन पाया गुरु देख।

छाया, आशा माहे निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी एहो संसारो, लब लोभ मुख

हाँ तुझ आखा मेरी काया तू सुन सिखा मारी निंदा चिंदा करे पराई झूठी लाए तबारी वेल पराई जो है जियड़े करे चोरी बुरियारी हंस चलिया तू पिछे रहिए छुटर होई है नारी तू काया रही है सुपनंतर तुद क्या कर्म कमाया कर चोरी मैं जा किछ लिया तामन पल्ला पाया हल्त न सोबा पल्त न टोई एहला जन्म गवाया हाँ खरी दुहेली होई बाबा नानक मेरी।

सुन मूरख मन अजाना, भोग तिसे का पाना रहाओ, साओ हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके वन जा रे, जियो पिंड सब रास तिसे की, मार आपे जी वाले, गौरी चेती महला पहला। अगर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना, मारे लूटे नीत नीत, किस आगे करी पुकार।

साधना अमृत केल करे नित पामन और लुटेन सो पंच जना। ताहे मड़ोली लूटिया देहोरा सातन पकड़ी एक जना जम डंडा गर...

मुंदरा ते कट पीतर मुंदरा काया की जय खिंसाता पंच चेले वस की जय रावल इहो मन की जय डंडाता जोग जुगत इव पावसता एक शब्द दूजा होर नास्त कंद मूल मन लावस्ता रहाओ मुंड मुंडाए जे गुर पाये हम गुर की नी गंगा पार त्रिभवन सारण हार स्वामी एक न चेत संधाता कर पटंग गली मन लावस संसा मूल न जावस्ता एक चरणी दे चित लावे लब लोभ की तावस्ता जपस निरंजन रचस मना काहे बोले जोगी कपट खना रहाओ काया कमली हंस आना मेरी मेरी करत बिहानी का प्रणवत नानक नागी दाजे फिर पाछे पस्तानी का गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एक है जे कर दृढ़ चित की जय रे जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा ली जय रे मन एको साहिब।

राखने री सूजस नाही लज टूकस मूसा पाई रे। मनमुख करे ते का दुख लागे गुरुमुख मिले बढ़ाई रे। जो तिन किया सोई हुआ कितना मेटिया जाई रे। सुबर भरे ना होवे ऊने जो राते रंग लाई रे। तिन की पंख हो

नानक तो मूड़ा किस पाई रे, गौड़ी चेती महला पहला। कपकी माई बात कपचेरा, किदू था वो हम आए, अगन बिंब जा

केते पंख उड़ाए। हट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे, अगो देखे पिछो देखे तुझते कहां छुपावे। तट तीरथ हम नव खंड देखे, हट पटन बाजारा लेके तकड़ी को।

हंस न सहया जाए, हंस को चाहन जो गए से आए अनस गवाए। आपन लिया जे मिले ता सबको पागत होए, कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोए। नानक करना जिन किया सोई सार करे, हुक्म न जाती खत्म का किसे बधाई दे। गौड़ी बैरागुण मेला पहला, हरणी होवा बन बसा संग मूल चुन खाओ। गुर प्रसादी मेरा सौ मिले, वार वार हो जाओ।

न पारा वार, मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार। गुरु मिले सब मत बुद होए, मन निर्मल वसे सब सोए, साच वसे साची सब कार, उत्तम करनी शब्द विचार। गुर ते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाने कोए, जीवे दाता देवन हार, नानक हरना में लगे प्यार। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, गुर

पूरे पाग मिले गुर आए साचे सहज साथ कमाए रहाओ। गुर मिले कृष्णा अग्न बुझाए गुर ते सांत वसे मन आए गुर ते पवित्र पावन सुच होए गुर ते शब्द मिलावा होए। बाद गुरु सब परम पुलाई बिन नामे बहुता दुख पाई गुरमुख हो वैसो नाम से आए दर्शन सत्य सच्ची पत होए। किसनो कही है दाता इक सोई कृपा करे शब्द मिलावा होई मिल प्रीतम साचे गुण गावा नानक साचे सा।

सब किछ साचा आपे आते है। कर्म होवे सत्संग मिलाए, हर गुण गावे बैस सुखाए, रहाओ जलो एह जेवा दूजे पाए, हर रस न चाखे फीका आलाए, बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन नावे दुखिया चलिया रोए। रसना हर रस चाखिया सहज खुदाए, गुर कृपा ते सत समाए, साचे राती गुर शब्द विचार, अमृत पीवे निर्मल तार। नाम समावे जो पांडा होए, उंदे पांडे टिके ना कोए, गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास।

गावत रहे जिस सतगुरु पावे मन संराता नाम सुहावे रहाओ एक गावे एक भगत करे नाम न पावे बिन असनेह सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना तिर राख्या सदा उद्धार भगत करे मूर्ख आप जनावे नच नच तपे बहुत दुख पावे नचिए टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वचल भगत कराए सोए सच्ची भगत विचों आप खोए मेरा प्रभु साचा सब विद जाने नानक बक्से नाम पछाने गौड़ी ग्वारे री महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोए मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे देव डिहाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मित धारा गुर अंकत मार जीवा लनहारा मन असाध साधे जन कोए अचर चरे ता निर्मल होए गुरमुख एव मन।

नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी ग्वारे री महला की जा। होमे विच सब जग बोराना दूजे पाए परम पुलाना बहुत चिंता चितवे आप न पछाना तंदा करत्या अन दिन विहाना हृदय राम रमो मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ। गुरमुख हृदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता। हो मैं मार गुर शब्द पछा।

अकथ कथा गुर शब्द बखानी रहाओ। जय सतगुर तै सत्संगत बनाई, जय सतगुर सहजे हर गुण गाई, जय सतगुर तहां हौ मैं शब्द जलाई, गुरुमुख सेवा महली थाउ पाए, गुरुमुख अंतर हर नाम वसाए, गुरुमुख भगत हर नाम समाए।

बनाई, कहां गुपत प्रगट प्रभु बनत बनाई, आपे सुतिया देह जगाई, किसकी कीमत किने न होई, कह कह कथन कहे सब कोई, गुर शब्द समावे बूझे हर सोई, सुन सुन वेखे शब्द मिलाए, वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए, नानक नाम रते हर नाम समाए, नानक नाम रते हर नाम समाए, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, मनमुख सूता माया मोह प्यार, गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार।

असंत अनाड़ी कदे न बूझे, कथनी करे ते माया नाल लूजे, अंध अज्ञानी कदे न सीजे। इस जुग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुर सद विचारा, आप करे सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म कर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम बिना को

परमे आवे परमे जाए के जग जन्मिया दूजे पाए मन मुख न चेते आवे जाए आप फुला के प्रभ आप फुलाया इहो जियो विडानी चाकरी लाया मां दुख खटे बिरसा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मिलाए एको नाम चेते विच्चों परम चुकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा जिना गुरुमुख त्याया चिन पूछो जाए गुर सेवा ते मन पति आए से तनवंत हर नाम कमाए पूरे गुर ते सो जी पाए हर हर नाम जपो मेरे पाई गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ आप पछाणे मन निर्मल होए जीवन मुक्त हर पावे सोए हर गुण गावे मत उत्तम होए सहजे सहज समावे सोए दूजे पाए न सेवे आ जाए हों मैं माया महा बिख खाए पुत कुटुंब गृह मोह आजमाए मन मुख अंधा आवे जाए हर हर नाम देवे जन सोए अंजन भगत गुर सबदी होए गुरमत बिरला बूझे कोए नानक नाम समावे सोए नानक नाम समावे सोए गौरी ग्वार

महलाती जा। गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जन कार कमावे कोई, अखुट नाम तन हर कोट मा होई, ऐसे सवा सुख दर शोभा होई, ए मन मेरे परम न की जय, गुरमुख सेवा अमृत रस पी जय। रहाओ सतगुर सेवे से महापुरुष।

सतगुर सेवे सदा मन दासा, होमे मार कमल प्रगासा, अनहद वाजे निज कर वासा, नाम रते कर माहे उदासा। सतगुर सेवे तिनकी सच्ची बाणी, जुग जुग पवती आख वखाणी, हम दिन जपे।

हर रस कोग गुरुमुख प्राणी नाम हर त्याए जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ ज्ञान स्यान गुर शब्द है मीठा गुर कृपा से किने विरले चख डीठा कर्म कांड बहु करे अचार बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार बंधन बांधियो माया पास जन नानक छूटे गुर प्रगास महला तीजा गौड़ी बैरागण जैसी तरती ऊपर मेघुला बरसत है क्या तरती मदे पानी नाही जैसे तरती मदे पानी प्रगासिया बिन पगा बरसत फिराही।

पुरुष होए कै क्या होए कर्म समाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझ ही माहि समाही। इतने जन्म फूल परे थे जा पाया ता फूले नाही, जा का कार्य सोई पर जाने जे गुर कै शब्द समाही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहाई, नानक तत् तत् क्यों मिलिया उमरप जन्म न आही। गौड़ी बैरागन महला तीजा, सब जग काले वस है बांदा दूजे पाए, हो मैं कर्म कमाव दे मन मुख मिले सजाए, मेरे मन गुर चरणी चित लाए, गुरमुख नाम निधान ले दरगे ले छबाए। रहाओ लक्ष चौरासी परम दे मन हस आवे जाए, गुरु का शब्द न कीने हो फिर जो नहीं पाए, गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसिया मन आए, अंदिन पगती रतिया हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए हो मैं तजे विकार, जन नानक करमी पायन हर नामा भगत पंडार। गौड़ी बैरागन महला तीजा, कई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया, सो बावंती नार है गुरमुख गुण गाया, पेव कड़े गुण समले सौरे वास पाया, गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया। ससुरे पेय पिर वसे करो कित विद पाये, आप निरंजन अलख है आपे मेलाये। रहाओ आपे ही प्रभु देह मत हर नाम ते आई है, वड़पागी सतगुरु मिले मुख अमृत पाई है। हो मैं दुबदा बिनस जाए सहजे सुख समाई है, सब आपे आप वर्तदा आपे नाए लाई है। मन मुख गर्व न पायो अज्ञान ए आने, सतगुर सेवा ना करें फिर पछताने। गर्व जो नी वास पाए दे गर्वे गल जाने, मेरे करते ए वह पामदा मन मुख परमाने। मेरे हर प्रभ लेख लिखाया दुर्मस्तक पूरा, हर हर नाम से आया पेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंधक बीरा हर हर बस मिलाए प्रभु जन नानक कीरा। गौड़ी बैरागन महला तीजा, सतगुर ते ज्ञान पाया हर सत बिचारा, मत मलीन प्रगट पई जत नाम मुरारा, शिव सकत मिटाया चूका अंधियारा। तुर मस्तक जिन

को लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित विद पाई है संत जनो जिस देखो जीवा हर बिन चसाना जीवती गुर मेलियो हर रस पीवा रहाओ हर हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुण दाता हर

हर शरणागत राखले हो मूड मुग्ध निस्तारे सहज आनंद सदा गुरुमति हर हर मन से आया सज्जन हर प्रभ पाया हर सोहेला गाया हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगे तूर तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी ग्वारे री महला चौथा चौथा चौक दे सतगुरु प्रसाद पंडित खास सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर पद मन में।

परश्रिय त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूर्ख हर आस तुम्हारी। खत्री कर्म करे सूर तन पावे सूद वैश पर कृत कमावे मैं मूर्ख हर नाम छुड़ावे। सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई गुरमुख नानक दे वड्याई। मैं अंधले हर टेक टिकाई मैं अंधले हर टेक टिकाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा निर्गुण कथा कथा है हर की। पज मिल साधु संगत जन की पर पौजल अकस कथा सुन हर की। गोविंद सत संगत में लाए हर रस रसना राम गुण गाए। रहाओ जो जन प्यावे हर हर नामा तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुनावे सो जन हमरे मन चित पावे। जन पग रेण वड पागी पावे संत जना स्यो प्रीत बन आई। जिनको लिखत लिखिया तुर पाई ते जन नानक नाम समाई ते जन नानक नाम

प्रीत गुरसिख मुख पाए, ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे, रहाओ जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर कर आवे, हर जन प्रीत जा हर जस गावे, सारंग प्रीत बसे जल तारा, नरपत प्रीत माया देव पसारा, हर जन प्रीत जपे निरंकारा, नर प्राणी प्रीत माया तन खाते, गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, पीखक प्रीत पीख प्रभ पाए, भूखे प्रीत होवे अन खाए, गुरसिख प्रीत गुर मिल आघाए, हर दर्शन दे हो हर आस

लागे, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे, बछरे प्रीत खीर मुख खाए, हृदय बिबसे देखे माए, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए, और सब प्रीत माया मोह काचा, बिनस जाए कूड़ा कछ पाचा, जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा, जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपिया तिन पीछे छूटी कणी, गुर सिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोलत सब पाप लह जाई, राव जब गुर मिलिया तब मन वस आया, तावत पंच रहे हर त्याया, अंदिन नगरी हर गुण गाया, सतगुर पग तूर जिना मुख लाई, तिन कूड़ त्यागे हर लिव लाई, ते हर दरगे मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर पावे, कृष्ण बल पद्र गुर पग लग त्यावे, नानक गुरमुख हर आप तरावे, नानक गुरमुख हर आप तरावे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, हर आपे जोगी दंडाकारी, हर आपे रब रहा बनवारी, हर आपे तप

चौथा साहो हमारा तू कणी जैसी तू रास दे तैसी हम ले हर नाम बनन जय रंग स्यो जे आप दयाल होए दे हम बन जा रे राम के हर वणज करावे दे रास रे रहाओ लाहा हर तगत तन खटिया हर सच्चे सा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया और वणज करे व्यापारिये अनंत तरंगी दुख माया ओए जे है वणज हर लाया फल से हा तिन पाया हर हर वणज सो जन करे जिस कृपाल होए प्रभ दे जन नानक सा।

आए। हल जोते उद्यम करे मेरा पुत ती खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छिड़ाए। मैं मूरख की गत की जय मेरे राम गुर सतगुर से।

बुरा जब गुरु बोले तब विषम हो जाए। हम जैसे अपराधी अगर कोई राख है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छदाए। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंदप में।

गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ। किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग न मेरा क्या मोह ले बोले गुण विहून नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे पुन सतगुर केरा सब जियो पिंड मुख नक दिया बर्तन तो पानी।

बाहर मुख दे गिरास छिन छिन पोचार त्यों सतगुरु गुरसिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारिक हर प्रभ के।

त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखे जी नाली। जैसे काकी तीस बतीस है, विच राखे रसना मास रत केरी। कोई जानो मास काकी के किछ हाथ है, सब वसगत है।

जरा मरा ताप सिरत साप सब हर के बस है, कोई लाग न सके बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो, जन नानक जो अंति।

कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच पुनी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिए तोटा मूल न आवई हर लाभ नित दृढ़िए जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उदरै।

गुरमुख रंग पाया अत गूड़ा, हर रंग पीली मेरी चोली, अपने हर पद की हों बोली, जब हम हर सेती मन मानिया, कर दीनो जगत सब गोल अमोली, रहाओ करो विवेक संत जन पाई, खोज हृदय देख टंडोली, हर हर रूप सब जोत सवाई, हर निकट वसे हर कोली, हर हर निकट वसे सब जग के, अपरंपर पुरख अतोली, हर हर प्रगट कियो गुर पूरे, सिर वेचियो गुर कह मोली, हर जी अंतर बार तुम शरणागत, तुम वड पुरख वडोली, जन नानक अंधिन हर गुण गावे, मिर सतगुर गुर वे चोली। गौरी पूर्वी महला चौथा। जग जीवन अपरंपर स्वामी, जगदीशर पुरख विदाते, जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी, तित मार्ग हम जाते, राम मेरा मन हर सेती राते, सत संगत मिल राम रस पाया, हर राम में नाम समाते, रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद, हर हर नाम हर साते, तिनके पाप दोख सब बिन से, जो गुरमत राम रस खाते, जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक, ते गुर संतोख शरण आते, दुर्मत मैल गई सब तिनकी, जो राम नाम रंग राते, राम तुम आपे आप, आप प्रभ ठाकुर, तुम जेवड अवर न दाते, जन नानक नाम ले ता जीवे, हर जपिए हर किर।

सो सतगुर मेल मेरा प्राणे, राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने। हम मूर मुगध अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर के बचन हर हम जाने।

हर का नाम अमृत रस चाखिया, मिल सतगुरु मीठ रस गाने, जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया, ते साकत मूड दीवाने, तिनके कर्महीन तुर पाए, देख दीपक मोय कचाने, जिनको तुम दया कर मेलो, ते हर हर सेव लगाने, जन नानक हर हर हर जप प्रगते, मत गुरमत नाम समाने, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है, स्वामी कौ किथे हर पौ नसी है, हर आपे बस ले प्रभ साचा, हर आप छदाए छुटी है, मेरे मन जप हर हर हर मन जपी है, सतगुर की शरणाई पज पो, मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटी है, रहाओ मेरे मन सेवो सो प्रभु सर्व सुख दाता, जित सेवे निज कर वसी है, गुरुमुख जाए लहो कर अपना, कस चंदन हर जस कसी है, मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम, ले लाहा हर मन हसी है, हर हर आप दया कर देवे, ता अमृत हर रस चखी है, मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे, ते साकत नर जम कुटी है, ते साकत चोर जिना नाम विसारिया, मन तिनके निकट न पिटी है, मेरे मन सेवो अलक निरंजन नर हर, जित सेवे है लेखा छुटी है, जन नानक हर प्रभु पूरे किए, हिन मासा तोल न कटी है, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे, मेरा जियो पिंड सब तेरी, दया करो हर दर्श दिखावो, मेरे मन तन लोच कनेरी, राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी, गुर किरपाल कृपा किंचत गुर कीनी, हर मिलिया आए प्रभ मेरी, रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी, साबिद तुम हर जानो मेरी, अंदिन नाम जपी सुख पाई, नित जीवा आस हर तेरी, गुर सतगुर दाते पंक

जो पानी कागद बिनस जात है त्यों मनमुख गर्भ गला डे। हम जाने कछु न जाने आगे ज्यो हर रात है त्यों ठाडे। हम फूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे काडे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिर साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है। राव साकत हर रस सा

जन नानक गुर के लाले गोले, लग संगत करुआ मीठा, गौड़ी पूर्वी महला चौथा। हर हर अर्थ शरीर हम बेचिया, पूरे गुर के आगे सतगुर दाते नाम दृढ़ाया, मुख मस्तक पाग सब आगे। राम गुरमत हर लिव लागे, राम गुरमत हर लिव लागे रहाओ, कट कट रमैया रमत राम राए, गुर शब्द गुरु लिव लागे। हो मन तन देवो काट गुरु को, मेरा परम पौ गुरु बचनी पागे। अंधियार है दीपक आन जलाए, गुर ज्ञान गुरु लिव लागे। अज्ञान अंधेरा बिनस बिनास्यो, कर वस्त लही मन जागे। साकत बदक माया तारी, तिन जम जोहन लागे। उन सतगुर आगे शीश ना बेचिया, ओए आवे जाए अपागे। हमरा बिनो सुनो

हर राया, राम गुर के बचन हर पाया। रहाओ मेरे हीरे प्रीत राम राय की, गुरु मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सत।

आया। हम अपराध पाप भोकी ने कर दुष्टी चोर चुराया। अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर भाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाद। गुरमत मनुआ गावे बद पागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर निवलावे। रहाओ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल तोवे पाम गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हृदय गुरमत राम रसायन जुहवा हर गुण गावे। मन रसक रसक

जन नानक कहो हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे। राग गौड़ी माज महला चौथा, गुरुमुख जिंदु जप नाम करम्मा, मत माता मत जियो नाम मुख रामा। संतोख पिता कर गुर पुरख अजन्मा, वद पागी मिल रामा। गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो। वद पागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, मेरा मन तन हर रंग पिन्ना। आवो संतो मिल नाम जपाहा, रिच संगत नाम सदा।

मन मोर कोह के आला शब्द मुख पाया, हर अमृत उठड़ा मिलिया हर राया जियो। जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा, आओ सखी गुण कामन करी हा जियो। मिल संत जना रंग माने रलिया जियो, गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो। हर तुठे टुल टुल मिलिया जियो, मेरे मन तन प्रेम लगा हर टोले।

मन अनदिन अनग्रह जियो हर पायड़ा वड पा गई मेरे गोविंदा नित लैला मन हस जियो हर आप उपाय हर आपे देखे हर आपे कारे लाया जियो इक खावे बस टोट ना आवे इतना फक्का पाया जियो इक राजे तख्त बहे नित सुखिए इतना भिख मंगाया जियो सब इको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा गुरपुरा अलख लखाही जियो हर हर नाम परदासे।

मेरा हर प्रभु सज्जन सैनी जियो, हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख विहानी रहनी जियो। मैं मेलो संत मेरा हर प्रभु सज्जन, मैं मन तन भुख लगाया जियो, हूँ रह ना सकूं बिन देखे मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरहो हर लाया जियो। हर लाया मेरा सज्जन प्यारा, गुर मेले मेरा मन जीवाया जियो, मेरे मन तन आशा।

जियो आपे जगत उपाएगा मेरे गोविंदा हर आप खेले बहुरंगी जियो एक ना भोग पुगाएगा मेरे गोविंदा एक नगन फिरे नग नंगी जियो आपे जगत उपाएगा मेरे गोविंदा हर दान देवे सब मंगी जियो भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा हर कथा मंगे हर चंगी जियो हर आपे भगत कराएगा मेरे गोविंदा हर भगता लोच मन पूरी जियो आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा रब रहा नहीं दूरी जियो हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा हर आप रहा पर पूरी जियो हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा हर वेखे आप हदूरी जियो हर अंतर वाजा कौन है मेरे गोविंदा हर आप बजाए क्यों वाजे जियो हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा गुर सबदी हर कब गाजे जियो आपे शरण पवाएगा मेरे गोविंदा हर भगत जना राख लाजे जियो वड पागी मिल संगती मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिदका जय जियो गौड़ी माज महला चौथा मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो मेरा नाम सखा हर पाई जियो गुण गावो संत जियो मेरे हर प्रभ केरे जियो जप गुरुमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो फिर बहुड़ न पव जल फेरे जियो क्यों हर प्रभु वेखा मेरे मन तन चाओ जियो हर मिलो संत जियो मन लगा पाओ जियो गुर शब्दी पाये हर प्रीतम राओ जियो वड पागी जप नाओ जियो मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो सतगुर मत नाम सत

इन विद कुशल होत मेरे भाई, क्यों पाई है हर राम सहाई। रहाओ कुशल ना ग्रह मेरी सब माया, ऊंचे मंदर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया। हस्ती कोड़े देख विगासा, लश्कर जोड़े नेब खवासा, गल जेवड़ी हों मैं के फासा, राज कमावे दैग सारी, माने रंग भोग बहुनारी, जो नरपत सुपने पे खारी। एक कुशल मोको सतगुरु बताया, हर जो किछ करे सो हर क्या पगता पाया, जन नानक हों मैं मार समाया, इन विद कुशल होत मेरे पाई, क्यों पाई है हर राम सहाई। रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, क्यों प्रमी है प्रम किसका होई, जहाँ जल थल मैयल रव्या सोई, गुरमुख उबरे मन मुख पत खोई, जिस राखे आप राम दयारा, किस नहीं दूजा को पहुँचन हारा। रहाओ सब में वर्ते एक अनंता, ताकू सुख सो होए अचिंता, ओहो सब किछ जाने जो वर्तनता, मन मुख मोए जिन दूजी प्यासा, बहु जोनी पवे तुर किरत लिखियासा, जैसा बीजे तैसा खासा, देख दर्श मन।

थाप कर उपाया, लख 84 जोन परमाया, साध संग पयो जन्म परापत, पर सेवा पद हर हर गुरमत, त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरहे दर्दे पर।

कहो नानक हर हर गुण गाए। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। करम पूम में बोहो नाम, पूरन होए तुम्हारा काम। फल पावे मिटे जम त्रास, नित गावे हर हर गुण जास। हर हर नाम अंतर उर्धार, सीगर कार्ज लिहो सवार। रहाओ अपने प्रभ स्यो हो सावधान, ताकु दरगे पावे मान।

उपाव छोट गहो तिसकी ओट निमख माहे होवे तेरी छोट सदा निकट कर तिसनो जान प्रभु की आज्ञा।

गुर कै बचन कटे परम पेद, गुर का बचन कतो न जाए, गुर कै बचन हर के गुण गाए, गुर का बचन जी कै साथ, गुर का बचन अनाथ को नाथ, गुर कै बचन नरक ना पवे, गुर कै बचन रसना अमृत रवे, गुर का बचन प्रगट संसार, गुर कै बचन न आवे हार, जिस जन हुए आप कृपाल, नानक सतगुर सदा दयाल, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, जिन कीता माटी ते रतन, गर्भ में राखिया जिन कर जतन, जिन दीनी शोभा वड्याई, किस प्रभ को आस पहरते आई, रमैया रेन

गुरु का शब्द अमृत रस चाख, अवर जतन कहो कौन काज, कर कृपा राखे आप लाज, क्या मानस कहो क्या जोर, चूठा माया का सब शोर, करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, सर्व सुखा सुख साचाए हो, गुरु उपदेश मने में ले हो, जाको राम नाम लिव लागी, कहो नानक सो

एको मन एको सब ठाए, पूरन पूर रहो सब जाए, गुर पूरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे, जो उभरे से बंद लख थरे।

सिर ऊपर ठाडो तवन राए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतुर सियाणा, करने हार न बुझे बिगाना। अपनी गत मित आपे जाने, क्या को कहे क्या आख वखाने। जित जित लावे तित तित लगना, अपना पला सब काहू मंगना।

ला पंजवा अनिक जतन नहीं होत छुटारा, बहुत सियाणत आगल पारा, हर की सेवा निर्मल हेत, प्रभु की दरगे शोभा सेत। मन मेरे गहो हर नाम का ओला, तुझे ना लागे ताता चोला, रहाओ जो बोहित पै सागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे, अगन शीत काल।

कर कृपा जिस आप दीवावे, हर हर नाम जा के हृदय वसे, दुख दर्द ते नानक नसे, गौड़ी द्वारे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर मन ना अघाना, अनक रूप देख नहीं।

त्रिग तन माया संग राते राव जो बिगारी कै सिर दीजे दाम ओए खसमे कै गृह उन दुख सहाम जो सुपने होए बैस

नहीं कृष्णा, आप बिना है आप करे रास, नानक प्रभ आ गए अरदास। बौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, बहु रंग माया बहु विध पेखी, कलम कागज सियान पलेखी, मेहर मलूक हुए।

पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा, होन न पाये राम के दासा। कवन सो विद्य जित राम गुण गाए, कवन सो मत जित तरह ए माए राव। जो पलाई सो बुरा जाने, साच कहे सो विखे समाने। जाने नाही जीत अर हार, इहो वलेवा साकत संसार। जो हला हल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संग कह नाही नेर, लख चौरासी परमता फेर। एक जाल पहाए पंखी, रस रस को

प्यारी ए रस राती होए तृप्तारी रहाओ हे जेवे तू राम गुण गाओ निमक निमक हर हर हर त्याओ आन न सुनिए कतहु जाइए साध संगत वड़।

हर गुण दावत रसन अमोली बनस्पत मौली फल फूल के दे ए रस राती बोर न छोड़े आन न रस कस लवे न लाई कहो नानक गुर पे है सहाय गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा मन मंदर तन साजी बार इसी मदे बस्त अपार इसी पीतर सुनियत साओ कवन बपारी जाका उहा विसाओ नाम रतन को व्योहारी अमृत भोजन करे आहारी रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय कवन सो जुगत जित कर पी जय पाए लगो तज मेरा तेरे कवन सो जन जो सौदा जोरे।

संगा ठाकुर नाम कियो उन्वर्तन त्रिपत अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरपुरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हरक सोग दोहूं ते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते दीसे सब में सब ते रहते पार ब्रह्म का ओए ध्यान करते संतन की महिमा कवन वखानो अगाध बोध किछ मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहि।

व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता, व्यापत हस्त कोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत

पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करे हो फासा, व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा, आचार व्यवहार व्यापत ए जात, सब कुछ व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापे माए, कहो नानक जिन तूर संत पाए, ताके निकट न आवे माए, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा।

सगल भगत जा का नाम आधार, सर्व व्यापत पूरन तनी, जा की शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा कहे, जिस सिमरत जम किछु ना कहे, जिस सिमरत होत सूखे हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा तो सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण।

संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब कर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल से आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक।

अब मत दिन सी दुष्ट बिगानी, जब ते सुनिया हर जसानी, रहाओ सहज सुख आनंद निधान, राखन

है पार ब्रह्म परमेश्वर क्या गुर पूरे ते मत पाए रहाओ करण करावन हार दयाल जी जम सगले प्रतपाल अगम अगोचर।

प्रभ सेवक साचा वे साहो गुरपूरे रथ दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राट गौड़ी द्वारे री महला पंजवा गुरु प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रभ बाणी पूरे गुर की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सह सबाए रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बाँ पकड़ लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पुने चार हर हर नाम जी प्राण आधार साचा तन पायो हर रंग दुतर करे साध के संग सुख बैसो संत सज्जन परवार हर तन खटियो जाका नहीं सुमार जिसे प्राप्त किस गुरदे नानक बिरथा कोई नहे गौड़ी द्वारे री महला पंजवा हस्त पुनीत

माया मगन ना कछुए मोहे, उदरे आप करे संसार, राम नाम जप के कंकार, आप कमाओ अवरा उपदेश, राम नाम हृदय प्रवेश, जाके माथे एहो निदान, सोई पुरख जपे भगवान, आप तैर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हों तिस

विचर आ गया तिचर पोगे पोग जले न पाये राम स्नेही तीर्थ संयोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हट जल जाये प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये शील संयम प्रिय आज्ञा माने किस नारी को दुख न जमाने कौ नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया तन सती दरगे परवानिया गौरी द्वारे री महला पंजवा हम तनवंत पागत सच नाए हर गुण गावे सहज सुभाए रहाओ।

सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय, रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए, ताको चिंता कतहु नाहे, जाके दिन सो मन से फरमा, ताके कछु नाही डर जमा, जाके हृदय दियो गुरनामा, कहो नानक ताके सगल निधाना, गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का मन में थाना, गुरु प्रसाद किने विरले जाना, सहज कथा के अमृत कुंटा, जिसे प्राप्त तिस

गौरी महला पंजवा आपन तन नहीं जाके दरबा राज मिलख नहीं आपन दरबा आपन नहीं का को लपटायो आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ सुत बनता आपन नहीं पाई इष्ट मीत आप बाप ना माई सोयना रूपा सुन नहीं दाम हैवर गैवर आपन नहीं काम कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया इसका सब किस जिसका।

मीत से कर तब कुशल समाना, एकाटेक मेरे मन चीत, जिस किस करना सो हमरा मीत रहाओ, मीत हमारा वे परवाह, गुर कृपा के मोहे असनाहा, मीत हमारा अंतर जामी समरथ।

कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ आया, केवल नाम हृदमाए समाया। गौड़ी महला पंजवा, काकी माई काको बाप, नाम का रीत झूठे सब साथ, काहे को मूर्ख पकलाया।

तो वड़ा जिन राम लिवलाई रहाओ पूमिया पूम ऊपर नित लुजे छोड चले कृष्णा नहीं बुझे कहो नानक ये तत विचारा बिन हर भजन।

राज योग हर के मार्ग पतित पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हार सद वसै हदूरा कहु नानक मेरा सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा। संत की तूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण के छोट संत का दर्श पूरन स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत के संग मिटिया अंकार दृश्य आवे सब एकंकार संत।

प्रसन्न आए वस पंचार, अमृत नाम हृदय ले संचार, कहो नानक जा का पूरा कर्म, इस पेटे साधु के चरण, गौड़ी महला पंजवा, हर गुण जपत कमल प्रगास है, हर सिमरत त्रास सब नास है, सामत पूरी जित हर गुण गावे, वडे पाग साधु संग पावे रहाओ, साध संग पाये निज नामा, साध संग पूरन सब कामा, हर की भगत जन्म परवान, गुर कृपा ते नाम बखान, कहो नानक सो जन परवान, जा कै हृदय वसै भगवान, गौड़ी महला पंजवा, एक सों जा का मन राता, विसरी तिसै पराई पाता, बिन गोविंद ना दिसै कोई, करन करावन करता सोई रहाओ, मने कमावे मुख हर हर बोले, सो जन इत उत्कत है न डोले, जा कै हर तन सो सत्साओ, गुर पूरे कर दीनो विसाओ, जीवन पुरख मिलिया हर राया, कहो नानक परम पद पाया, गौड़ी महला पंजवा, नाम भगत कै प्राण आधार, नामो तन नामो व्योहार, नाम वडाई जन सोबा पाए, कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ, नाम भगत कै सुख स्थान, नाम रत सो भगत परवान, हर का नाम जन को तारे, साफ साफ जन नाम समारे, कहो नानक जिस पूरा पाग, नाम संग ताका मन लाग, गौड़ी महला पंजवा, संत प्रसाद हर नाम से आया, तब के तावत मन तृप्ताया, सुख विश्राम पाया गुण गाए, श्रम मिटिया मेरी हति बलाए, रहाओ चरण कमल अराद भगवंता, हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता, सब तज अनाथ एक शरण आयो, ऊंच स्थान तब सहजे पायो, दुख दर्द प्रम पौ नसिया, करन हार नानक मन

चरण ठाकुर के मार्ग कहो पलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम तय पार उतरिया रहाओ नेत्र संतन का।

चरण कमल ठाकुर उरदार, दुलभ दे नानक निस्तार। गौरी महला पंजवा, जाको अपनी कृपा तारे, सोजन रसना नाम उचारे। हर बिसरत सहसा दुख व्यापे, सिमरत नाम परम पौ पागे। रहाओ हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। हर की टहल कर जन सोहे, ताको माया अगर न पोहे। मन तन मुख हर

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुरु पूरा पेटिया लिव लाए, रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का तेज जमजाल, कहो नानक गुर पूरा पाया, ताके बहुर न व्यापे माया। गौड़ी महला पंजवा, रास लिया गुर पूरे आप, मन मुख को लागो संताप, गुरु

मृतक देह साध संग बिहुना आवत जात जोनी दुख छीना रहाओ। अनेक वस्त्र सुंदर पहराया जो डरना खेत माहे डराया सगल शरीर आवत सब काम नेफल मानुक जपै नहीं नाम कहो नानक जा को कहे दयाला।

साध संग मिल पजे गोपाला। गौड़ी महला पंजवा। कल कलेश गुर शब्द निवारे, आवन जान रहे सुख सारे। तय दिन से निरपो हर के आया, साध संग हर के गुण गाया। रहाओ चरण कवल रिद अंतर तारे, अग्न सागर गुर पार उतारे। बूढ़त जात पूरे गुर कांडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे। कहो नानक किस गुर बलिहारी, जिस पेटत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवा। साध संग ताकी सरनी परो, मंतन अपना आगे तरो। अमृत नाम पीवो मेरे पाई, सिमर सिमर सब तपत बुझाई। रहाओ तज अभिमान जन्म मरण निवारो, हर के दास के चरण नमस्कारो। सास सास प्रभ मने संभाले, सो तन संचो जो चाले नाले। तिसे प्राप्त जिस

अमृत दृष्ट संत जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव, रहाओ मिट गई चिंत पुनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुण ताशा, दुख नाठे सुख आए समाए, हील न परी जा गुर फरमाए, इस पुनी पूरे गुर मिले, नानक के जन

सगल रोग का दिल स्या खाओ। सैज सुभाए बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभ सुमरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ ना आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, पले दिन पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओ बेला को हों बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ। रहाओ सफल मूरत सफल ओ परी, जित रसना उचरे हर हरी। सफल ओ माथा संत नमस्कार, चरण पुनीत चले हर मार्ग। कहो नानक भला मेरा।

गुरु का शब्द रास मन माहे, नाम सिमर चिंता सब जाहे, बिन भगवंत नाही अनकोए, मारे राखे को सोए रहाओ, गुरु के चरण हृदय उर्धार, अगन सागर जब उतरे पार, गुरु मूरख्यों लाए ध्यान, ईहा ऊहा पावे मान, सगल त्याग गुर शरणी आया, मिटे अंधे से नान सुख पाया, गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन वसे मन आए, जब मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाणी, रहाओ इक्कस बिन नाही दूजा कोए, जाकी दृष्ट सदा सुख होए, साजन मीत सखा कर एक, हर हर अक्षर मन में लेख, रव रया सरबत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी, गौड़ी महला पंजवा, तै में रचियो सब संसारा, तिस पौ नाही जिस नाम अधारा, पौ ना व्यापे तेरी सरना, जो तुझ पावे सोई करना, रहाओ सोग हरख में आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रभु पाना, अगन सागर मह व्यापे माया, से शीतल जिन सतगुरु पाया, राख ले प्रभु।

तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा से परम पौ पागे, पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी सगल कथा के अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सत।

कण बिना जैसे सोथर तुखा, नाम भी होन सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम भी होन त्रिग जे बिगानी, रहाओ नाम बिना ना

ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ।

जो कुछ वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रभु दान, नानक सिमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्श पाये वड पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने भी नाही। राव सर्व निधान राखे जन माहे, ताके संग किलविक दुख जाहे, जन की महिमा कति न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाए, कर कृपा प्रभु जिनो सुनी जय, दास की सूर नानक को दी जय। गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत तेरी जाए बनाए, सर्व कल्याण वसे मन आए।

पूरे सतगुरु मिलन सारे गोविंद गुण गावो मेरे पाई मिल साधु हर नाम ते आई रहाओ दुलभ दे होई परवान सतगुरु ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग तय परम मिटाया जत तत देखो तत

चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर पेटत हर स्यों लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा। करे दुह कर्म दिखावे होर, राम की दरगे बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल तल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बांदा चोटा खावे, अनक पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट हो है संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस कृपाल विधाता। गौरी महला पंजवा। राम रंग कदे उतर न जाए, गुरु पूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो

आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा, रहाओ साध संग कछ पौ ना पराती, गुण गोपाल गाये दिन राती, कर कृपा प्रभु बंदन छोटे, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस की रह जननीत, गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता

आस आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिटे कलेश चरण कमल मन में प्रवेश उचरो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा। काम क्रोध लोभ मद खोए साध के संग किल बिख सब टोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजे सागर वाला। गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए किस क्यों आलस क्यों बने माए खसम विसार आन कम लागे कौडी बदले रतन त्यागे रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोभा दास सलाम करत कत सोभा अमृत रस खावे खान पान जिन दिए तिसे न जाने स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श लेहो प्रभ अंतरगामी। गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माए ध्यान सगल तीर्थ मजन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोट जन्म की मल ले जाए रहाओ हर की कथा हृदय माहे बताए मन बाँचत सगले फल पाए जीवन मरण जन्म परवान जाके हृदय वसे भगवान कहो नानक से जन पूरे जिना प्राप्त साधु पूरे। गौड़ी महला पंजवा खादा पैन दा मुँह कर पाए किसनो जो है दूत धर्म राए किस क्यों बेमुख जिन जियो पिल जीना कोट जन्म पर मैं बहुजूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो विसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उदर कृपा सागर पार ब्रह्म तेरी।

सगल मनोरथ मुक्त पद गीत ऐसा मीत करो सब कोए जाके बिरथा कोए न होए रहाओ अपने स्वाए हृदय ले तारिया दुख दर्द रोग सकल बिदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनित बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा। गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत।

औखद मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार सब सब परम पजियो पार ब्रह्म कौ नानक अटल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई तित बल रोग ना व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर करण सूर फारे जम कागर रहा सतगुरु मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संजम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै सहाई मान मोह खोए गुर परम तेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौरी महला पंजवा दिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम सितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का ठौर न ठाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत आन सुखा नहीं आवे चीत सदा सदा सिमरो प्रभु स्वामी मिल नानक हर अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा आठ पैर संगी बटवारे कर कृपा प्रभु ले निवारे ऐसा हर रस रमो सब कोए सर्व कला पूरन प्रभु सोए रहाओ महातपत सागर संसार प्रभु खिन में पार उतारन हार अनित बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुक्त फल पाए उकत स्यान इसके कछ नाहे कर कृपा नानक गुण गाहे गौड़ी महला पंजवा थाती पाई हर को नाम विचर संसार पूरन सब काम वड पागी हर कीर्तन गाय पार ब्रह्म तू देहता पाये रहाओ हर के चरण हृदय उर्धार पाव सागर चढ़ उतरे पार साधु संग करो सब कोए सदा कल्याण फिर दुख ना होए प्रेम भगत पज गुणी निधान नानक दरगे पाये मान गौड़ी महला पंजवा जल तल मैयल पूरन हर मीत ब्रह्म बिन से गाए गुण गीत उठत सोवत हर संग पहरुआ जाके सिमरन जम नहीं डरुआ रहाओ चरण कमल प्रभ हृदय निवास सगल दुख का होया नास आशा मान तान तन एक साचे साकी मन में टेक महा गरीब जन साध अनाथ नानक प्रभ राखे देहात गौरी महला पंजवा हर हर नाम मजन कर सूचे कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाओ हर के चरण हृदय में बसे जन्म जन्म के किल विख नसे साध संग कीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट न आया मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुटियो बिक संसार कर कृपा प्रभु कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ शरणाई जिन हर जाते मन तन शीतल चरण हर गाते पै पंजन प्रभु मन ना बसाही दरपत दरपत जन्म बहुत जाही रहाओ जाके हृदय बसियो हर नाम सगल मनोरथ ताके पूरन काम जन्म जरा मृत जिस वास सो समरथ सिमर सास गिरास मीत साजन सखा प्रभ एक नाम स्वामी का नानक टेक गौड़ी महला पंजवा बार राख्यो हृदय समाल कर आए गोविंद ले नाल हर हर नाम संतन कै संग मंतन राता राम कै रंग रहाओ गुरु प्रसादी सागर तरिया जन्म जन्म के किल विख सब हिरिया शोभा सुरत नाम भगवंत पूरे गुर का निर्मल मंत चरण कमल हृदय में जाप नानक पेख जीवे प्रताप गौड़ी महला पंजवा तन एहो थान गोविंद गुण गाए कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही
कोट आनंद जय हर गुण गाही, हर बिसरिए दुख रोग कनेरे, प्रभु सेवा जम लगै न नेरे। सोवड पागी निंचल खान, जय जपिए प्रभु केवल नाम, जय जाइए तह नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलिया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, जो प्राणी गोविंद त्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परम

रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा, जग में आया सो परवान, कट कट अप

चोल महारस हर अमृत की जय रहाओ। निर्मल उद्दक गोविंद का नाम, मज्जन करत पूरन सब काम। संत संग ते गोष्ट हो।

साज तूर कर सुड मंजाई, अनक जला जे तो वै दे मैल न उतरे सुध ना ते। सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौकाल, मुकत पुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवां, जीवन पदवी हर के दास, जिन मिलिया आत्म प्रगास, हर का सिमरन सुन मन कानी, सुख पावे हर द्वार प्राणी। रहाओ आठ पैर के आई है गोपाल ना।

पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार, निर्मल गुण गावो नित नीत, गई ब्याद उबरे जनमीत, मन बच क्रम।

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करकारे, बादशाह सा सब वस्त्र दीने, अमृत नाम मारस पीने, निरपो होए।

ताहे न जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला, सब कह मिटे तुम्हारे नाए, एतत संग हर हर गुण गाए, रहाओ, हर संग राते मिटे सब चिंता, हर

मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पए आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कार्य आए, एकत साध संग

अस्थिर पै बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौरी महला पंजवा, कोट मज्जन तीनो स्नान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिटे साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे, अनेक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन आरादे, सिमरत सासत वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सो मन माने, अगाध बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय विचारे, नानक को प्रभ कृपा धारे, गौरी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया, गुरु

माई प्रभु की शरण उभरे सब कोए करण कराव पूर्ण सच सोए रहाओ अब मन बसिया करने हारा कै दिन से आत्म सुख सारा कर कृपा अपने जन राखे जन्म जन्म के

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापे काई। रहाओ जो जो चितवे दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गवाई, नानक हर गुण निर्भोगाई। गौड़ी महला पंजवा, कुछ बल वीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत जह लेहो अंगुरिया, रहाओ श्रवण ना सुरत, नैन सुंदर नहीं आरत। द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ, करुणा में साजन नीत।

सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नामा रस माए सो प्रसन्न पय केशवा से जन हर गुण गाए मात पिता सुत

सर्व कल्याण सुख सच पावे रहाओ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिजले काहू एक लिव लागी, जिन हर पाया सेवड पागी। ब्रह्मादित सन कादित चाहे, जोगी जति सिद्ध हर आहे, जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहे। ताकि शरण जिन बिसरत नाही, वद पागी हर संत।

आओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोय सगल त्यागी जो प्रभु की हर कथा सुनावे हम दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेटियो पुरुष रसिक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवा निकसरे पंखी सिमर हर पान।

मैं कोई संत मिला वे नेरा रहाओ, सेवा करो दास दासन की, अनक पांच किस करो निहोरा, तुला तार तोले सुख सगले बिन।

कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हो मैं पाई माया मोह सबो।

खेद करें और बहुत संतावे हैं। आयो शरण तुहारे कर कर हारो अंत बहु पाती छोड़े कतहु नाही। एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाहे। कर कृपा संत मिले मोहि तिनके तीरज पाया। संती मंत्र दियो मोहि निरपो गुर का शब्द कमाया। जीत ले ओए महा दुखादी सहज सुहेली बानी कहो नानक मन पाया परगासा पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा ओ अविनाशी राया निरपो संग तुम्हारे बसते इहो धर्म कहाँ ते आया। रहाओ एक महल तू हुए असारो एक महल निवानो एक महल तू आपे आपे एक महल गरीबानो एक महल तू पंडित बखता एक महल खल होता एक महल तू सब कुछ ग्राहज एक महल कछु न लेता। काश की पुत्री कहाँ करे बकरी खिलावन हारो जाने जैसा पेट करावे बाजीगर ओ कैसो ही साज आने। अंक कोठरी बहुत पाप करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राख है कैसे रहना क्या हो करे बिचारा। जिन कुछ किया सोई जाने जिन ए सब विद साजी कहो नानक अप

सदन सुहेले सर्व सुखा मैं तुझते पाए मेरे ठाकुर अगे अतोले वरन ना साको तुमरे रंगा गुण निधान सुख दाते अगम अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते प्रम्पो काट किए ने केवल जब के हूँ मैं मारी जन मरण को चू

जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन संसार अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आशा।

पंच चेले मिल पे इकतरा एक के वस्तिये दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थी परम जराए चराई विपूता पंच एक कर पेखिया सहज सुख सोकी में पुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जय कौ नाही ता आसन बांधियो सिंगी अनहत बानी तत विचार डंडा कर राखियो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वद पागी पेटे माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटे गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औखद जाको गुर दिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिट्यो किन तंते गुर शब्द दीपक पर दासा।

रंगा पूरन होई मन की आशा गुर के त्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्त

प्रवराते पोत पोत भगतन संग जोरी प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी राम संत में भेद किछ नाही एक जन कई महलाख करोरी जा कह ही है प्रगट प्रभ हुआ हम दिन कीर्तन रसन रमो।

जय। हर नाम मेरा मन जाके, संत प्रसाद नानक हर पेटे, मन तन शीतल कराके, गौरी महला पंजवा, सह समायो देव, मोको सतगुर।

जिन तार ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपी जय रे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाए रे जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओही त्याए रे कोट पतित उधारे किन में करते बार न लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवाजे रे

सर्व सुख दाता सगल कथा प्रतिपारे रहाओ महा कष्ट काते खिन पीतर रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर सरणी जलती अग्नि निवारे गर्भ कुंड नरक के राखे पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत।

तेरे ओला नाम का अवर जे कर्म करावनो तिन में पव है जाम का रहा अवर जतन नहीं पाये वदे पाद हर के आये।

आराधी है, संत संग हर मन वसै, कर्म मोह पौ साधी है, रहाओ वेद पुराण सिमरत पने, सब ऊंच विराजित जन सुने, सगल स्थान पै पीत कीन, राम सेवक पै रहत कीन, लख चौरासी जोल फिरे, गोविंद लोक नहीं जन्म मरे, बल बुद्ध सियान पहु में रही, हर साध शरण नानक गही, गौड़ी महला पंजवा, मन राम नाम गुण गाय, नीत नीत हर सेवी है, सास सास हर त्याय, रहाओ संत संग हर मन वसे, दुख दर्द अनेरा प्रम नसे, संत प्रसाद हर जाती है, सो जन दुख ना व्यापी है, जाको गुर हर मंत्र दे, सो उबरिया माया अगन ते, नानक

आनंद कहा आगे जी के संग काम रहाओ कटिए तेरा अनुरोग तू गुरु प्रसाद कर राज योग हर रस जिन जन चाखिया ताकि कृष्णा लाखिया हर विश्राम हित पाया सो

गौरी महला पंजवा जाको बिसरे राम नाम ताहू को पीर साध संगत मिल हर रवे से गुणी गहीर रहाओ जाको गुरमुख हृदय बुद्ध ताके कर तल नव निज सिद्ध जो जाने हर प्रभ तनी किछ नाही ताके कमी करने हार पछानिया सर्व सुख रंग माणिया हर तन जाके गृह वसे कहो नानक तिन संग दुख नसे।

पान प्रभ का खाना रहाओ ऐसे है रे खसम हमारा छिन में साज सवार नहारा काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण गावा।

सुख भय अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अग खय कृपा निज प्रभ मया तार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाए रहाओ एक रैन के पावन तुम आए बहु जुग आस बदाए गृह मंदिर संपे जो दिशा जो तरवर की छाए तन मेरा संपे सब मेरी बाग मिलक सब जाए देवनहारा बिसरियो ठाकुर चिन्मय होत पराए।

रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलहरिए रहाओ, जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइए, जो होए दयाल सतगुर अपना, ताए मत बुद पाइए, मेरे मन नाम ले जम बंके छूटे, सर्व सुखा सुख

सुंदर नारी अनेक प्रकारी पर गृह भिखारी बुरा पला नहीं सुझिए, बुरा पला नहीं सुझिए। अनेक बंधन माया परमत परमाया गुण नहीं गाया मन बिछे ही मैं लुझिए। जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया।

अब दुखन पंथ पयान रहाओ, सेवक सेवक सदा सेव तेरे संग बस है पाल, कर सेवा तू साध की, हो का तुझे जम जाले,

सुख रे। हर्ष शोक हान मिर्त दुख सुख चित संसार गुर मिले। राव जौ लो हों कि सोचो चितो तौ लो दुखन परे। जो कृपाल गुर पूरा पेटिया सो अनद सहजे। जेती स्यान कर्म हों किए तेते बंद परे। जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त भये। जो लो मेरो मेरो करतो तौ लो बिखेरे। मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए। जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान परे। कोट डार गुर पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय। गौड़ी माला महला पंजवा पावन त्यागियो री त्यागियो। त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो। सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोविंद आग्यो। रहाओ मान अभिमान दो समाने। मस्तक डार गुर पाग्यो। संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो। बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दृष्टाग्यो। निरपो पै संत प्रम डार्यो पूरन सर्वाग्यो। जो किस करते कारण कीनो मन बुरो न लाग्यो। साध संगत प्रसाद संतन के सोयो मन जाग्यो। जन नानक और तुहारी परयो आयो शरण आग्यो। नाम रंग सहज रस माने।

सलथिया सतगुर सब समाया रहाओ लाठी पूख त्रिसन सब लाठी चिंता सगल बिसारी कर मस्तक गुर पूरे तरयो मन जीतो जग सारी त्रिप अधाए रहे रिद अंतर दोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मुके अचरज एक सुनो रे पाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाए परदा ठाकुर जो पेट्यो तो बिसरी तात पर आई कहो ना जाई एहो अचंबो सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच पे बिगाता गुर निधान हृदय ले राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरणी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते तरणी रहाओ शास्त सिमरत वेद बिचारे मां पुरखन यूं कहया बिन हर भजन नाही निस्तारा सूख न किन्हू लया तीन पवन की लखनी जोरी बूझत नाही लहरे बिन हर भगत कहां स्थित पावे फिर तो पहरे पहरे अनक बिलास करत मनमोहन पूरन होत न कामा जलतो जलतो कभू न बूझत सगल बिरसे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता यह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारे नानक जन की।

किस इन्हें कमानो जब तब कछु न सादा दह दिस ले एहो मन दौरायो कवन कर्म कर बांदा मन तन तन भूम का ठाकुर हौ इसका एहो मेरा परम मोह कछूजत नाही ए तैखर पे पैरा तब एहो कहां कमावन परया जब एहो कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपे करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन

हर दिन अवर क्रिया बिरते जब तब संयम कर्म कमाने एह ओरे मूसे रहाओ वर्त नेम संयम में रहता तिनका आद न पाया आगे चलन और है पाई उहां कामना आया। तीरथ नाए अर करनी प्रमता आगे ठौर न पावे उहां कामना आवे एह बिद ओ लोगन ही पति आवे। चतुर्वेद मुख बचनी उचरे आगे महल न पाये बूझे नाही एक सुदाकर ओ सगली चाक चखाइए। नानक कह तो यो बिचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर से वो अर नाम ते आवो त्यागो मनोगुमानी। गौड़ी माला पन्नवा माधो हर हर हर मुख कही है हम ते कछु न होवे स्वामी ज्यों राखो त्यों रही है रहाओ क्या किस करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा

पतित पवित्र लग गुर के पैरे जियो, प्रम को काट किए निर्वैरे जियो, गुर मन की आस पुराई जियो, जिन नाउ पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सो करनी जियो, जन नानक सह समाई जियो, गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस साथ साथ सितारे जियो, संत देव संदेशा पै चरणारे जियो, खुद दिन कित बिद करिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इहो मन बिद संदा जियो, पेट दर्शन इहो सुख लइए जियो, चरण पखार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पह कहिए जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप करिया जियो, इहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन विच प्यारे जियो, मन तन तेरा इहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरणाई जियो, जिस मिले है मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाई जियो, प्रभ को सद बल जाई जियो, एहो निधान जपैवट पागी जियो, नाम निरंजन एक निवलागी जियो, गुरपूरा पाया सब दुख मिटाया जियो, आठ पैर गुण गाया जियो, रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो, तू सच्चा साहु भगत मन जारा जियो, हर तन रास सच बा

जोर तुम्हारे सुख वसा सत शब्द निशान राव सबे गल्ला जातिया सुन के चुकिया कद ही सुरत न लदिया माया मोहड़िया दे बुजार सारता से अखी जिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल न सुनी कहा इकस दो चहु क्या गणी सब इकत साध मुठी इक अद नाए रसियड़ा का विरली जाए उठी भगत सच्चे दर सोंदे आनंद करें दिन रात रंग रते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौड़ी में।

पूरन सतगुरु ज्ञान रहाओ, जित कट वसे पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ, जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ, सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध, ओठ तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम आगाज, पाए किरपाल गुसाइया नखे सोग संताप, तत्ती वाव न लगई सतगुर रखे आप, गुर नारायण दया गुर, गुर सच्चा सृजनहार, गुर तुठ है सब किस पाया जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा, हर राम राम राम रामा जप पूरन होए कामा रहाओ, राम गोविंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिसते सोई पाई मित्र, सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे, क्यों गोविंद मनो विसारिये जिस सिमरत दुख जाहे, जिस लड़ लगे जीविये पव जल पईये पार, मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार, जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रात, नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबात। गौड़ी माज महला पंजवा, मीठे हर गुण गाओ जिंदु तू, मीठे हर गुण गाओ सच्चे सेती रतिया।

फिर जो करे फिट सो जीवन सोए अंचल गह के साध का तरना इव संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परवार साजन बंग सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थ्यो कर हर के चरण निदान नानक जाच।

मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते एनस पागो, रहाओ सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर शोक ते रह अतीता तिन जग तत पछाना, उस तत निंदा दो त्यागे खोजे।

शरणाई गौड़ी महला नावा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एन इस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुन गावे रहाओ, पूत मीत माया ममता स्यो, ए विद आप बंधावे, मिर्ग तृष्णा ज्यो चूठो इहु जग, देख ताक उठतावे, भुगत मुकत का

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहा बिखमार त्रिकुटी छूटी विमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पय सुहा रंग माया नगर पई दिख ठाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर क्यों ला गया रस संग्रह दिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साध रहे बादंग अंकारा चित हर क्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पथ के आचारा दृष्ट पई सुख आत्मा।

पाए, भगत करी राचो हर नाए, सिखिया दीखिया भोजन पाओ, हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म त्याना, जोत पई ज्योति माए समाना, लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना, करता करना करता जाना। न पंडित न चतुर सियाना, न फूलो न परम फुलाना, कथो न कथनी हुक्म पछाना, नानक गुरमुख सहज समाना। गौड़ी ग्वारे री महला पहला, मन कुंचर काया उद्याने, गुर अंकस सच शब्द निशाने, राज द्वारे शोभ सुमाने, चतुराई ने चीनिया जाए, बिन मारे क्यों कीमत पाए। रहाओ कर में अमृत तस कर ले, नन्ना कार ना कोई करे, राखे आप वड्याई दे, नील अनिल अगन इक थाई, जल निवरी गुर बूझ बुझाई, मन दे लिया रहत गुण गाई, जैसा कर बाहर सो तैसा, बैस गुफा में आँखों कैसा, सागर डूगर निर्...

जिन बूझिया तिन सहज पछाणिया देख विचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त इक नाई तही निरंजन रहा समाई निज कर व्याप रहा निज ठाई।

निरकरवा से साज समाए, जमन मरना ठाक रहाए, पूरे गुर के ए मत पाए। कथनी कथो ना आवे और, गुर पुछ देखिया ना ही दर होर, दुख सुख पाने तिसे रजाए, नानक लीच कह लिगलाए। गौड़ी महला पहला, दूजी माया जगत चितवास, काम क्रोध अंग

तरण गगन नह देखो दोए, नारी पुरुष सब आई लोए, रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुरु मोको एक बुझाया, एक निरंजन गुरुमुख जाता, दूजा मार शब्द पचाता, एको हुक्म वर्ते सब लोई, एक से सब ओपत होई, राह दोवें खसम एको जान, गुर कै शब्द हुक्म पछाण, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे सा साचा, मुक्त पेर क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत विचारे, पंच मार साच उधारे, रहाओ जिसके अंतर साच वसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, राम सत एको गृह उद्यान है, करणी कीरत कर्म समान है, एक शब्द एक पिछला मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत फट जागे, पैर अच रहे ना बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिवलाए, आपे मेले परम सुखाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, हमें मारे करनी सार, जब तब संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौरी महला पहला, सीमा गही व्रत सील संतोखं, रोग ना व्यापे ना जम दोखं, मुक्त पाए प्रभ रूप न देखं, जोगी को कैसा डर होए, रूप बिरख गृह बार सोए, रहाओ निरपो जोगी निरंजन त्यावे, अंदिन जागे सच विवलावे, सो जोगी मेरे मन पावे, सो जोगी मेरे मन पावे, काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्व निवारे, आप तरे पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरपो होए, जैसा सेवे तैसो होए, नर नहीं केवल निरपो ना हो, अनाथे नाथ करे बल चाओ, पुनरप जन्म ना ही गुण गाओ, अंतर बार एको जाने, गुर के शब्दे आप पछाने, साचे शब्द दर निशाने, शब्द मरे तिस निज कर वासा, आवे ना जावे चूके आसा, गुर के शब्द कमल पर गासा, जो दिसे तो आप निराशा, काम क्रोध बिक भूख पे आता, नानक बिरले मिले उदासा, गौरी महला पहला, ऐसो दास मिले सुख होई, दुख विसरे पावे सत सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अखट मज्जन चरने तूरी, रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर रस सारा, सत करनी अब अंतर सेवा, मंत्र तास्या अलख अकेवा, जय जय देखो तै तै साचा, दिन बूझे जगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख बिरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु कहे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस कहो देख करो अन पूजा, संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे, आत्म चीने सो तत विचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हमता के दास, गौड़ी मेला पहला, ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विपत पड़ी पछतानिया, जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्व बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्व निवारे, रहाओ बल राजा माया अंकारी, जगन करे

बिन गुर अंत ना पाए अपेव आप पुलाए आपे मत देव दुर्मत हरनाख दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ परहारी प्रहलाद उधारे कृपा तारी पूलो रावण मुग्द अचेत लूटी लंका सीत समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सहस बाहो मद कीट में खासा हरनाखस ले नखो विदासा दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमुन संगारे रकत बीज काल नेम विदारे दैत संगार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संगारे गुरमुख साच पगत निसारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम न जानिया करता सोई जन को दुख पचे दुख होई जन में जय गुर शब्द न जानिया क्यों सुख पावे परम पुलानिया इत तिल पूले बौर पछतानिया कंस के चांडूर ना कोई राम ना छीनिया अपनी पत कोई बिन जगदीश ना राखे कोई बिन गुर दर्ब ना मेटिया जाए गुरमत धर्म

काट कटम्बर पहर हटावो, बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पहरो क्या ओट दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोर सिगार करे अति प्यारी, बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दर कर महला सेज खाली, एनक फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लक्कर नेब खवासी पाजे, बिन जगदीश चूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो, ताज कुल है सिर खतर बनावो, बिन जगदीश कहाँ सच पावो, खान मलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सवरस काजा, हो में ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जानिया हृदय मुरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जानत अवरे, पर पंच ब्याज त्यागे कवरे, पाई मिले सच साचे सचरे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाय मिले मल सोई, रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत अग्न जगत पर जा रहे, सो उभरे गुर शब्द विचार है, प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना, मृग मरे सह अपना कीना, तृष्णा राज तत नहीं दीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध विनाश है सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए, गुरमुख छूटस हर गुण गाए, जो तन विधवा पर को दे, काम दाम चित पर वसे, बिन फिर त्रिपत ना कभू होई, पर पर पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़े सुन साटा, बिन रस राते मन बौ नाटा, ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस की तृप्तासा, गौड़ी महला पहला, हट कर मरे ना देखे पावे, वेद करे बहु पसंद लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख, रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम विसारे है सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तख सलाम, अद की तृष्णा व्यापे काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावे नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, सिसको वाहो वाहो जे वाट दिखावे, सिसको वाहो वाहो जे शब्द सुनावे, सिसको वाहो वाहो जे मेल मिलावे, वाहो वाहो सिसको जिसका इहो जियो, गुर शब्दी मत अमृत पियो।

नानक नाम रते पत पाए। कौड़ी मैला पहला हो मैं करत देखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया, हो करत नहीं पत पाई है, हो मैं जाए परम पद पाई है, रहाओ हो मैं कर राजे बहुत आवे, हो मैं खपे जन्म मर आवे, हो मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंच संगार है, अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे, सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के कर तारी लावे, हो कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे, जेती है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही, हो मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे। गौरी मैला पहला प्रथमे ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया, हम हर राखे गुर शब्द विचारिया, रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा, ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नामो पूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यों राखो रहना, चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम, मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकदम।

ओ गुरुमुख जापै ता पत होई, काजी सेख पेख फकीरा, वडे कहावै हो मैं तन पीरा, काल न छोड़े बिन सतगुर की तीरा, काल जाल जेवा अरनैनी, कानी काल सुने बिख दैनी, बिन सबदे मूठे दिन रैनी, हिरदे साच वसे हर नाए, काल न जो है सके गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए, गौरी मैला पहला बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुकम रजाई, रहे अतीत सच्चे शरणाई, सच कर बैठे काल न जो है, मनमुख को आवत जावत दुख मोह है, रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बैस सहज कर रही है, हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल नहीं चल नहीं डोले, गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तत विरोले, सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पयो अंतर गत कीनी, गत मित्र पाई आत्म चीनी, ओजन नाम निरंजन सार, परम हंस सच जोत अपार, जह देखो तह एकंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरु चरणी, मन से मन मानिया क्योंकि अंग प्रमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर न पारिया, साच महल गुर अलख लखाया, नेचल महल नहीं छाया माया, साच संतोखे परम चुकाया, जिनके मन वसिया सच होई, तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मलख होई, गौरी महला पहला, राम नाम चित्रा पै जाका, उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपाग तुम्हारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा, रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा, इत कट अनहत बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा तार, जिनके हृदय हर हर सोई, तिनका दर्श परस सुख होई, सर्व जिया में एको रवे, मन मुख अंकारी फिर जूनी पवे, सो बूझे जो सतगुर पाए, हों मैं मारे गुर सबदे पाए, अर्ध उर्ध की संग क्यों जाने, गुरमुख संग मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, सोलें अष्टपदिया।

एनस पाले राख ले आत्म सुख पारा। एक उतरा खो दीन दयाला, कौशल नागत नजर निहाला। रहाओ जै देखो तै रव रहे रख रखनहारा। तू दाता पुगता तू है तू प्राण अधारा। किरत पया अध ऊर्जी बिन ज्ञान विचारा। बिन उपमा जगदीश की बिन सैना अंधियारा। जग बिन सत हम देखिया लोबे अहंकारा। गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा। निज कर महल अपार को अपरंपर सोई। बिन शब्द फिर को नहीं बूझे सुख होई। क्या ले आया ले जाए क्या पासे जम जाला। डोल बदा कस देवरी आकाश पताला। गुरुमत नाम नाम इसरे सहजे पत पाये। अंतर शब्द निदान है मिल आप गवाये। नजर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावे। नानक मेल न चूके लाहा सच पावे। गौड़ी मैला पहला गुर प्रसादी बूझ ले तो होए नवेरा। कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा। बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा। जे लख कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा। रहाओ अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यों कही है। बिन गुर पंख ना सूझे चित बिद निर्भय है। खोटे को खरा कहे।

की सेवा करें, ठाकुर नहीं दीसे, पोखर नीर विरोली है, माखन नहीं दीसे। इस पद जो अखाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझिए सब जम समाया।

मन का सूतक दूजा भाओ, परमे पूले आवो जाओ, मन मुख सूतक कवे न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राव, सबो सूतक जेता मो आकार, मर मर जमे वारो वार, सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाए, सूतक कर्म न पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए, सातक सिमरत सोध देखो कोए, बिन नावे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल में गुरमुख उतरत पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए, गौड़ी मैला की जा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर्धारा, गुरमुख सोबा साथ द्वारा, पंडित हर पर तजो विकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा, रहाओ गुरमुख विचो हो मैं जाए, गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म कर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो सुने न कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतुराई, जो किछ कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे खौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग जो लाए बहन चाना, जम पकड़िया तभी पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पत नामे।

राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच लिवलाए। हो मैं मैला यो संसारा, नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। सो जन साचा जे हो मैं मारे, गुर के शब्द पंच संगारे, आप तरे सगले कुल तारे, माया मोह नटबाजी पाई, मन मुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे अंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेवें सेवड पागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अव्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया, अंदिन भगत हर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पर वाद वखाने सिर मारे जमकाला, तत न चीने बन्ने पंड पराला, मन मुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम विसारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवजल डूबे दूजे पाए। माया का मोहताज पंडित कहावे, बिखिया राता बहुत दुख पावे, जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे, गुरुमुख जम का

ऐ समावे हर कथा सुने से तनवंत दिसे जुग माही तिन को सब निवे अनदिन पूज कराही सहजे गुण रवे साचे मन माही पूरे सतगुर शब्द सुना।

परम पुनाए मनमुख अंधे सदा बिख खाए जम डंड सहे सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की शरणाई हौ मैं मार सच लिवलाई सदा रहे हर नाम लिवलाई सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता मन स्यो मन मिलाए सब जग जीता इन विद कुशल तेरे मेरे नीता सतगुरु सेवे सो फल पाए हृदय नाम विच्चों आप गवाए अनहद बाणी शब्द वजाए सतगुरु ते कवन कवन ना सीधो मेरे पाई भगती सीधे दर शोभा पाई नानक राम नाम वड्याई गौड़ी महला तीजा त्रै गुण वखाणे परम ना जाए बंधन ना टूटे मुक्त ना पाए मुक्त दाता सतगुरु जुग माए गुरुमुख प्राणी परम गवाए सहज तुन उपजे हर लिव लाए रहाओ त्रै गुण काले की सिरकारा नाम न चेते उपावन हारा मर जमे फिर वारो वारा अंधे गुरु ते परम न जाई मूल छोड़ लागे दूजे पाई बिखा माता बिख माए समाई माया तर मूल जंत्र पर माए हर जियो विसरिया दूजे पाए जिस नजर करे सो परम गत पाए अंतर साच बार साच वरताए साच न छपे जे को रखे छपाए ज्ञानी बूझे सह सुबाए गुरुमुख साथ रहा लिवलाए हौ मैं माया शब्द जलाए मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए सतगुरु दाता शब्द सुनाए तावत राखे ठाक रहाए पूरे गुरते सोजी पाए आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई किस बिन दूजा अवर न कोई नानक गुरमुख बूजे कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावे नामो सेवे नाम सह समावे अमृत नाम रसना नित गावे जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे अंधिन हृदय जपो जगदीसा गुरमुख पावो परम पद सुखा रहाओ हृदय सुख पया प्रगास गुरमुख गावे सच गुण दास दासन दास नित होवे दास गृह कुटुंब मैं सदा उदास जीवन मुक्त गुरमुख को होई परम पदार्थ पावे सोई त्रै गुण मेटे निर्मल होई सहजे साच मिले प्रभ सोई मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए जा हृदय वस्या सच सोए गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होए हुकम पचाणे बूझे सच सोए तू करता मैं अवर न कोए तुझ सेवी तुझ ते पत होए कृपा करे गावा प्रभ सोए नाम रतन सब जग में लोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिकसे अंधिन लिव लागी सहजे सच मिलिया प्रसादी सतगुर पाया पूरे वड पागी हौ मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास जब हृदय

सबद मन रंगिया लिव लाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए, सतगुर सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाई है गुणी निधान। रहाओ मन बैरागी जा सबद पौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहा समाए, गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए, त्रिग पहु जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोगवार, तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए, सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर न कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम ले विलाई, गुर मिलिए हमको शरीर शुद्ध भई, हौं मैं तृष्णा सब अग्न बुझई, बिन से क्रोध खिमा गह लई, हर आपे कृपा करे नाम देवे, गुरुमुख रतन को विरला लेवे, नानक गुण गावे।

सतगुर ते जो मोह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन अंजन बद्दे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सतसंगत में लाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय तार नाम मिले पत पाए नाम मनिए सुख होए सतगुर ते नाम पाए कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए प्रम दे ना टिकन तर्क असमान ना चलई विच विस्ता पह पचन तिहो जग परम पुलाया मोठ गौली पाए जिना सतगुर पेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए सतगुर सेवन सो सोहणे हों मैं मैल गवाए शब्द रते से निर्मले चलने सतगुर पाए हर प्रभ दाता एक तू तू आपे बस।

जब हो मन में करत गुमाना तब हो बावर फिरत बिगाना जब हो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको यो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाए कांते इस संग नहीं बहराए जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किछ कर माने पेदा तब ते दुख दंड अरखेदा जब इन एको एक ही बूझिया तब ते इसनो सब किछ सूझिया।

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना नहीं।

तास जपत पाव अपदा जाए, तावत मनुआ आवे ठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत ए हो मैं पागे, जास जपत वस आवे पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगे सिजे, जास जपत कोट मिटे अपराध, जास जपत हर होवे साध, जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे, जास जपत रतन हर मिले, बहुर न छोड़े हर संग हिले, जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सह निवास, जास जपत ए अगन न पोहत, जास जपत एहो काल न जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाता, जास जपत मुश्किल कछु न बने, जास जपत सुन अनहत तुने, जास जपत ए निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए, गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसके हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुरु पूरा, गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द निरिद अंतर तारे, पंच जना स्यो संग निवारे, दस इंद्री कर राखे वास, ताके आत्मे होए प्रगास, ऐसी दृढ़ता ताके होए, जा को दया मया प्रभ सोए, रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है, जेता बोलन तेता ज्ञान है, जेता सुनना तेता नाम, जेता पेखन तेता ध्यान, सहजे जागन सहजे सोए, सहजे हो

कहो नानक जिस कृपा करे नेचर थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवा। जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसे वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाए ऐसा कोई जो दुबदा मार दवावे इसे मार राज जोग कमावे रहाओ। जो इस

सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सोई जति, जो इस मारे तिस होवे गति, जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो नहीं चलतनी, जो इस मारे सो वड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाई न पड़े, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छूटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ न तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पै कृपाल कृपा निज, तिस पै खलासी।

मन अपने में फिर चेत बिनस जाए माया के हेत। हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग। जाके काम उतरे सब भूख जाके काम ना जो है दूत। जाके काम तेरा वड गमर जाके काम होवे तू अमर। जाके चाकर को नहीं दान जाके चाकर को नहीं बान। जाके दफ्तर पूछे ना लेखा ताकि चाकरी करो विशेखा। जाके ऊन नाही काहू बात एक है आप अनेक है पात। जाके दृष्ट होए सदा निहाल मन मेरे करता की काल। ना को चतुर ना ही को मूड़ा ना को हीन ना ही को सूरा। जित को लाया तित ही लागा सो सेवक नानक जिस पागा। गौड़ी महला पंजवा बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी त्यों जीवे साकत नाम बिसारी। एक निमख जो सिमरन में जिया कोट दिनस लाख।

बोले पूर साकत मुखकारा बिन सिमरन गर्दव की न्याई साकत थान परिष्ट फिराई बिन सिमरन कूकर हर काया साकत लोभी बंद न पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया कहो नानक गुर जगत कराया गौड़ी मैला पंजवा गुर के बचन मोह परम गत पाई गुर पूरे मेरी पैज रखाई गुर के बचन से आयो मोह नाओ गुर प्रसाद मोह मिलिया छाओ रहाओ गुर के बचन सुन रसन वखाणी गुर कृपा से अमृत मेरी बाणी गुर के बचन मिटिया मेरा आप गुर की दया ते मेरा वड प्रताप गुर के बचन मिटिया मेरा परम गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म गुर के बचन कीनो राज जोग गुर के संग तरिया सब लोग गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध गुर के बचन पाया नाउ निद जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा तिसकी कटिये जम की फासा गुर के बचन जागिया मेरा कर्म नानक गुर पेटिया पार ब्रह्म गौड़ी मैला पंजवा तिस गुर को सिमरों सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर।

अपना दासरा आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुरु को करी नमस्कार। कल कलेश पै परम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी मैला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो, रहाओ नाम बिना जो पहरे खाए, जो कूकर जूठन में पाए, नाम बिना जेता व्योहार, जो मृतक मिथ्या सिगार, नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग, नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए झूठे सब पाज, नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे, हर का नाम जिन मन ना आरादा, चोर की न्याई जमपुर बादा, लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना झूठे पासारा, हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। गौड़ी मैला पंजवा, आद मध्य जो अंत निवा है, सो साजन मेरा मन चाहे, हर की प्रीत सदा संग चाले, दयाल पुरख पूरन प्रतपाले, रहाओ बिन सतनाही छोड़ न जाए, जह पेखा तह रया समाए, सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता, पाई पूत पिता प्रभ माता, जीवन प्राण आधार मेरी रास, प्रीत लाई कर हृदय निवास, माया सिरक काटी गोपाल, कर अपना लीनो नगर निहाल, सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग, पूरन पुरख नवतन नित बाला, हर अंतर बार संग

पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया से होए भगत जिना कृपारिया हौ वारिया हर वारिया रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया मैं तक्की ओर संता लेहो उबारिया मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया मैं किए मित्र अनेक इक्कस बलिहारिया सब गुण किसी नाहे हर पूर पंडारिया चौ दिस जपिए नाउ सूख सवारिया मैं आही ओर तुहार नानक बलिहारिया गुर काड्यो पूजा प्रसार मोह कुपारिया मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया मैं पायो सर्व निदान अकथ कथारिया हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया जन नानक लद्दा रतन अमो

हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो राव तज हो मैं गुर ज्ञान पजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो जो दी सह सो संग न गयो साकत मूड लगे पच मोयो मोहन नाम सदा रव रहयो कोट मदे किने गुरमुख लयो हर संतन कर नमो नमो नौ निद पावे अतुल सुखो नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निदो काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दो ते रहयो दुख अंधेरा करते मिट्यो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो जिन सेव्या सो पार परयो जन नानक गुरमुख जगत करयो। महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत परम गए मेरे मन सब सुख पायो रहाओ बल तो जल तो तौ क्या गुर चंदन शीत लायो अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो पावक सागर गहरो चर संतन नाभ तरायो ना हम कर्म ना कर्म सुच प्रभ गह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ नाथ कृपाल दीन समरथ संत ओटायो निर्गुनी आरे की बेनती देहो दर्श हर आयो नानक शरण तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के पोगा इन संग अंध ना जानी हौ संचो हौ खाटता सगली अवध बिहानी रहाओ हौ सूरा प्रधान हो को नाही मुझे समानी जो बनवंत अचार कुलीना मन में होए गुमानी जो उलझायो बाद बुद्ध का मर्त्या नहीं विसरानी पाई मीत बंदव सके पाछे तिन्हों को संपानी जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी आंग बुद्ध सुच कर्म कर ए बंधन बंदानी दयाल पुरख।

सिगार मिठ रस भोग भोजन सब झूठ किते ना लेखे। मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे। नानक सासन मिले मिलाई बिन फिर नींद ना आवे। मुंद निमानड़िया जियो बिन तनी प्यारे। क्यों सुख पावेगी बिन उर्धारे। ना बिन करवास ना ही पुछो सखी सहेलिया। बिन नाम प्रीत प्यार ना ही वसे साथ सुहेलिया। सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमती सो जानिया। नानक नाम ना छोड़े सातन नाम सहज समानिया। मिल सकी सहेलियो हम फिर रावेहा। गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा। शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया। निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया। साच की मत सदा नौतन

हम कर साजने आया। मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहती। मुंद मन उमा हो साजन रहन से, दुष्ट व्यापे साच जप सच लाहो। कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया, नानक पिर तन।

ना प्रभु जियो एक लड़ी बन माहे, क्यों ती रहगी ना बिना प्रभु वे परवाहे। तन ना बाजो रह न साके बिखम रहन कनेरिया, नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया। बाजो प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुर लाए, नानक सातन मिले।

सब दे सुहावे ता पत पावे दीपक देह उजारे सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुण सारे सतगुर मेली ता फिर रावी बिगसी अमृत बाणी नानक सा तन।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे किसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोय न पावे हाथ निग्रह बे बाणे नानक सच कर।

तेरा मैल सच्चा जियो, नाम सच्चा वापारो, नाम का वापार मीठा, भगत लाहा अंदिनो, तिस बाज वखर कोई न सूजे, नाम लेवो खिन खिनो, परख लेखा नदर साची, कर्म पूरे पाया, नानक नाम।

हमारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे, बिन हर प्यारे रह न सके गुर बिन महल न पाई है। जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना अग्न बुझाई है। हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए। नानक सा तन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए। तन रैन सुहेलड़िए जियो हर सिओ चित लाए। सतगुरु सेवे पाओ करे जियो विच्चों आप गवाए। विच्चों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा पाओ। सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समाओ।

ले जियो हर बिन कौन मिलाए बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए गुर परम चुकाए यूं मिलिए माए पासा तन सुख पाए गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए कामन रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे नानक कामन हर वर पाया।

सदा सुहागन जा सतगुर सेवे गुर के अंक समाये गुर शब्द मेला ता फिर रावी लाहा नाम संसारे नानक कामन ना प्यारी जा हर के गुण सारे सा तन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे हों मैं मारे इन बिद मिलो प्यारे सा तन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है दुबदा मार निवारे नानक कामन हर

गुर शब्द सेवे सच समावे, विच्चों हो मैं मारे हर का नाम हृदय वसाए, ऐसा करे सिगारो नानक काम।

पानी अन्न न पावे मरिए हावे बिन फिर क्यों सुख पाए। गुर आगे करो बिनंती जे गुर पावे ज्यों मिले तिवे मिलाये आपे मेल ले सुखदाता आप मिलिया कर आए नानक कामन सदा सुहागन ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो हर कै सह सुवाए मन मोहन मोह लिया जियो दुबदा सह समाए दुबदा सह समाए कामन वर पाए गुरुमती रंग लाए एहो शरीर पूर कुसत परिया गल काई पाप कमाए गुरुमुख भगत जित सहज तुन उपजे बिन भगती मैल न जाए नानक कामन पिरे।

अंदिन दुख निवारे, अंतर महल फिर रावे कामन, गुरमति विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सुहागन, गुर कै हेत अपारे, आवो दया करे जियो प्रीत मत प्यारे, कामन बिनो करे जियो सच शब्द सिगारे, सच शब्द सिगारे हों मैं मारे, गुरमुख कार सवारे, जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझे गुर विचारे, मनमुख काम व्यापी मोह संतापी, किस आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाउ न पाए, बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयानी पोली निगुणिया जियो, फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शनहारा, अवगुण बख्शनहारा, कामन कंत प्यारा, कट कट रहा समाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाए, सतगुर बूझ बुझाए, सदा आनंद रहे दिन राती, अंग दिन रहे लिवलाई, नानक सहजे हर वर पाया, सातन नौ निद पाई, गौड़ी महला तीजा, माया सर सबल वरते जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहे था जियो, शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंगाए, इन विद दुत्तर तरिये, गुरुमुख भगत प्राप्त होवे, जीव त्या यों मरिये, किन में दाम नाम किल विख काटे, पए पवित्र शरीरा, नानक राम

स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो राम नाम की विद नहीं जानी। मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो डूब मोए बिन पानी। डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी। हो मैं ताप संसारे जो आया सो सबको जासी। उबरे गुर विचारे गुरमुख होवे राम नाम वखाणे। आप तरह कुल तारे नानक नाम वसे कट अंतर। गुरमत मिले प्यारे राम नाम बिन को थिर नाही। जियो बाजी है संसारा दृढ़ भगत सच्ची जियो। राम नाम वा पारा राम नाम वा पारा अगमा पारा। गुरमति तन पाई है सेवा सुरत भगत के साची। विचों आप गवाई है हम मत हीन मूरख मुगद अंधे। सतगुरु मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सुहावे। अंदिन हर गुण गाए आप सराय करे आप जियो। आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो। जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे। आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए। आपे गुण दाता अवगुण काटे हृदय नाम वसाए। नानक सद बलिहार।

आज गवाए सदा हर रस पाए जहाँ हर पाए रसना सब सुहाए नाम प्याए सदा सुख पाए नाम रहे लीलाए नामे उपजे नामे दिन से नामे सच समाए नानक नाम गुरमति पाई है आपे ले लवाए ए विदानी चाकरी पिया जियो तन छोड़ परदेश सिधाए दूजे किने सुख न पायो पिया जियो बिख्या लोभ लुवाए बिख्या लोभ लुभाए परम पुलाए ओ क्यों कर सुख पाए चाकरी विदानी खरी दुखाली आप वेच कर्म गवाए माया बंधन टिके नाही छिनछिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूके जा गुर सबदी चितलाए मन मुख मुकुट गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का परम अंग पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुरचरणी चित लाए जिसनो हर जियो कृपा करे सदा हर के गुण गाए नानक नाम।

मन आस दर्श निमानिया सास सास ना करी विसरे पल मूरत दिन राते नानक सारंग ज्यों प्यासे क्यों मिलिए प्रभु दाते। एक दिनों करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों ती रहे गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण पर पूरे फिर दोष ना ही सुख दाते हो विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया तारो कर आवो ना प्यारे। हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हो सिर

गावे। जहाँ साध संत एकत्र हो गए तहाँ तुझे त्यावे। कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन किरपारा, बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू माने एक जी अवर सब राली। माने ता एक अलेख ठाकुर जिन्हें सब कल तारिया, खुद बचन गुर कह वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया, बिनवंत नानक पैज राखो।

जपैन दाना जमपाल तिनको लगे नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराधे से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्शो ज्ञाना बिनवंत नानक राज मिल चल पूरन पुरख भगवाना मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र नीत पाई कुटुंब सब तारे तारिया जहान लहया अभिमान।

छंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो प्याए मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख पातो दुख हरण दीन शरण श्री तार चरण कमल आराध्य जम पंख बिखरा अगन सागर निमक सिमरत साधिय कलमले दहता शुद्ध करता दिन सरण आराधो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया पदक वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाई है तम अंग कूप ते उधार है नाम मन वसाई है सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया बिनवंत।

बिनवंत नानक करो कृपा, समरथ सब कल धारे। गुण गाओ मना अचुत अविनाशी, सबके ऊंच दयाला। दिसंबर देवन को एक सर्व करे प्रतपाला, प्रतपाल महादयाल दाना। दया तारे सब किसे, काल कंटक लोभ मोह नासे। जी जा के प्रभु बसे, सो प्रसन्न देवा, सफल सेवा, पई पूरन काला। बिनवंत नानक।

आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवद पागी माए सखी नाल वसा अपने ना प्यारे मेरा मन तन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं आप नड़ा फिर मिलिया प्रम खोयो सांत सह स्वामी परगास तया कौल खिलिया वर पाया प्रभु।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लग तरा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एक और अवरया दूसर हुआ न होग पौड़ी ओं सात सतगुरु नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे

निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखान नो नानक एक अनेक पौड़ी। ओम गुरुमुख कियो अकारा एक सूत पर ओवन हारा तिन तिन त्रै गुण विस्तारं निर्गुण ते सरगुण दिष्टारं सगल पाप कर करें उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दोहू पाप ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा। श्लोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन के पास। पवड़ी सत्सा सत सत सत सो सत पुरख ते पिन न को सो शरण परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संशय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप पाहु को जापत सो साधु ए पहुंचन हारा नानक ता कै सद बलिहारा। श्लोक तन तन कहां पुकारते माया मोह सब कूर नाम विहूने नानका होत जात सब तूर। पवड़ी तद्दा तूर पुनीत तेरे जनुआ तन तेउ जेह रुच या मनुआ तन नहीं बांचे सुर्ग ना आचे अत प्रय प्रीत साध रज राचे तंदे कहां व्यापे ताहू जो एक छाद अनकते न जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूरन भगवान। श्लोक अनक पे

ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो विषम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने, तिन प्रभ आप, पस आपन हो।

या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करे सो फुन हो एक के सगला विस्तारा नानक आप सवार नहारा श्लोक

जोड़ा ते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप

सै रसराते अहंग बुद्ध माया मधमाते या माया में जन्मे मरना जो जो हुक्म तिवे त्यों करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जित जित लावो तित तित लगना नानक ठाकुर सदा लुपना श्लोक।

एकै आप अवर न हो, हो अनहार होत सद आया, ओ आपा अंत ना काहू पाया। कीत हस्त में पूर समाने, प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने, जाको दीनो हर रस अपना, नानक गुरमुख हर हर तें जपना। श्लोक आत्म रस

कनिये जास रसन हर हर जस पन्ने आए बसे साधु के संगे अंदिन नाम त्यावे रंगे आवत सो जल नामे राता जाको दया मया विदाता एक आवन फिर जोन ना आया नानक हर के दर्श समाया श्लोक यास जपत मन होए आनंद बिनसे दूजा पाओ दुख दर्द तिसना बुझे नानक नाम समाओ। पौड़ी जैया जारो दुर्मत दो तिसे त्याग सुख सहजे सो यैया जाए परो संत सरना जे आसर एया पव जल करना यैया जन्म ना आवे सो एक नाम ले मने परो यैया जन्म ना हारिये गुर पूरे की टेक नानक ते सुख पाया जाके ही रे एक। श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के बीत गुर पूरे उपदेशया नानक जपिये नीत। पौड़ी अंदिन सिमरो तास को जो अंत सहाय होए ए बिखिया दिन चार छे छार चलियो सब कोए ताको मात पिता।

खट शास्त्र होएंगे आता, पूरक कुंभक रेचक कर्म आता, ज्ञान ध्यान तीर्थ स्नानी सोम पाक अपरस उद्यानी, राम नाम संग मन नहीं एता, जो कछ तीनो सौ अनेता, ओ आते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसे गोपाला। श्लोक कुंट चार दह दुष्प्रमे, कर्म किर्त की रेख, सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख। पौड़ी तत्ता कारण करता सो, लिखियो लेख न मेटत को।

पौड़ी थका खूना कछ नहीं तिस समरथ के पाहे जो देना सो दे रहे हो पावे कहते जाए खर्च खजाना नाम तंग या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास खेले बिगसे अनद स्यो जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृहमाल खेद ना दुख ना दान ते जा को नदर करी नानक जो प्रभ पानिया पूरी तिना परी। श्लोक गन मिन देखो मने माहे सर पर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटा नानक नाम अरोग। पौड़ी गद्दा गोविंद गुण रमो सास सास जपनीत कहां विशासा देह का बिलम ना।

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहू मस्तक पाग नानक आए सफल के जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोखे शास्त्र देव सब आम न कत्तो कोए आप जुगा दी।

जटकत ओही समाहे, फूले को मन जो आवे सरना, नाम तत्कल मह पुनः चरना, काल काल अनिक पछतावे, बिन हर भगत कहाँ थित पावे, कोल महारस अमृत ते पिया, नानक हर गुरु जा को दिया। श्लोक गाने काले सब दिवस सास,

काल कहे जो साकत प्रवकीन अनेक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहु को आए कर कृपा जी आप दिवाए गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जे जीवत जपया प्रगट पे नानक ने छपया श्लोक चित चित वो चरणार बिंद ऊद कवर बिग सांत

भागा चार कुंट देह दुष्कर्म आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ।

छच्छाचार हो तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता। छाड़ सियानप बहु चतुराई, संतन की मन टेक टिकाई, छार की पुत्री परमगत पाई, नानक जाको संत।

पौड़ी जजा जाने हो कछुआ बांध्यो जो नलनी प्रमसुआ जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी जो जाने मैं कथनी करता व्यापारी बसदा जो फिरता।

मिटै तुम्हारो, राम नाम स्यो कर व्योहारो, चूरत चूरत साकत मुआ, जा कह हृदय होत पाओ गिया। चरह कसम मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ, चरह काम क्रोध दुष्टाई, नानक जा को कृपा गुसाई। श्लोक। यतन करो तुम अनक विद, रहन न पाओ मीत, जीवत रहो हर हर पजो, नानक नाम प्रीत। पौड़ी। जन्या जानो दृढ़ सही,

ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते कीचत पिन अंधकूप ते ते कढ़ो जे होवो सो प्रसन्न ना कह।

नानक मनो न बिसरे गुण निद गोविंद राय। पौड़ी टहल करूं तो एक की जाते बिरथा न कोए।

पवन बिन नामे सुख नाहे, तले जाम के दूत ते जो साधु संग समाहे। बार बार जाऊं संत सद के, नानक पाप बिना से कद के। श्लोक ठाक ना होती तिन्हों दर, जे हो वो सो प्रसन्न। जो जन प्रभ अपने करे, नानक ते तन तन।

या डेरा को श्रम कर काले जाका तसू नहीं संग चाले। ओ आडेरा की सो मित जाने जाको दृष्ट पूरन भगवान है डेरा ने चल सच।

सदा सुख नानक लिखिया पाए श्लोक। तन मन तन हर पौ तिसे प्रभु मिलावे मोहे नानक परम पो काटी है चूके जमकी जो पौड़ी। तत्ता तास्यो प्रीत कर गुण निध गोविंद राय फल पावे मन बाँचते तपत तुहारी जाए। त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाओ गत पावे मत हुए परगास मैली पावे ठाओ। ताहू संग न तन चले ग्रे जो बन ने राज संत संग सिमरत रहो यह तुहारे काज। ताता कछु न होई है जो तात निवारे आप प्रतपाले नानक हमें आपे माई बाप। श्लोक। था के बहु विध काल ते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच साकत हुए नानक माया ना साथ। पौड़ी। थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनिक बंच बल छल करो माया एक यो पाव। थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार मन के काम न आवई अंते अवसर बार। हित पावो गोविंद पजो

पार न पाया, पतित पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपह मिल साधु, परपच त्रोह मोह मिटनाई, जाको राखो आप गुसाई, पाँच सौ छ

पौड़ी। बब्बा परम मिटावो अपना, या संसार सगल है सुखना। परमेश्वर नर देवी देवा, परमे सिद्ध साधिक ब्रह्मेवा। परम परम मानुख डहकाए, दुत्तर महा बिखम ए माए, गुरुमुख प्रम

मन मूर्ख कह करे पुकार। जो मांगे तो मांगे दिया, जाते कुशल न काहू थिया। मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

तेगत साध संग पतियाना, दुख सुख उआ के समत बिचारा, नरक सुरग रहत अवतारा, ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख बिसेखा, उआ रस में उआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे, नानक ते बंधन कटे, गुर की चरणी पाहे। पौड़ी। यैया जतन करत बहु विधिया, एक नाम बिन कह लोस दिया, याहू जतन कर होत।

याहो तरन तारन समराथा राख लेहो निर्गुण नरनाथा। मन बच कर्म जे आप जवनाई नानक ते मत प्रगट।

रूड़ो जेहे बस्यो रिद माही, पोआ की राड मिटत बिन साही। राड करत साकत गावारा, जेहे ही है अहं बुद्ध विकारा, राड़ा गुरमुख।

मैं खसमता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो अगनता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दियारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे शरण परो हर राए उकत सियानक सगल त्याग नानक ले समाए। पौड़ी ससा सियानक छाड़ आना हिकमत हुकम ना प्रपति आना सहज पाठ करें चतुराई संग तुहारे एक ना जाई। सो सो जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख ना।

पौड़ी। हेरो काट काट सगल के पूर रहे भगवान, होवत आए सद सदीव दुख पंजन गुर ज्ञान। हौ छुटके होए आनंद ते, हौ नाही ते आप, हटे दुख जन्म मरन संत संग परताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला, संते संग होत कृपाला, पूरे कछु न किन्हू किया, नानक सब कछ प्रभु।

पाव जल ते काडू प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी। खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु बचन समाए। खिमा गई सच संचयो खायो अमृत नाम, हरि कृपा ठाकुर भई अनद सुख विश्राम। खेत निबाही बहुत लाभ कर आए पतवंत, खरा दिलासा गुरु दिया आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल, एक अक्षर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अक्षर में त्रिभवन प्रभ धारे, अक्षर कर कर वेद विचारे। अक्षर शास्त्र सिमरत पुराना, अक्षर नाद कथन वख्याना। अक्षर मुक्त जुगत पै परमा, अक्षर कर्म कीर्त सुच परमा। दृष्टमान अक्षर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती। पुस्तक कह न जाए।

हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है भी होवन हार हे संत के सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दी जय।

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा।

सतगुरु प्रसाद। आद गुर ए नमः है, जुगाद गुर ए नमः है, सतगुर ए नमः है, श्री गुरुदेव ए नमः है। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, पल पले स्तन माय मिटाओ। सिमरो जास विसंगर एक है,

प्रभु के सिमरन दूख जन नसे, प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन तरे, प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभु के सिमरन अन दिन जागे, प्रभु के सिमरन पौ न व्यापे, प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, प्रभु के सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तक बुद्ध, प्रभु के सिमरन जप तक पूजा, प्रभु के सिमरन विनसै दूजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु के सिमरन दरगे मानी, प्रभु के सिमरन होय सो भला, प्रभु के सिमरन सो फल फला, से सिमरन जिन आप सिमराए नानक का कहला गुरु पाए, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे मूचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब किछ सुझे, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहि सनाए, प्रभु जी बसे स्वाद की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरन से तनवंते, प्रभु को सिमरन से पतवंते।

मलरीता प्रभ को सिमरे तिन अनंत घनेरे प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ के सिमरन कारज पूरे प्रभ के सिमरन कभो न झूरे प्रभ के सिमरन हर गुण बानी प्रभ के सिमरन सह समानी प्रभ के सिमरन निश्चल आसन प्रभ के सिमरन कमल विगासन प्रभ के सिमरन अनहद जुन पार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरे से जन जिन को प्रभ नया नानक तिन जन सरनी पया हर सिमरन कर पद प्रगटाए हर सिमरन लग बेत उपाय हर सिमरन तय सुध जति दाते हर सिमरन नीच चौकुंट जाते हर सिमरन तारी सर करना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की ओ सगल अकारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरुमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जय मात पिता सुतनीत न भाई मन उहा नाम तेरे संग सहाय जय मां प्याम दूत दम दले तह केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माए उदारी अनित पुने चरण तर्क नहीं तरे हर को नाम कोट पाप पर हरे गुरुमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख घनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया लाख करोरी बंदना करे हर का नाम जपत निस्तर है अनेक माया रंग सिखना बुझावे हर का नाम जपत आभाव है जे मारक के हो जात अकेला ते हर नाम संग होत सोएला ऐसा नाम मन सदा ते आई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लखबाही नाम जपते पार कराही अनेक विघ्न जय आए संगारे हर का नाम तत्काल उधारे अनेक जोन जन्मे मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हौ मैला मल कभू न धोवे हर का नाम कोट पाप खोवे ऐसा नाम जपो मन रंग नाम पाये साध के संग जे मार्ग के गने जाए न कोसा हर का नाम उहा संग तोसा जे पैंदे महा अंग गुबारा हर का नाम संग जियारा जहाँ पंख तेरा को न सियानू हर का नाम तह नाल पहचानू जय महा प्याम तपक बहु काम तय हर के नाम की तुम ऊपर छान जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर खै तय नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बरकर नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर दस पर संत दिन रात हर हर औसत साध समात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक है हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब करे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन सो बापाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत पछवाए वियोग जन वाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप सब दीना हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रसमाते आठ पैर जन हर हर जपे हर का पगत प्रकट नहीं छपे हर की पगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबसे उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत ऋग वसे संत प्रताप दीर्घ सब नसे संत का संगवड भागी पाये संत की सेवा नाम ध्याये नाम तुल कछ अगर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व तंडोल पूज

नाम अमोल अष्टपदी जापता त्यान सब त्यान खत शास्त्र सिमृत वख्यान जो अभ्यास कर्म कर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनेक प्रकार की ये बहु जतना पुन दान हो में बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु पासी नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार नौ खंड पृथ्वी फिर चिरजीव महा उदास कपि सरथीव अगन माए हो मत प्राण कनक अश्व है वर पूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम अच्छादन निमख निमख कर शरीर कटावे तो भी हो मैं मेल न जावे हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत जप पाहे मन कामना तीरथ दे छुटे गर्भ गुमान न मनते हुटे सोच करे दिन और रात मन की मैल न तनते जात इस देही को बहु साधना करे मन से कभू न भिख्या करे जल तो वह बहु दे अनीत शुद्ध कहा होए काची वीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहुमूच बहुत श्यान जम का पौ व्याप अनेक जतन कर प्रसन्ना ध्याप पेट अनेक अगर नहीं बुझे कोट उपाव दर गहने सिजय छूट अपना ही ऊप बयाल मोह व्याप माया जाल अवर कर तू सगली जमदाने गोविंद पदन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साफ जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए हो मैं चोरे जे को जन्म मरण से डरे साप जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक पाके बल बल जासा सगल पुरुख में पुरुख प्रदान साफ संग जाता मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सबसे ऊंचा जाता मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने से बुरा मिटाना देखे सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेता निर्तन को तन

आपन संग आप प्रवराते तुमरी युस्तक तुमते होए नानक अवर न जानस कोए। सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग जुर्मत मल हिरिया।

बख्श लियो तो नानक सीजे। जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे, सुत प्रात मीत बनता संग हसे। जे प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमूला। जे प्रसाद पोगे सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा। दीने हक पाव कर नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना। ऐसे दोख मूड अंग व्यापे, नानक काढ़ लेहो प्रव्यापे। आद अंत जो राखन हार, तिस्यों प्रीत न करे गवार। जा की सेवा नव निध पावे, तास्यों मूड़ा मन नहीं लावे। जो ठाकुर सब सदा हजूरे, ताको अंदा जानत दूरे।

संग मचे। जो छदना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर कराने। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाय तिसका हरे। चंदन लेप उतारे धोए, दर्द प्रीत पसंद संग होए। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काट लियो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेट अंतर मल माया, छप सुनाए कछ करे छिपाया। बाहर ज्ञान त्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुवान। अंतर अगन बाहर तन सुहा, जल पाथर कैसे तरे अथाहा। जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लियो ओर निभावे। कहां बुझारत बूझे डोरा, निष्कई है तो समझे पोरा। कहां विषण पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत उहा उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुम्हारी कृपा करे। संग सहाय सो आवे ना चीत, जो बैराई तासो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसे, अनंत केल माया रंग रसे। देर कर माने मने प्रतीत, काल न आवे मूड़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ त्रोह। त्याहु जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लियो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बार तेरे, तुमरी कृपा में सुख गनेरे।

मारा। जाके मन लागा प्रभु मीठा, सर्व सुख ताहु मन बूठा। जिस जन अपना हुकुम मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगनत साओ अपनी देरास, खात पीत बरते अनत उलास। अपनी अमान कछ बहुर साहले, अज्ञानी मनी रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास ना होवे। जिसकी बस किस आज्ञा राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे। उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल।

बताओ सो जो लावे ने ताको हाथ ना आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या।

अष्टपदी। जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर। जे प्रसाद दे संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पतंबर हंडावे तिसे त्याग कत अवर लुभावे। जे प्रसाद

सुप्रभता के जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु उचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन कहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी मन किस प्रभु को कभू ना बिसारी।

जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू तासो राच जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सोनाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ।

होत साध के संग मिटै अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत निवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस बुंचा, साध संग होए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कथू धावे, साध संग अस्थित मन पावे, साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध के संग न कभू धावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस अगोचर लहे, साधु के संग अजर सहे। साध के संग बस है थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पारब्रह्म। साध के संग पाए नाम।

ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है।

कै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरे नाम जपावे नानक ओ वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग

कुमार अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट वन प्रमेय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आपम ध्यान तारे, कई कोट कब काब विचारे, कई कोट नरसन नाम दियावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर वृक्ष मिट जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धारे, नारक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त्र, कई

नानक आप अलिप्त रहा भरपूर। कई कोट पताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बोझो नी फिरे।

तिन होवत आत्म परदास। कई कोट तक के बेटे सदा निहारे एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीवे अमर पह सत सद ही जीवे। कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे। अपने जन को साथ साथ समारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे।

हुक्मे तार अदर रहावे, हुक्मे उपजय हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रिया समाई। प्रभ पावे मानव गत पावे, प्रभ पावे ता पाथर तरावे, प्रभ पावे बिन शास्त्र राखे, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे, प्रभ पावे ता पतित उधार है, आप करे आपन विचार है, दोहा सिरिया का आप स्वामी, खेले बिकसे अंतर जामी, जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवरण आवे, कहो मानस के क्या होए आवे, ज्योतिष पावे सोई करावे, इसके हाथ होए ता सब पिछले, ज्योतिष पावे सोई करे, अनजानत बिख्या में रखे, जे जानत आपन आप बचे, परने पूला दे दिस्तावे, निमक माए चार कुंट फिर आवे, कर कृपा।

कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहु कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वादी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे, जो

नानक दर्द गले अष्टपदी, जिसके अंतर राग अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने में जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत।

सारे अनित तपस्या करे अंकार, नरक सुरग फिर फिर अवतार। अनित जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे दवे।

सजाए, प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हों छूटे। सहस खटे लखो सावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अनेक भोग दुखिया के करे, न तृप्त आवे खप खप मरे। बिना संतोष नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ पागी किसे प्राप्त होए, करण

और अष्टपदी संत के दुखन आरजा कटे हैं, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन काग जो लवे, संत के दुखन सरप जोन पाए, संत के दुखन जगत जोन किरमाए, संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाव को नाहे, नानक संत पावे तो ओए भी जत पाहे, संत का निंदक महाअपताई, संत का निंदक खिंच कर ना पाई, संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज से हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होय मोख, संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसे का नहीं मित, संत के दोखी को दान लागे, संत के दोखी को सब त्यागे।

सुखी एक को एक एक पछाने इत उत कियो सो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद आपन आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत अंधन कीर्तन केवल ख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जन की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक किसे न लागे दुख जिसको हर प्रभु मन से त्यावे सो संत सुहेला नहीं बुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तक सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई अस्थूल न किस जन्म न किस मरे आपन चलित आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रखाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड तारण तार रहे ब्रह्मांड अलख अभेद पुरुष प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभु के सेवक सगल उदारन प्रभु के सेवक दुख विसारन आपे मेल ले कृपाल गुरु का शब्द जप पे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करें बड़ पागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरुष को उत्तम करमान जो किस करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुबाए हो वै सो होए करने हार पछाने सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिस माहि समाए ओए सुख निदान उन्हू बने आए आप उसको आप दीनो मान नानक प्रभु जन एक को जान श्लोक

अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचै कोए तिस दिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह प्रभ की जोत सगल कट सो है तनमंता होए क्या को गर्भ है जा फट किस किसका दिया दर्भ है आप सूराजे को कहावे प्रभ की कला बिना कह धावे जे को होए बहदा तार किस दिन हार जाने गावार जिस गुर पर साल तू तैहो रोग नानक सोजन सदा अरोग जो मंदर को था मैं थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन जो पाखान नाल चढ़त रह प्राणी गुर चरण लगत निस्तर है जो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए विगास जो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे इन संतन की बाँचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिललाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख कर देवन हार अवर त्याग तू किस चितार जो कछ करे सोई सुखमान पूला काहे फिरे अजान कौन बख्त आई तेरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पथ सेती कर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अभिमान लो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाभ के संत संचाल अवर त्याग दिखिया जंजाल तन तन कहे सब कोए मुख उजल हर दरगे सोए क्यों व्यापार बिरला व्यापार है नानक ता कह सब बलिहार है चरण साध के तो पियो अरब साध को अपना जियो साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वड पागी पाइये साध संहर कीर्तन गाइये अनेक विघन पे साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे ओट गई संतें दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवालनहार पूखे को देवत आधार सर्व निधान जा की दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लेना पाए सब किस किसका ओ करने जोग किस दिन दूसर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सबसे ऊंच निर्मले करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जा के मन गुर की प्रतीत किस जन आवे हर प्रवचीत भगत भगत सुनिए ते लोए जा के हृदय को होए सच करनी सचा की रहत सच हृदय सतमुख कैत साची दृष्ट साचा आकार सच वर्ते साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग किछ त्रिगुण ते प्रभु भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदी।

बार बार प्रगजती है, पी अमृत हुमन तंत्र पी है, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, किस किच अवर नाही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रस जो जन तृप्ताने, मंतन नामे नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सब काम, बोलो जस जे बै दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात, करह भगत आत्म कह चाहे, प्रभ अपने सो रहे समाए, जो हो आहो वत सो जाने, प्रभ अपने का हुकुम पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो, आठ पैर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे, अवर से आनक सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा नाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सब तेरा। श्लोक

अष्टपदे सतगुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हाटै। सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वड पागी है। सतगुर सिख का हल्क पलक सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै। गुर के गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह। आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे। मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए ने कामी, किसको हो प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म जन राता। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक आप नहीं कछ भरम। सह स्यान लया न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। पेखत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगे गवे। सुनकर बचन करन आघाने, मन सुन दो खासम पतियाने। पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हो संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तुस लय मिलाए। जीवा एक पुस्तक अनेक, सतपुरुष पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुँच प्राणी, अगम अगोचर प्रब निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई। अनेक भगत बंधन मुक्त करें, चरण कमल हृदय सिमरें। सब बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने। क्यों हर रस पावे जन कोए, अमृत पीवे अमर सोए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुण पास। आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। मोह माया के संग न लेप, मन में राखे हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम मोह दुख सहते नासे। तपत माए ठाट वरताई, अंग भया दुख नाठे भाई। जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। पहुंचू का निरपौ होय बसे, सगल व्याद मनते खैन से। जिसका साथ तिन कृपा भारी, साध संग जप नाम मुरारी। थित पाई चूके क्रम गवन, सुन नानक हर हर दस श्रवण। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाकार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिंदु जाना ही कोए, सर्व निरंतर एक को सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग, कहे प्रभा साध कै संग। रच रचना अपनी कल तारी, अनेक बार नानक बलिहारी। श्लोक साथ न

भजन दिखिया सगली चार हर हर नाम कमाना नानक इहो दम सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार हवर उपास सब मीत विसारो चरण कमल में उर्धार करण कारण सो प्रभ संगरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वत्स यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंट उठ धावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बांचे मीत सो सुख साधु संपरीत जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनित उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर औखद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगे परवान मंत्र बोधो हर कहनाए दैज स्थावत आवे ठाए ताको बिघन ना लागे कोए जा के हृदय बसे हर सोए कल पाती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ कौ बिन सह पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास चित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव त्यों रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनेक उपाव न छूटन हारे सिमरत सास वेद विचारे हर की पगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग ना चाल तेरे धना तू क्या लगता है मूर्ख मना सुत मीत कुटम अर्गनता इनसे कहो तुम कवन सनाता राज रंग माया विस्तार इनसे कहो कवन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी चूठा डंप चूट पासारी जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना नाम दिसा नानक पछताना गुर की मत तू ले आने पगत बिना भो डूबे स्याने हर की पगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारे चीत चरण कमल वाखो मन माहे जन्म जन्म के किल विच जाए आप जपो अगरा नाम जपाओ सुनत कहत रहत गत पाओ सार भूत सत हर को नाओ सह सुबह नानक गुन गाओ गुन गाव तेरी उतरस मैल बिनस जाए हो मैं विकफैल हो है अचिंत बसे सुखनाल साफ ग्रास हर नाम समाल छाड़ स्यान सगली मना साफ संग पावे सत धना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहा सुख दरगे जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सलाए एको सिमर एको मनाहे एक के गुण गाव अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहे हो प्रव्याप अनेक विस्तार एक ते भये एक अराध प्राचक गए मंथन अंतर एक प्रव्राता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया।

अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पादरन मेरी सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो साथ साथ प्रभ तुम्हें ध्यावो चरण कमल छो लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार प्रभ की दृष्टि महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ता में पूरन पुरख नहीं डोलाने सुवर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध के संग परे शरण आम सब त्याग अंतर प्रगास हम दिन लिवलाग बड़ पागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख क्रम गया इच्छ पुनी सरदा सब पूरी रव रया सब संग हजूरी जिस पासा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे की आ जाने सो क्यों बिसरे जिन सब किस दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अग्न में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे सो क्यों बिसरे जे बिकते काडे जन्म जन्म का टूटा गांडे गुरपुर सत्य है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो यो काम आम त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपाओ भगत पाए तरिय संसार बिन भक्ति तन हो सी चार सर्व कल्याण सुख निज नाम बूढ़त जाप पाए विश्राम सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुण पास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एही सुआओ नेत्रों पेक दर सुख होए मन विकसे साध चरण तोए भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे कर माया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभु संग दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त कृपाल आदि पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपे सो हुए पुनीत भगत पाए लावे मनहित हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए एक निमख हर के गुण गाए अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत फली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत साध संग प्रभ देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास श्लोक सर्गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपसे ही फिर जाप अष्टपदी जब अकार यो कचना दृष्टे ताप पाप तुम तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका बरन चेन ना जापत तब हरक शोक कोप से व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत को किसको बनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वरूप को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए तब शिव सकट को कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तें जन्म मरण को कहां विनाशन जब पूरन करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभु एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे
आपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता, तै बिन मैल कहो क्या चोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तै कौन कौमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तै छल छिद्र लगत कहो कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तै किसे पूख कवन तृप्तावे। करन करावन करने हार, नानक करते का नाहि कुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कौन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कला आपे परवीन, तै वेद कते पा कौचीन।

संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद।

अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमा।

आजे सुन सुन अनद करे प्रभु गाजे प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक उदरे तिन के साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर पहे सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभधारी नानक निभी खेप हमारी प्रभु की।

प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए अस्थान, बहु न होवे आवन जान, हर तन काट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद्ध नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध,

पास सुंदर चतुर तट का बेता सुंदर सी एक दृष्टेता ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन मानी सिमरत शास्त्र वेद बखानी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा से जम से छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तिस दन आवे हर प्रभ चीत

चार तिस बिन अवर न जाए, जो चाहे सोई मिले नानक हर गुन गाए। गोविंद जस गाये हर नीत, मिल पजिए।

क्रम कटिए नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा कर नीत राम रतन मन तन बसै तज काम क्रोध लोभ मीत मरण।

राम नाम तन संचवै साच सहा भगवंत। उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत नानक दुर्म।

नानक संत निर्मल पए जिन मन वसया सोए पौड़ी। तृतीया त्रै गुण बिखै फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग प्रम तो कणो सदा संगारे मीच। हरख सोग सहसा संसार हौ हौ करत बिहाए जिनकी ये तिसे न जाननी चित में अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस कभो न टूटे ताप पार ब्रह्म पूरन तनी नह बूझे परताप। मोह परम बूढ़त कणो महानरक में वास कर कृपा प्रभ राख।

जन्म मरण बहु जोन प्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार ने सिमरियो मन ना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त न रंच नानक बिरले पाये जो ना रचे परपंच। श्लोक खट शास्त्र ऊंचो कहे अंत न पारावार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभु के द्वार। पौड़ी खस्ता

नारद मुन जन सुख व्यास जस गावत गोबिंद रसगी दे हर्षो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान परम बिनस्यो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तो ताहिरे साध संग निवलाए खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर जस

भंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार। आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राय, दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए। आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म परवान।

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध, सगल पदार्थ पूरन।

हर नाम न जपें करत विपरीत, पर त्रै रमें बकें साध निंद, करन न सुनही हर जस बिंद। हिरे पर दर्ब उदर कहताई, अगर न निवरे तृष्णा न बुझाई, हर सेवा बिन ए फल लागे, नानक प्रभु बिसरत मर जमे अपागे। श्लोक। दस दिस खोजत मैं फिरियो, जत देखो तत सोए, मन बस आवे नानका, जे पूरन कृपा होए। पौड़ी। दसवीं दस द्वार बस कीने, मन संत

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एव धर्म।

द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तज मान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रवरंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंचपू आत्मा हर नाम रस कोख है, गुरपूरे ते ए नेचो पाई है, नानक राम रमत फिर जोन न आई है। श्लोक तीन गुणा में व्याप्या पूरन होत न काम, अतित उदाहरण मन बसे नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हरक सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसादियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर विसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभ पुरख।

कुंट प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दशे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ टेक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान।

नाम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरे कुटुंब स्यो गुण गोविंद प्रभ रवन। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का।

आए मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए पौड़ी। कोई गावे को सुने कोई करे विचार, को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उदार। किलबिख काटे होई निर्मला, जन्म जन्म मल जाए, हलत पलत मुख।

सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर त्याय है, गुरमुख पावे कोए। महला चौथा, हौ मैं माया सब बिख है, नित जग तोटा संसार, लाहा हर तन खटिया, गुरमुख शब्द विचार। हौ मैं मैल बिख उतरे, हर अमृत हर उधार।

रंग स्यों गुरुमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागती हर मेले गुरसावास पौड़ी। तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़ी है तुद जेवड़ होए सो आखी है तुद जेहा तू है पड़ी है। तू कट कट एक वर्तदा गुरुमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब सदा।

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है, जिसनों दया सदा होए, सतगुर अंदरों निर्वै

करे कनेरिया जे कार वत होवे साई खाए बिन सतगुर सोजी ना पवे अहंकार न विचों जाए अहंकारिया नो दुख भुख है हाथ तड्डे कर कर मंगाए कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे मुलम्मा पाज ले जाए जिस होवे पूरब लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभ आए ज्यों लोहा पारस पेटी है मिर संगत सुवरन होए जाए जन नानक के प्रभ तू तनी ज्यों पावे तिवे चलाए पौड़ी जिन हर हृदय सेव्या तिन हर आप मिलाए गुण की साध तिन स्यों करी सब अवगुण शब्द जलाए अवगुण विकण पलरी जिस देह सो सच्चे पाए बलिहारी गुरे आपने जिन अवगुण मेट गुण प्रगति आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुरु विच वड्डी वड्याई जो अंदिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुत संजम हर नामे ही तृप्तावे हर नाम तान हर नाम दीबाण हर नामो रख करावे जो चित लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पावे जो निंदा करे सतगुरु पूरे की तिस करता मार दिवावे फिर ओ वेला ओ हथ ना आवे ओ अपना बीजिया आपे खावे नरक कोर मुह काले खड़िया ज्यो तस्कर पाए गलावे फिर सतगुर की सरणी पवे ता उबरे जा हर हर नाम से आवे हर बाता आख सुनाए नानक हर करते एवे पावे महला चौथा पूरे गुर का हुक्म ना मन्ने ओ मनमुख अज्ञान मुठा बिखमाया उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे अनहोंदे झगड़े दे उस दे गल पाया ओ गल परोसी करे बहु तेरी उस दा बोलिया किसे न पाया ओ कर कर हंडे जो रन दुहागन उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया गुरमुख होए सो अलिप्तो वरते उस दा पाक छड़ गुर पाक बह जाया जो गुरगो पे अपना सो पला नाही पंचो उन लाहा मूल सब गवाया पहला आगम निगम नानक आप सुनाए पूरे गुर का बचन ऊपर आया गुर सिखा वड्याई पावे गुर पूरे की मन मुखा ओ वेला हथ ना आया पौड़ी सच सच्चा सब दू वड्डा है सो ले जिस सतगुर टिके सो सतगुर जे सच त्याईदा सत सच्चा सतगुर इके सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वश के जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे तिन अंदर पूर फिट फिट मोह फिके ओए बोले किसे न पावनी मोह काले सतगुर ते चुके श्लोक महला चौथा हर प्रभु का सब खेत है हर आप किरसानी लाया गुरमुख बख्त जमायन मन मुखी मूल गवाया सबको बीजे अपने पले नो हर पावे सो खेत जमाया गुर सिखी हर अमृत बीजिया हर अमृत नाम फल अमृत पाया जम चूहा किरस नित कुरकदा हर करते मार कढाया किरसानी जमी पाओ कर हर बोहल बख्श जमाया तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन जिनी सतगुरु पुरख ते आया जन नानक नाम आराध्या आप तरिया सब जगत तराया महला चौथा सारा दिन लालच अटिया मन मुख होरे गल्ला राती ऊंगे दबिया नवे सोत सब तिल्ला मन मुखा दे सिर जोरा अमर है नित देवे पला जोरा दा आखिया पुरख कमाव दे से अपवित अमेद खला काम व्यापे कसुद नर से जोरा पुछ चला सतगुर के आखिया जो चले सो सत पुरख पल पला जोरा पुरख सब आप उपायन हर खेल सब खिला सब तेरी बनत बनावनी नानक पल पला।

पूरे सतगुरु से हुन सतगुरु मारे जे मेलन नो बहुते आलोचिए ना दे मिलन करतारे सत संगत तोई ना लहन विच संगत बुर विचारे कोई जाए मिले हुन ओना नो तिस मारे जम जंदारे गुर बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद की ते

कोई पुत्र सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कार्य सब सवारे, जो इच्छे सो फल पाए सी, पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे, सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे, सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे, जन नानक मांगे तूर तिन जो गुर सिख मित प्यारे। महला चौथा, जिनको आप दे वड्याई, जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए, डरिये ता जे किछ आप दू कीचे, सब करता अपनी कला वधाए, देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन अपने जोर सब आन निवाए, अपने आप भगता की रख करे, हर स्वामी निंदका दुष्टा के मौका ले कराए, सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए, आन दिन नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए।

सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सबत कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी। तू सच्चा साहिब आप है सच हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे, सच सेव सच वणंजल गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे तिसदा कदे न होवी पला, उस दे आखे कोई न लगे नित ओजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कड न सके उसदा काला भया, कर्म तरती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए, गला ऊपर तपावस न होई विच खादी तत्काल मर जाए, पाई वेखो न्याओ सच करते का जेहा कोई करे तेहा कोई पाए, जन नानक को सब सोजी पाई हर दर किया बाता आप सुनाए। महला चौथा, होंदे प्रतख गुरु जो विछड़े तिनको दर टोई नाहीं, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाही, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित पंबल पूसे खाई, जिन गुरु गोपिया अपना से लेंदे तहा फिराई, तिनकी पुख कदे ना उतरे नित पुखा पुख कुकाही, ओना दा आख्या को ना सुने नित हौले हौल मराही, सच गुर की वड्याई वेख न सकनी ओना अगे पिछे थाओ नाही, जो सतगुर मारे तिन जाय मिले रेंदी खोंदी सब पत गवाई, ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही, हर तिन का दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, कुर करते आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक नाम अराध तू तिस अपड़ को ना सकाही, नावे की वड़े

तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई, तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें, जिसके मस्तक हाथ तरया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नास कोई, जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे पैज रखे प्रभ सोई। पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले, नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विन काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले, से उजड़ परम पवाये ज्यो चार मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया, नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ को टोया, कूक पुकार को ना सुने ओ औखा होय होय रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया, ओ तेली संदा बलद कर नित पल के उठ प्रभ जोया, हर वेखे सुने नित सब किछ तिदू किछ गुजा ना होया।

चरण तोया, गुर सतगुरु पिछे तर गया, जो लोहा कार संगोया, जन नानक नाम से आए तू, जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वड पागिया सोहागनी, जिना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत प्रगासिया, नानक नाम समाए। पौड़ी, एवो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सत्य की विच जोत, गुहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत, सब आत्म राम पछाणिया, ता इक रविया इको ओत पोत, इक देखिया इक मन्या, इको सुनिया श्रवण स्रोत। जन नानक नाम सलाहे तू, सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा, सब रस्तिन कह हृदय है, जिन हर वस्या मन माहे, हर दरगह ते मुख उजले, तिनको सब देखन जाहे, जिन निरपो नाम से आया, तिनको पो कोई ना है, हर उत्तम तिनी सरेविया, जिनको तुर लिखिया आहे। ते हर दरगे पे नाई है, जिन हर उठा मन माहे, कोई आप करे सब उत्तम स्यो, तिन पिछे सब जगत छड़ाहे, जन नानक को हर मेल जन, तिन वेख वेख हम।

0: ते जंत भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी दिठा तिना ले छाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक तो वै पाए। पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है, जिस अंदर हर उधारिया। सच सच्चा सतगुरु पुरख है, जिन काम क्रोध बिख मारिया। जान डिठा पूरा सतगुरु, ता अंदरों मन साधारिया। बलिहारी गुर आपने सदा सदा कुंवारिया। गुरमुख जिता मन मुख हारिया, गुरमुख जिता मन मुख हारिया। श्लोक महला चौथा, कर कृपा सतगुर मेली उन, मुख गुरमुख नाम ते आए सी। सो करे जी सतगुर पावसी, गुर पूरा करी वसाए सी। जिन अंदर नाम निदान है, तिनका पौ सब गवाए सी। जिन रखन को हर आप होए, होर केती चक चक जाए सी। जन नानक नाम ते आए तू, हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा, गुर सिखा के मन पाव दी, गुर सतगुर की वड्याई। हर राखो पैज सतगुरु की, नित चढ़े सवाई। गुर सतगुर के मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छड़ाई। गुर सतगुर तान दीवान हर, तिन सब आन निभाई। जिन्नी दिखा मेरा सतगुर पाव कर, तिन के सब पाप गवाई। हर दरगे ते मुख उजले, बहु शोभा पाई। जन नानक मंगे तूर तिन, जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी हौ आप सलाही सिर्फ सच, सच सच्चे की वड्याई। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने न पाई। सच सच्चा रस जिन्नी चखिया, से तृप्त रहे आघाई। एहो हर रस से ही जान दे, ज्यो गूंगे मिठाई खाई। गुर पूरे हर प्रभ सेविया, मन वजी वधाई।
1: श्लोक महला चौथा, जिना अंदर उमर थल से ही जानन सूलिया। हर जाने से ही बिरहो हौ तिन विट्टों सद कुम को लिया। हर मेलो सज

कर कृपा नानक मेल गुर पै सिर वेचिया मोलिया। महला चौथा, औगुणी परया शरीर है क्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण वे हाजी है मल हो मैं कड्डे तोए। सच वणन जय रंग स्यों सच सौदा होए, तोटा मूल न आवई लाहा हर पावे सोए। नानक तिन सच वणंजिया जिना तुर लिखिया प्राप्त होए। पौड़ी, साला ही सच सलाहना सच सच्चा पुरख निराले, सच सेवी सच मन वसे सच सच्चा हर रखवाले। सच सच्चा जिनी अरादया से जाय रले सच नाले, सच सच्चा जिनी न सेविया से मनमुख मूड बेताले। ओह आल पताल।

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे। ज्यो उबली मजी ठह रंग गहगा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू ले अतरती।

चौथा सत संगत में हर उस्तत है संग साधु मिले प्यारिया ओए पुरख प्राणी तन जन है उपदेश करें पर उपकारिया हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे हर नामे जग निस्तारिया गुर वेखण को सब कोई लोचे नव खंड जगत नमस्कारिया तुद आपे आप रखिया सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया तू आपे पूजे पूज करावे सतगुर को सिरजन हारिया कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो तिस काला मोह जम मारिया तिस अग्गे पिछे टोई नाही गुर सिखी मन विचारिया सतगुरु नो मिले सही जन उबरे जिन हृदय नाम समारिया जन नानक के गुर सिख पुतो हर जप्यो हर निस्तारिया महला तीजा हौ मैं जगत पुलाया दुर्मत बिखिया बिकार सतगुर मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार नानक आपे मेल ले जिसनो शब्द लाए प्यार पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाह है सो करे जिस अंदर पिजे जिन्नी एक मन एक अरादिया तिनका कंध ना कबहू छिजे तन तन पुरख सवास है जिन सच रसना अमृत पिजे सच सच्चा जिन मन पामदा से मन सच्ची दरगह लिजे तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजे श्लोक महला चौथा साकत जाए निवे गुर आ गए मन खोटे कूड़ कूड़ यारे जा गुर कहे उठो मेरे पाई बह जाहे कुसर बगुलारे गुर सिखा अंदर सतगुर वरते चुन कड्डे लद्दो वारे ओए अग्गे पिछे बह मोछ पाइन ना रलनी खोटे आरे ओना दा पख सो उथे नाही जाए कूड़ लहन पेडारे जे साकत नर खवाये लोचिये बिख कड्डे मुख उगलारे हर साकत सेती संग न करियो ओए मारे सिरजन हारे जिसका यो खेल सोई कर वेखे जन नानक नाम समारे महला चौथा सतगुर पुरख अगम है जिस अंदर हर उर्धारिया सतगुरु नो अपड़ कोई ना सके जिस वल सिरजन हारिया सतगुरु का खड़क संजो हर भगत है जित काल कंटक मार विडारिया सतगुरु का रखन हारा हर आप है सतगुरु के पिछे हर सब उबारिया जो मन

पौड़ी सच सुत्या जिनी आरा दिया जा उठे ता सच चवे से विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे। हौं बलिहारी तिन कहो जे अंदिन सच लवे जिन मन तन सच्चा पामदा से सच्ची दरगे गवे। जन नानक बोले सच नाम सच सच्चा सदा नवे।

निद उठ समालेन। महला चौथा, सत गुर सेविए अपना पाये नाम अपार, पौजल डुबदिया कढ लए हर दात करे दातार। तन तन से सहा है जे नाम करें व्यापार, वन जारे से

के जन भगत हैं सच सच्चा जिनी अराध्या जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच ला दिया सच साहिब सच जिनी सेविया काल कंटक मार तिनी साध्या सच सच्चा सब दू वड़ा है सच सेवन से सच रला दिया सच सच्चे नू

बिन गुरु मनुआ ना टिके फिर फिर जूनी पाए। हर प्रभ आप दयाल होए ता सतगुरु मिलिया आए। जन नानक।

सुभाए सतगुर सेती मन रता रखिया बणत बनाए जिहवा सालाहे ना रजई हर प्रीतम चित लाए नानक नावे की मन पुख है मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विश

ओ रोल कचोला गुरमुख जापे शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, ज्योतिष पावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी तू करता सब किछ जानदा, जो जी अंदर वरते तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणते सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनते तू कट कट इक वरतदा, सच साहिब चलते सतगुरु नो मिले सो हर मिले, नाही किसे परते। श्लोक महला चौथा। एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाई है चित, क्यों सास गिरास विसारी है, बहंदियां उठदियां नित, मरण जीवन की चिंता गई, इहो जीड़ा हर प्रभु वस, ज्यों पावे त्यों

दुख विहाए, सतगुर पुरख निर्वैर है आपे लय जिस लाए, नानक दर्शन जिना विखा लियोन तिना दरगे लय छड़ाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान दुर्मत अंकारी, अंतर क्रोध जुए मतहारी, कूड़ कुसत उह पाप कर।

0: नानक पूरब लिखिया कमाए पौड़ी।
1: जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डे मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले सच्चार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत सहाई नानका वरतै सब जाहर। महला पंजवा, मुंडो पुल्ले मुंडते किथे पाइन हाथ, तिन्ने मारे नानका जे करण कारण समरथ।

पहला पंजवा अब खद सबे की त्यन निंदक का दारू ना है आप पुलाए नानका पच पच जोनी पाहे पौड़ी पंजवा तुस दित्ता पूरे सतगुरु हर तन सच अखुट सब अंधे से मिट गए जम का पौ छुट काम क्रोध बुरियाया संग साधु टुट विण सच्चे दूजा सेम दे होए मरसन बुट नानक कौ गुर बख्शिया नामे संग जुट श्लोक महला चौथा तपा न होवे अंदरों लोभी नित माया नो फिरे जज मालिया अगों दे सदिया सत्य दी पिखिया ले नाही पिछों दे पछताए कै आन तपे पुत विच बहा लिया पंच लोग सब हसन लगे तपा लोभ ले।

सुखदाई, हर पगता नो नित नावे दी वड्याई बख्शियन, नित चढ़े सवाई, हर पगता नो थिर करी बहालियन, अपनी पैज रखाई। निंदका पासों हर लेखा मंगसी बहु दे सजाई, जेहा निंदक अपने जिए कमाव दे ते हो फल पाई। अंदर कमाना सर पर उगड़े पावे कोई बेहतरती विच कमाई।

मन मुख मूलों पुल्या विच लब लोभ अहंकार झगड़ा कर दिया अंदिन गुदर शब्द ना करें विचार शुद्ध मत करते सब हिरलई बोलन सब विकार दित्ते किते ना संतोखिये अंतर तिसना बहु अज्ञान अंध्यार नानक मन मुखान।

खांदे सुख ना पाएन मुगद नर संत नाल खांदे ओए लोचन ओना गुणा नो ओए अहंकार सड़ंदे ओए बेचारे क्या करें जा पाग तुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे न संदे वैर करन निर्वैर ना।

पंजवा गुरु नानक हर नाम दृढ़ाया पन्नन करण समरथ प्रभ सदा संभाले मित्र तू दुख सबाया लथ। महला पंजवा खुद आवंत ना जाने लाज कुलाज कु

गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हार परोए, पवित्र पावन परम विचारी, जे उस मिले तिस पार उतारी, अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरख सुने सो

ए पूरे सतगुरु पावे, गुर सिखा अंदर सतगुरु वरते, जो सिखा नो लोचे सो गुर खुशी आवे, सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे, गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे, विन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना आवे, गुर सतगुर अग्गे को जियो लाए काले, तिस अग्गे गुर सिखा

नानक आख सुनावे जे बिन सतगुर के मन मने कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवर तू वड वड्डे जिस तू मेले सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावे त्यों रख।

मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम

तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना थान थनंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाये मन सच्चे पाना नानक प्रभ शरणागति सद सद कुर्बाना। श्लोक महला पंजवा। चेताई ता चेत साहिब सच्चा सोतणी नानक सतगुर सेव चढ़ बोहित पौजल।

जिस सिमरत सुख पाई सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तिन सुआओ जिना सतगुर भेटिया। महला पंजवा। दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग के, वत सुहावी साए नानक नाउ जपंदो तिस्तनी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी, सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी, तोसा दिच्चे सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा। अंतर चिंता नैनी सुखी, मूल न उतरे पुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथो दुख। महला पंजवा। मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच न लद्या, नानक से साबास जिन्नी गुरमिल इक पछाणिया पौड़ी। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समरत अपना बिनसे सब मंदा, पतित उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा, भगत वच्छल तेरा बिरद है जुग जुग वर्तंदा, नानक जा

नानक सह सह गंत महला पंजवा विसारे दे मर गए मर भी न सके मूल वेमुख होए राम ते जो तस्कर उपर सूल पौड़ी सुख निधान प्रभ एक है अविनाशी सुनिया जल थल मैयल पूरिया कट कट हर पणिया ऊंच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया तुस नानक देवै।

नित चितारिया निखुट ना जाई मूल अतुल पंडारिया नानक शब्द अपार तिन सब किच सारिया महला पंजवा सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी ओथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम के पंथ न पाये फिर ना ही मरने जिसनो आया प्रेम रस से ही जरने बाणी उचरे साध जन अम्यो चले चरने पेक दर्शन नानक जीव्या मन अंदर तरने श्लोक महला पंजवा सतगुरु पूरे सेवे दुखा का होए नास नानक नाम आराध्य कारज आवे रास महला पंजवा जिस सिमरत संकट छुटे अनद मंगल विश्राम नानक जपिए सदा।

जिन हर उठा चित गाली अल पला लिया कम न आवे मित। महला पंजवा पार ब्रह्म प्रव दृष्टि आया पूरन अगम विस्माद नानक राम नाम तन कीता पूरे गुर प्रसाद। पौड़ी तो वो ना चली खसम नाल लब मोहे विगुते करतब करन पलेरिया मद माया सुते फिर जून पवायन।

दह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़ी है, सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म इक नाम ते आवो। कोई सगल की रेण का हर संग समावो।

एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ जियो हमारा खनिए हर मंतन संदड़ी वत। महला पंजवा जे कर गए प्यारड़े तुद ना छोड़ा मूल हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोजक कैसूल। पौड़ी सब निधान कर जिस दे हर करे सो होवे जप जप जीवे संत जन पापा मल तोवे चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे गुरपुरा जिस पेटी है मर जन्म ना रोवे प्रभ दर्श प्यास नानक घणी कृपा कर देवे। श्लोक दखना महला पंजवा पूरी परम वंजाए प्री मोहब्बत हिक तू जिथो वंजे जाए तिथाओ मौजूद सोए। महला पंजवा चढ़ के कोड़े कुंदे पकड़े खूंडी दी खेडारी हंसा से ती चित उलासे कुकड़ दी ओडारी। पौड़ी रसना उचरे हर श्रवणी सुने सो उदरे मिता हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता नानक लड़ लाए उदा।

पौड़ी। प्रभ बेअंत किछ अंत ना है, सब तिसै करना, अगम अगोचर साहेबो जिया का परना, हस्त दे प्रतपालदा परण पोखण करना, मेहरवान बख्शिंद आप जप सच्चे तरना, जो तुद पावै सो फला नानक दास सरना। श्लोक महला पंजवां।

पंजवां जाचक मंगै नित नाम साहिब करे कबूल नानक परमेसर जजमान तिसे भुख ना मूल। पौड़ी मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम स्यों ए हस्ती कोड़े राज मिलख खुशियां कणी त्याए मुख ना मोड़े टाडी दर प्रभ मंगना दर कदे ना छोड़े नानक मन

14 अब मोहे जलत राम जल पाया राम उदक तन जलत बुझाया रहाओ मन मारन कारण बन जाये सो जल बिन भगवंत न पाये जे पावक सुर

तू सतगुर हौ नौ तन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। गौरी कबीर जी, जब हम एको एक कर जानिया, तब लोगे काहे दुख मानिया। हम अपत्ते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई। रहाओ हम मंदे मंदे मन माही, साँझ पाथ काहू स्यो नाही। पत अप

नगन फिरत जो पाए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिये पाई, खुश रह क्यों ना परमगत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी संध्या प्राप्त।

भरत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने भी नाही। चार चरण कहे बहु आगर, साधु सुख पावे कल सागर। कहो कबीर बहु काय करी जय, सर्वस छोड़ महारस।

देव कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण

राम न कहबो उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ जस देखिए तरवर की छाया प्राण गए कौ का की माया जस जंती मह जियो समाना मुए मरम को का कर जाना हंस

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कूटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनित जन्म किए बहुरंगा। ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ हो आए। रहाओ जोगी जति तपि ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी। साकत मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभु कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए, लिखिया महला पंजवा। ऐसो अचरज देखो कबीर, दद के पोले बिरोले नीर। रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठ हाथे ही गय मरे। माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसा तल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, ले ले को चूगे नित पेड। राम रमत मत प्रगति आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे, ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना। पूरब जन्म हो तप का ही ना, अब कहो राम कवन गत मोरी। सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया। बहुत बरस तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी। काशी मगहर संबिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी। कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री राम। गौड़ी कबीर जी, चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ के संगा। इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उर्वार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन ले ना हर को नाम। हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर। गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे। कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसाई। कहत कबीर चेतरे अंदा, सत राम झूठा सब तंदा। गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके, जमते उलट पए है राम। दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उलट पए है मीता। साकत उलट सुजन पए चीता, अब मोहे सर्व कुशल कर मानिया। सांत पई जब गोविंद जानिया। रहाओ तन में होती कोट उपाद, उलट पई सुख सह समाद। आप पछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मन

जिन राम जानिया तिन्हें पछानिया, जो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुखमन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रवो जे बहुर न रवना, सो ध्यान करो।

बोल अब मोहे राम अपना कर जानिया सह सुभाए मेरा मन मानिया रहाओ ब्रह्मे कथ कथ अंत न पाया राम भगत बैठे कर आया कहो कबीर चंचल मत त्यागी।

राम भगत निज पागे गौड़ी कबीर जी। जिहे मरने सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द प्रगासिया। अब कैसे मरो मरन मन

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

जो मन मारे हैं, मन को मार कहो किस तारे रहाओ, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत न होई, कहो कबीर जो जाने पेओ, मन मधुसूदन त्रिभुवन देओ। गौरी कबीर जी, ओए जो दिसे अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे, कहो रे पंडित अंबर कास्यो लागा, बूजे बूजन हार सवागा रहाओ, सूरज चंद करें उजियारा, सब में पसरे।

राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहा समाए, रहाओ काको जरे काए हुए हान, नटवट खेले।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे। विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्ही है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पे हो, ए मन लीन।

चेतक सिद्ध पै लिव लागे, रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प कर तारे, जो हर हरे सो होए ना आना, कह कबीर राम नाम पछाना।

कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवरना कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो। हर ठग जग को ठगोरी लाई, हर के वियोग कैसे जियो मेरी माई। रहाओ कौन को पुरख कौन को नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगोरी ठग पहचानिया। अब मोको पै राजा राम सहाय, जन्म मरण कट परम गत पाई। रहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार। चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गोविंद बसे निता नित चीत। माया तपत बुझिया अंग्यार, मन संतोख नाम आधार। जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी। अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई। जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओपत होई। जन्मे सूतक मुए फुन सूतक।

कोई, कुशल कुशल करते जग बिन से कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा तिस आ गए जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे।

गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया अंजन माह निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है गुरमत मनुआ अस्थिर राखो इन विद अमृत पियोई है रहाओ गुर के बाण बजर कल छेदी प्रगटिया पद परगासा सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका नेचल शिव कर बासा तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है इहो जग बेद्या पाई दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे डोर रही लिवलाई उन मन मनुआ सुन समाना दुबदा दुर्मत पागी कहो कबीर अनुपव इक देखिया राम नाम लिवलागे गौड़ी बैरागन तिप दे उल्टत पवन चक्र खट पे दे सुरत सुन अनरागी आवे न जाए मरे न जीवे तास खोज बैरागी मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पई अवरे नातर था बेगाना रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे जिन जैसा कर्म

रात दिन सते नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही। अगम अगोचर रहे निरंतर, गुर कृपा ते लहिए, कहो कबीर बल जाओ गुर अपने, सत्संगत मिल रही है। गौड़ी पाप पुन दोए बैल बिसाहे, पवन पूजी प्रगास्यो, तृष्णा गुण परी कट पीतर, इन विद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बनजारा, रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती, मन तरंग बटवा।

पंडित गुणी सूर हम दाते ए कहें बद हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने विकारा हर पद दृढ़ कर रही।

जोड़न हारो सदा अतीता, ए कही है किस माहे। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए विनाशी, काको ठाकुर का।

गज नव गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बेहतर पाठ लगो अधिकाई गई बुनावन माहो कर छोड़े जाए जुलाहो रहाओ गजी न मिनिए तोल न तुलिए पाचन शेर अढ़ाई जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कत आई।

होए महोए। जित कट नाम ना उपजै, फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोहे। रहाओ साध मिले सिद्ध पाये, के एहो जोग के भोग दो।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो बिसारियो रे हीरा लाल अमो

रहो रे, स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो, मद रस लैत बिकारियो रे, कर्म पाग संतन संगाने, कासट लोह उधारियो रे, तावत जोन जन्म प्रम थाके, अब दुख कर हम हारियो रे, कह कबीर गुर मिल।

राम नाम तन कर संचौनी सो तन कथि न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गोविंद।

लागत पवन खसम बिसरायो, जीरा हर के गुना गाओ रहाओ, गर्भ जोन में उर्द तप करता, तो जठर अगर मैं रहता, लख चौरासी जोन प्रम आयो, अब के छुटके ठौर न ठायो, कहो कबीर पज

रमैया गुण गाये जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देखना हरखिए विपत देखना रोए, जो संपै त्यों

पासा पूर्णा पीजे पग न खिसे हर दर्शन की आशा उड़ो न कागा कारे बेग मिली जय अपने राम प्यारे रहाओ कह कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम।

कहां पया नर देवा तोखे, क्या जल बोरियो गया था, जीरे जाहेगा मैं जाना, अवगत समझ आना, जत जत देख।

परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रंगते डरपे सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बहुरा अब तो जरे मर

जोन में प्रमथ नंद बहु ठाकोरे भगत हेत अवतार लियो है पाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही तब यो नंद कहा थोरे। रहाओ संकट नहीं परे जोन नहीं आवे नाम निरंजन जा कोरे कबीर को स्वामी।

नाम पदार्थ मने बसाय हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक तोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माए हमारा।

तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही, अब हम तुम एक भये हैं, एक कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कहता, अब

दिखै रोग पै बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मने ना अनाना। चंदन बास पे मन बासन त्याग कट्यो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है थाना ना। ते बड़ पाग बस्यो।

अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे कोई अक्षर इनमें ना है। जहाँ बोलते अक्षर आवा, जह अबोलते मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लख है न कोई। अल्लह लहो तो क्या कहो, कहो ता को उपकार, बटक बीज में रव रहे हो जाको तीन लोक विस्तार। अल्लह लहंता पेद छे, कछ कछ पायो पेद, उलट पेद मन भेदियो, पायो अपंग अछेद।

सस बिगास संपट नहीं आवा, और जे तहां कुसुम रस पावा, अकह कहां कह का समझावा, खखा एह खोड़ मन आवा।

जोत्रे भवन तन माहे समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थथा अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर ना रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन कीजे तद्दा अर्दे उर्द निवेरा अर्दे उर्दे मंज बसेरा अर्दे छाड़ उर्द जो आवा तो अर्दे उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रहे रतवाई निरखत निरखत जा

अब पौ पान परोसो आवा जो बाहर सो पीतर जानिया पया पेद पूपत पहचानिया। मम्मा मूल गया मन माने मरमी होए सो मन को जाने मत कोई मन में।

निरोधो कट पर चै जो उपजय पाओ पूर रहा तै त्रिभुवन राओ। खखा खोज पर जो कोई जो खोजे सो बहुर ना।

निवारै, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्रिय ओ कंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना, जब ही होए तब है मन माना, है तो सही लखे जो कोई, तब ओही ओह एहो ना होए। ल्यों ल्यों करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापे बहु सोग, लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावे, सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत

पहचान सत का शब्द कबीरा कहे पंडित होए सो अनपैर है। पंडित लोगे को व्यवहार ज्ञानवंत को तत विचार जा कह जी जय।

अंग माया ब्रह्म रमे सब संग ना ओ बढ़े न कटता जाए अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे अनद मूल परम पद पावे साध संगत उपजे विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कबहो न बहो।

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार।

मेरा कर्म कुटलता जन्म को भांति, राम गुसैया जी के जीवना मोहे न बिसारो मैं जन तेरा रहा, मेरी हरो विपत जन करो सुभा।

सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारिय शंका सुन वेद पुराण, संसार सद हृदय बसै कौन हिरै अभिमान। बाहर उदक पखारिय कट पीतर विविध विकार, शुद्ध कमन पर होए वो सुच कुंज।

लेती है पूरब लिखत लिलाट उन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट भगत जुगत मत सत करी।

गावन तुदनो चित गुपत लिख जानन, लिख लिख तरम विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले, गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पड़े रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोणिया।

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावे सब त्यावे तुझ जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्या वो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व

सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाए तेरी तिलवडियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा।

जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात जिन दिन करके कीती रात खसम विसारे ते कम जात नानक नावे बासनात आसा महला पहला जे दर मांगत।

तित रंग नाचो रख रख पाओ। पाओ फेरी होवे मन चीत, बैंदियां उठदियां नीता नीत, लेटन लेट जाने तन स्वाहा, तित रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ, नानक आखन वेरा वेर, तित रंग नाचो रख रख पैर। आसा मैला पैला पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया, अंधुले दे दिस मूंड डुकटाया, रावण मार क्या वड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पूर रहा लिवलाए, रहाओ जी उपाय जुगत हक कीनी, काली नाथ क्या वड़ा भया। किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्व निरंतर रव रया, नाल कुटम साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया, आगे अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या वड़ा भया।

पनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नदर करे सास सुहागण होए, आशा मैला पहला गृह बन समतर तय सुबाए, दुर्मत गत पई कीरत ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए निज थाओ, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूरन भगवान रहाओ, अधिक त्यास पेक बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ नाम निस्तरे, सिफत सलाहन सहज आनंद, सखा सैन प्रेम गोविंद, आपे करे आपे बख्शिंद, तन मन हर पै आगे जिंद, झूठ विकार महा दुख देहे, देख वरन दीसे सबके, जो उपजे सो आवे जाए, नानक अस्थिर नाम रजाए, आसा मेला पहला, एको सर्वर कमल अनूप, सदा

लागी महल मिटे सतनाए गुर प्रसाद रहे लिव लाए है हजूर हाजर अरदास दुख सुख साच करते।

संतापे से जन बाचे जो प्रभ राखे सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राखे अमृत चाखे सतगुर सेव अमृत शब्द पाखे साचे शब्द मुक्त गत पाए नानक विच्चों आप गवाए। आसा महला पहला जो तिन किया सो सच तिया अमृत नाम सतगुर दिया हृदय नाम नाही मन पंग अंदिन नाल प्यारे संग हर जियो राखो अपनी सरनाई।

जो हर राते थे जन परवान, तिनकी संगत परम निधान, हर बार जिन पाया तन नारी, हर स्यों राती शब्द विचारी, आप तरह संगत कुल तारे, सतगुरु सेव तत विचारे, हमरी जात पथ सच नाओ, कर्म तर्म संयम सत भाओ, नानक बख्शे।

एक तरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यो जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला को किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकथ कथो गुरुमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, सात वेद सिमरत बहु भेद, अठ अठ मज्जन हर रस।

0: पोखरे।
1: ऐसा गुरमत रमत शरीरा, हर पज मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ। अनत तरंग पगत हर रंगा, अनदिन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम पगत जन रहे निरारा। पूती काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया। आद अपार अपरंपर हीरा, लाल रता मेरा मन धीरा। कथनी कहे कहे से मुए, सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते।

अंध जीव रस नाही तन्नी पवन न वाजे चरनी चले पजूता आगे बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग पोए चोखी।

मत पाए हस्त दसी चौ भेद न पाया नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया आसा मैला पहला सेवक दास पगत जन सोई ठाकुर का दास गुरमुख होई जिन सिर साजी।

मन्ने हुकुम सो प्रगट जाए, सत निशाने ठाक न पाए। पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर वस्त न जाने तेद, गुरबिन सो जी।

सब जप तप जिस हर हृदय अलख व्यवहार नानक राम नाम मन राता गुरमत पाए सहज सेवा आशा महला पहला पंच पदे

चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जन पंच राशि ता तीर्थ वासी कुंगरु वाजे जी मन लागे तो जम कहा करे मोसो आ गए रहाओ आस निरासी तो सन्यासी जहाँ जत जोगी ता काया पोगी दया दिगंबर दी बिचारी आप मरे अवरा ने मारी।

नहीं कोई नदर करे मेलावा होई राव सरोरड़े तन साथ पछाणिया सहज सुभाए अपना फिर जानिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामन कंते मन भावे कहत नानक पै पाव का करे सीधा।

कै कोई जाति स्थावे बख्शे सोई गुर प्रसादी दुर्मत खोई जय देखा तह एको सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समावे आसा मैला पहला दुख दे तित सर्वरण भई ले निवासा पानी पावक तिने किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेतस मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हो जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक।

जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिती वारी माओ भया सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वेश ओंकार सतगुर प्रसाद आशा करती जा मैला पैला लख लख कर लख वाजे ने जे लख उठ करे सलाम लखा उपर फुरमाइश तेरी लख उठ राखे मान जा पतले खे ना पवे ता सब निराफल

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ता जी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जेवसे नानक नदरी पार आसा मेला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जमस्यो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मरिया कर एक खटे एक रतीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग दनार।

कर कर पगवे पेख पए। तौ कारण साहिबा रंग रते तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े छोड़ विलायत देश बहे, पीर पैगंबर सालिक साधक छोड़ी दुनिया खाए पए। साध सहज सुख रस कष्ट जियले, कापड़ छोड़े।

सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंद्री पहरे परमेश्वर पटले तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। आसा मैला पहला चीता होवे करे कराया तिस क्या कही है भाई। जो किछ करना सो कर रहया कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला कुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बाउड हुकुम ना होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई। जे क्यों दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी सतरंज बाजी पक्के नहीं कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

पाप मां हटाओ, जो किछ करे पला कर मानो, सहज जोग निध पावो। बाबा जुगता जियो जुग।

शिव नगरी में आसन बैसो कल्प त्यागी बादन सिंगी शब्द सदा तुम सो है नादन। पक विचार ज्ञान मत दंडा वर्तमान विपूतं हर कीरत रह रास हमारी गुरुमुख पंथ अतीतं।

परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करे क्या तीरता सद बैरागी जुए जन्म न हारे कहो नानक सुन कर पर जोगी खीवा अमृत धारे आशा मेला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने ते की दर्द न आया करता तू सजना का सोई जे सकता सकते को मारे काम रोस न होई रहा सकता सिंह मारे पै वगै खसने सा पुरसा।

एको नौता आए वड्डा साध करे मन भाणे खसने नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने मर मर जीवे ताक पाए नानक नाम वखाणे।

हर दर्शन पावे वड भाग, गुर के शब्द सच्चे बैराग। हर दर्शन वर्ते वर्तारा, गुर का दर्शन अगम अपारा, गुर के दर्शन मुक्त गत होए।

गुर के दर्शन सदा सुख होए। गुर के दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवे परवार साधार। निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाई। गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख तां को लगे नकीर। जम काल किस नीड़ ना आवे, नानक गुरमुख साथ।

समाए सेवड पागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह है तिन बलिहार है जाओ दर साचे साचे गुण गाओ आपे देव सह सुभाए नानक कीमत कह न जाए ऐसा मैला तीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई चिरी विछुने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन विध होए हर अपरंपर अगम

आए संत संगत मिल हर गुण गाए नौमे नाम करे विचार आप तरह कुल उदनहार गुर की बाणी नाम बजाए नानक महल शब्द कर पाए गुरमत सत सर हर जल नाया दुरमत महल सब दुरत गवाया आसा महला तीजा मन मुख मरे मर मरण बिगाड़े दूजे पाए आत्म संगारे मेरा मेरा कर कर विभूता आत्म न चीने पर मैं विसूता मर मोया सब दे मर जाए उस तक निंदा गुर समझण आई इस युग में लाहा हर जप ले जाए रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए बिरथा जन्म दूजे लोभाए नाम विहूनी दुख जले सबाई सतगुर पूरे बूझ बुझाए मन चंचल बहु चोटा खाए एकठो छुड़किया ठौर न पाए गर्भ जोन विष्टा का वास तित कर मनमुख करे निवास अपने सतगुर को सदा बल जाई गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई निर्मल बाणी निज कर वासा नानक हो मैं मारे सदा उदासा आसा मेला तीजा लाले अपनी जात गवाई तन मन अर्पे सतगुर शरणाई हृदय नाम वड्डी वड्याई सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई सो लाला जीवत मरे सोग हरक दोई समकर जाने गुर प्रसादी शब्द उदरे रहाओ करणी कार तुरो फुरमाई बिन शब्द को थाए न पाई करणी कीरत नाम वसाई आपे देवे टिल न पाई मन मुख परम पुले संसार बिन राशि कूड़ा

दोहागणी का मन देख सिंगार, पुत्र कलत तन माया चितलाए, चूत मोह पाखंड विकार। राव सदा सुहागण जो प्रभ पावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे, सेज सुथाली अंदिन हर रावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे। सा सुहागण साची जिस सा

अंतर निर्मल अमृत शरण आए, सदा सूचे साथ समाए। हर सब वेखे सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर, जा जाओ तै वेखा सोए, गुर बिन दाता अवरना कोए। गुर सागर पूरा पंडार, उत्तम रतन जवाहर अपार, गुर प्रसादी देवन हार, नानक बख्शे बख्शन हार, आसा मैला तीजा। गुर सायर सतगुर सच सोए, पूरे पाग गुर सेवा होए, सो बुझे जिस आप बुझाए, गुर प्रसादी सेव कराए, ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद अज्ञान विनाशे, अंधन जागे वेखे सच सोए, रहाओ मोह गुमान गुर सब जलाए, पूरे गुर पे सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाने, आवन जान रहे फिर नाम समाने। जम्मा मरना है संसार, मनमुख अचेत माया मोह गुबार, पर निंदा बहुकूर कमावे, विष्टा का कीड़ा विष्टा माए समावे। सत संगत मिल सब सोजी पाए, गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए, पौना मन्ने सदा सुख होए, नानक सच समावे सोए, आसा मैला तीजा। पंच पदे शब्द मरे तिस सदा आनंद, सतगुर पेटे गुर गोबिंद, ना फिर मरे ना आवे जाए, पूरे गुर ते साज समाए। जिनको नाम लिखिया तुरलेख, ते अंदिन नाम सदा त्यावे, गुर पूरे ते भगत विशेख, रहाओ जिनको हर प्रबले मिलाए, तिनकी गहन गत कहीं न जाए, पूरे सतगुरु दित्ति वड्याई, उत्तम पदवी हर नाम समाए। जो किछ करे सो आपे आप, एक कड़ी में थाप थाप, कह कह कहना आप सुनाए, जे सो काले थाए न पाए। जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए, जहाँ शब्द वसे तहाँ दुख जाए, ज्ञान रतन साचे सहज समाए। नावे जेवड होर तर नाही कोए, जिसनो बख्शे साचा सोए, पूरे शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए, आसा मैला तीजा। नृत्य करे बहु वाजे बजाए, यो मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए, अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बले न सोजी पाए। गुरमुख भगत कट चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए, रहाओ गुरमुख निरत हर लागे पाओ, पूरे ताल विच्चों आप गवाए, मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार, गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए। एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी पव जल तरे, गुर के वचन भगत खाए पाए, हर जियो आप वसे मने आए, हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, नेचल भगत हर सियो चित लाए, भगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए। आसा कर अठवां काफी मैला तीजा, ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के पाणे सतगुर मिले सत सोजी होई, गुर प्रसादी मन वसे हर बूझे सोई, मैं सहुदाता एक है और नाही कोई, गुर कृपा ते मन वसे।

बस है मनमुख अंध द्वार हर के पाने जन सेवा करे बूझे सच सोई हर के पाने सलाहिए पाने मने सुख होई हर के पाने जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई आसा महला चौथा कर दूजा एक ओंकार।

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सब ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिंदु जावर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए। इको ओंकार सतगुर प्रसाद, रागा सा हर दूजा मेला चौथा

सिकदार चौधरी नाल अपने सुहाई हमारा तरा हर वया समाई हम हर स्यों तरा किया मेरी हर केक मैं हर दिन पक तरा और ना कोई हूँ हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ जिन स्यों तड़े करे से जाहे झूठ कड़े कर पछोताहे फिर ना रहे मन खोट कमाहे हम हर स्यों तरा किया जिसका कोई समर्थ ना है ये सब कड़े माया मोह पसारी माया को लूजे गवारी जन्म मरे जुए बाजी हारी हमरे हर तरह जे हलत पलत सब सवारी कल युग में तड़े पंच चोर

विड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तड़ा जिन ए तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे, पराया छिद्र अटकले अपना अहंकार वधावे, जैसा भी जै तैसा खावे, जन नानक का हर तड़ा कर्म सब श्रेष्ठ जिने आवे। आसा मेला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अलख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रव रया कट अंतर मुख बोलो, गुर अमृत बहना रहा, मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वडपाग, दूजे पाए पवे बिख माया, पागहीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पियाया, गुर पूरे नानक हर पाया, गुर पूरे नानक हर पाया, आसा महला चौथा।

ना जाए बड़े पास गुरमुखर पाए नाम ही कालख मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया वड़ा वड़ा हर पाप कर पाया नानक गुरमुख नाम दिवाया आसा महला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरमुख हर गुण आंख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सत गुरु नाम दृढ़ाया रस गाए गुण करमा।

शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मत कट कडिए। आसा मैला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वडे पाग गुरमुख हर पावे। नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं तर नहीं काई। नाम रविया सब सांस ग्यासा, रहाओ नाम में सुरत सुनी मन भाई। जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा। पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उठापे, नानक नाम देवे हर आपे। आसा मेला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस रसाई। हर हर नाम जप अनक तरंगा, जप जप नाम गुरमुख सालाही। मारिया काल जम कंकर पुयंगा, रहाओ हर हर गुर में पगत रखाई। गुर सुखा सिख देवे मेरे भाई, हो मैं कर्म किस विद नहीं जाने। जो कुंचर नाए खाक सिर छाने, जे वड पाग होवे वड ऊचे। नानक नाम जपे सच सूचे, आसा मैला चौथा। हर हर नाम की मन भूख लगाई, नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई। नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता, नाम जपो नाम में सुख पावो। नाम रखो गुरमत मन चीता, रहाओ नामो नाम सुनी मन सरसा। नाम लाहा ले गुरमत बिगता, नाम बिना कुश्ती मोह अंधा। सब ने फल कर्म किए दुख तंदा, हर हर हर जस जपे वड पागी।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यों मनुआ हर रंग पेन जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्त है तिस आ गए हम आदेश राओ गावे राग पांच बो बोले यो मनुआ खेले खेल जो वे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए चरबेल पाया नगर में कर्म हर बोवो हर जा में हरिया खेत मनुआ सिर बैल मन जोवो हर सिंचो गुरमत जेत जोगी जंगम श्रिष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी।

आपा जय जय करे सब कोए आसा मैला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कट चानन अज्ञान अंधेरा जाए हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे पाई हम जन के तो है पाए रहाओ हर हर नाम जपो मन मेरे अन दिन हर लिव लाए जो इच्छो सोई फल पाओ फिर भूख न लागे आए आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से संत पले तुद पावे जिनकी तत पावे थाए नानक आत्मा राजे हर गुण जो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हर अपने गुण गायक वंज ले जाए।

जीवन मरण सुख होए जिना गुरु पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। आसा मैला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुरु प्रसादी बुझ सच समाया, जिन पुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया।

हर गुण गाई है, अंतर वस्त्र अनेक मनमुख नहीं पाई है, हम गर्भ गर्भ आप को आई है, नानक आपे आप को आई है, गुरमत मन पर गास सच्चा पाई है, राग आसावरी कर सोलवा के।

हम हर दिन खिन पल रह ना सको रहाओ। हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हम हर दिन रह न सको हम एक खिन। जैसे हंस सरवर बिन रह न सके, तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हु प्रीत लाई दूजा पाओ, रिज तार किन्हु प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण, पद नानक सिमरत हर हर भगवान। आसावरी मैला चौथा, माई मेरो प्रीतम राम बताओ री माई। हम हर बिन खिन पल रह न सको, जैसे करहल बेल दी जाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत कहो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह न सके, तैसे मोय हर दिन रह न जाई। राज शरण जगदी सुर प्यारे, मोय सरदा पूर हर गुसाई। जन नानक के मन अंध होत है, हर दर्शन निमक दे।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पौ बहुत दिखाया, पाई मीत कुटम देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख भी मोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा।

जो तू कहे सो कार कमावा, जन नानक गुरमुख नेड़ना आवा। आसा मैला पंजवा, ससु ते फिर की नीवाक, देर जिठानी मोई दुख संताप।

मैं प्रीत दुखिया त्यागी लोगारीत त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधया ज्योत स्वरूप अनाद वाजया महा आनंद गुर शब्द विचार त्रै सो राति तन सुहाग।

आचार जित गृह वसे सो गृह सो बावंता गुरमुख पाई किने विरले जनता सो करणी कामन गुरमिल हम पाई जज काज परथाए सुहाई रहाओ जिचर वसी पिता के साथ टीचर कंत बहु फिरे उदास कर सेवा सब पुरुष मनाया गुर आनी कर में पा सर्व सुख पाया बत्ती सुलखणी सत संतत पूत आज्ञाकारी सुगर स्वरूप इस पूरे मन कंत स्वामी सगल संतोखी देर जेठानी सब परवारे माए श्रेष्ठ मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ तन सो गृह जित प्रगति आए जन नानक सुखे सुख विहाए।

तब तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, पर थाके सिमरत वेद व्यास। जै बैसो तै नाले बैसे, सगल पवन में सबल प्रवेश है। होछी शरण पया रह न पाई, कौमी पाहो कह कह जाई। सुनो उपदेश सतगुर पे आया, गुर हर हर नाम मोह मंत्र दृढ़ाया। निज कर वस्या गुण गाय अनंता, प्रभ मिलियो नानक कहे अचिंता। पर मेरा ए नायक हमारी, ए आमर हम गुर किए दरबारी।

नानक दास तेरी शरण आई, प्रभ राखी पैज वजी वधाई। आसा मैला पंजवा परदेश चाग सौदे को आया, वक्त अनूप सुनी लभाया, गुण रास बन कल्याणी, देख रतन यो

अमोल वचन अमोलारास विष्ट सुभाई पाया मीत सौदा मिलिया ने चलकीत पौ नहीं तस्कर पौ न पानी सहज विहाजी सहज ले जानी हट के खटे दुख नहीं पाया सही सलामत कर ले आया मिलिया लाहा पै आनंद तन सहा पूरे बक्सिंद यो सौदा गुरमुख किने।

आए, निंदा करें सिर पार उठाए, माया मूठा चेके नहीं, पर में फूला बोती राही, बाहर पेश करें कनेरे, अंतर बिखिया उतरी केरे, और उपदेश है आज

ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਪਏ ਗਤ ਸੰਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ।

रहे एक एक बूझिया आए बसे अब ने चल खाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पे छत रहे अघाए जन्म दोष परे मेरे पाछे अब पकड़े ने चल साधु पाए शायद तुन गावे मंगल मनुआ अब ताको फुनकाल न खाए करण कारण समर्थ हमारे सुखदाई मेरे हर हर राय नाम तेरा जब जीवे नानक पोत पोत मेरे संग सहाय आशा मैला पंजवा अरड़ावे बिललावे निंदक पार ब्रह्म परमेश्वर बिस्रिया अपना कीता पावे निंदक रहाओ जे कोई उसका संगी होवे नाले ले सिदावे अनहोंदा अजगर पार उठाए निंदक अग्नि माए जलावे परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीते सो नानक आप सुनावे भगत जना को सदा आनंद है हर कीर्तन गाए बिकसावे आसा मेला पंजवा जो मैं कियो सगल सिगारा तो भी मेरा मन न पतियारा

वस्त्र भी कुफन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितना लेख है, पथ शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभु पावाता सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार, रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक अर बहुत फुरमाइस, मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिल बे यो दिन ना बिहावे, मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए, साग संगत बिन तरयो न कोए, जिस मुस्तक पाग तिन सतगुरु पाया, पूरी आशा मन तृप्ताया, प्रभ मिलिया ता चूकी डंजा, नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला।

में चल रहना, जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अब सब मुख पाया, गुर सब दी रस अमृत पीवे। रहाओ काची मटकी बिनस बिनासा, जिस छूटे तृप्ति तिस निज पर वासा, ऊंचा चढ़े सो पवे प्याला, तरन पड़े तिस लगे न काला, क्रमत फिरे तिन किछु न पाया, से अस्थिर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर कमाल, नानक गुर मिल पे निहाल, आसा महला पंजवा, उतरी तेरी बिद कर खाती, जान सत कर हो।

बिचता अस्त रखत परे थे चाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। एक वक्त बूझे ता हो मैं पाक, बिन बूझे तू सदा न पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिससे पाई है हर पुरुष सुजान। आखा महला पंजवा, एक तुके चौपदे

जन बकरा मोको कहाँ डवाई रहाओ, हर मेरी ओट में हर का तान, हर मेरा सखा मन माहे दीवान, हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो, गुरमुख तन छट्टी हर मेरा सा हो, गुर कृपा से ए मत आवे, जन नानक हर कै अंक समावे, आसा मैला पंजवा, प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई, सतगुर सेव सब फल पाई, मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान, अमृत सर सब ही पर पूरा रहाओ, चरण कमल रिद अंतर धारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे, पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया, गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय, सुख रैन विहानी सह सुवाए, आसा मेला पंजवा, कर कृपा हर प्रगति आया, मिल सतगुर तन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिय भाई, कहे न जाने जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कत हो न जा रहा, कोट न आवे निकुट न जाए, खाए खर्च मन रहा अगाए, सो सत्सा हो जिस कर हर तन संचाना, इस तन से सब जग वरसाना, तिन हर तन पाया जिस कोग लिखे का लेना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आसा मेला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन में सो जानो मुआ, गोविंद भगत अस्थिर है।

जात पावे तम हर गुण गाओ, तेरे कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिब अर्थ अपेव, नानक लाया लागा सेव। आसा मैला पंजवा, निकट जी कै सद ही संगा, कुदरत वर्ते रूप अर रंगा। करे न चुरे न मंगो वनहारा, अविनाशी अवगत अगोचर सदा सलामत।

कर में वस्त बाण उठ जाता, सुनी न जाई सच अमृत का था, वार करत चूठी लग जाता रहा, वजो साहिब का सेव बिरानी, कैसे गुने अच्छा दियो प्राणी, तिस्यों लोक जो सद ही संगी, काम ना आवे सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभु दीन दयाला, जो पावे त्यों कर कृत पाला, आसा मेला पंजवा, जी प्राण तन हर को नाम, इहा उहा उन संकाम, बिन हर नाम अवर सब छोरा, त्रित अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ, पगत पंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल सो लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान, नानक को गुर दीक्षा दीन, प्रभ अविनाशी कट कट चीन, आसा महला पंजवा, अनद विनोद परे पुर तारिया, अपना कार्य आप संवारिया।

फिर बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरदीनो दान आसा मेला पन्नवा बुद्ध प्रगास कई मत पूरी तमसे बिनसी दुर्मत दूरी ऐसी दुर्मत पाई ने बूढ़त कोर अंध कूप में निक्षो मेरे पाई रे राव महा अगा अगन का सागर गुर बोहित तारे रत्नागर दुतर अंध बिखम ए माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जात पाप कछ उक्त न मोरी गुरु नानक शरणागत तोरी आसा मेला पन्नवा तिप दे दूजा हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन में लह जाता हर रस के माते मन सदा आनंद

हर साधु हर समाए लाख करोरी मिले न के जिसे प्राप्त तिस ही दे नानक चाक पे बिस्माद नानक गुरते आया साद ईत ऊत कछ छोड़ न जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा मेला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके दुर्मत अपनी

आज्ञा मान भगत हुए तुम्हारी, जो इव मंत्र कमावे नानक सो पौजल पारे उतारी। आसा मेला पंजवा दुख दे पई प्राप्त मानक दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अगर काज तेरे कित न काम, मिल सौद संगत भज केवल नाम, संग जाम लाग पौजल कर्म के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो, जब तप संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहु नानक हम नीच कर्मा, शरण पर एक

उठत सोवत जागत विसरना नहीं तू सांस गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अग्न सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्नवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मान्या पाप मुआबिक खाए प्रभाव पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी को चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पै कृपाला होए आप समाए गुण निधान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाए आसा महला पंजवा।

मिल संग पयो मन निर्मल गुरपुरे लेखिन मैं तारे रहाओ सबकी रेन होए रह मनुआ सगले दिशे मीत प्यारे सब मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन।

आधार अर्ध करे सास सास संवारे न पोहे अगनार पर तन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी हृदय अंतर।

राज मिलक जो बन गृह शोभा रूपवंत जो आमी बहुत दर्भ हस्ती अर कोड़े लाल लाख बयानी आगे दर्घे कामना आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाये उठत बैठत सोवत जागत सदा।

कर्म कर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने उपदेश करे आप ना कमावे सत शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवं पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुरमिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद प्रम में सोई सगल जगत कंद अंध को जागे हर जन महामोहनी मगन प्रिय प्रीत प्राण को त्यागे विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा कर छेवा महला पंजवा जो तुद पावे सो परवाना सुख सहज मन सोई करण कारण समरथ अपारा अवर नहीं रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियानक जन की जो तू करे करावे रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया त्रिपत अघाए से जन पूरे सुख निदान हर गाया जा को टेक तुम्हारी स्वामी का को नाही चिंता जा को दया तुम्हारी हुई से सह पले भगवंता कर्म मोह त्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया वर्तन नाम नानक सच कीना।

पहला जन्म जो आया पहुँच न साके काजू बाते आगे ठोर न पाया रहाओ किस पया निंदक बपरे का क्या ओ करे बिचारा ता बिगुता जय कोई न राखे ओ किस पे करे पुकारा। निंदक की दत कत होना ही खसमे एवे पाना जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुख माना संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई आसा महला पंजवा बार तोए अंक।

गर्मी मारी साथ न मरी, नाम न सुने डोरा रहा हो, माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार न जाने, वेद शास्त्र को तर्कन लागा।

कहाँ छुपाया कूड कपट बंश निमुनिया दाला बिरस गया तत्काल सत सत सत नानक कहया अपने हृदय देख समाले आसा मैला पन्नवा उदम करत हो गय मन निर्मल नाचे आप निवारे पंच जना ले वसगत राखे मन में एकंकारे तेरा जन नृत्य करे गुण गावे रबाब पखावे।

मुक्ते सगल सुनावे, कर संग साधु चरण पखारे, संत पूर तन लावे, मन तन अर्थ तरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पे खेलाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी निर्त नरक निवारे, नानक गुरुमुख जागे, आसा मैला पंजवा।

रे आज के बस गुरकीनो के हर कुकर तिने लगाई रे राव बाज थूनिया छपरा थामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा अचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चुपी निर्नो पाया रे माल दुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया।

मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो राव तुमरी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे सहजे बिखिया पई कियो सुख निधान नाम प्रभ तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझ सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सो कल जुग साध संकीर्तन गाये नानक नाम।

महा कोरते बा पकड़ गुर काट लिए निरपो पे सगल पो मिटिया राखे राखन हारे ऐसी दास तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सवारे गुण निधान साहिब मन मेला।

कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ ना जाने मेरा पासा मेला पंजवा। कर कृपा प्रभ अंतर जामी साध संग हर पाये, खोल किवार दिखा ले दर्शन पुनरप जन्म ना आये। मिलो प्रीतम स्वामी अपने सगले दुख हरोरे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या ताके संग तरोरे। राव महा उद्यान पावक सागर भय हरख सोग में बसना, सतगुर पेट पया मन निर्मल जप अमृत हर रसना। तन तन थाप कियो सब अपना कोमल बंधन बांधिया, गुर प्रसाद पय जन मुक्ते हर हर नाम आराध्या। राख लिए प्रभ राखनहार है जो प्रभ अपने पाने, जियो पिंड सब कुमरा दाते नानक सद कुर्बाने। आसा मेला पंजवा मुह मलन नींद के छुटकी, कौन अनग्रो पयोरी मां मोनी तुद ना व्यापे, तेरा आलस कहां गयोरी। राव काम क्रोध अहंकार गाखरो संजम कौन छुट्योरी, सुर नर देव असुर त्रै गनिया सगलो पवन लुट्योरी। दावा अग्न बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहोरी, ऐसो समरथ वरण न साको ताकि उपमा जात न कहोरी। काजर कोट में पई न कारी निर्मल बरन बन्योरी, महामंत्र गुर हृदय बस्यो अचरज नाम सुन्योरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नानक सुख

आप सिंगार सवार हार रहाओ दूजा आसा मेला पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मुझे मिली है दूर चुका निहोरा सकी सहेरी धर्म गया गुर फिर संग मेरी रहाओ निकट कौन प्रे सेज तरी कौन कदम ते छूट परी मंदर मेरे शब्द उजारा अनद बिनोदी खत्म हमारा मस्तक भाग में फिर कर आया फिर सोहाग नानक जन पाया आसा मेला पंजवा साच नाम मेरा मन लागा लोगन से मेरा ठाठा बागा।

बहुत सिहाला, सगल चरण की इह मन राला, नानक जन गुरु पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। आशा महला पंजवा, पावत रलिया जो बन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओढ़लिया, सेज सुख लिया मन गर्बलिया, रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर पगत बिना ले तरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनेक स्त्रिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया चलिया बिकार बिखलिया, शरण नानक प्रभु पुरुष दयालिया। आसा मेला पंजवा, एक बगीचा पेड़ कन करिया, अमृत नाम कहा मैं फलिया, ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाये पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे, रहाओ सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पत आन जड़ाई, सगली फूली निफल नाकाई, अमृत फल नाम जिन गुरते पाया, नानक दास तरी तिन।

जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आशा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अंकार, कर्म कर्त जी को जंजार, प्रभु कृपा से मनवस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन गाये, यो स्थान गुरु ते पाये, राव दूजा आशा मेला पन्नवा। कर में सुख बार फुल सूखा, हर सिमरत सगल बिना से दुखा, सगल सुख जा तू चित आवे, सो नाम जपे जो जन तुझ पावे, रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत तह दुख डेरा, हुक्म बूझे सोई परवान, सात सब ज्ञाता निशान, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, पंत नानक मेरे मन सुख पाया, आशा मेला पन्नवा। जहाँ पठावो तह तह जाई, जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गोसाई, तुमरी कृपा ते तृप्त।

कहो नानक नित इवै त्याई गत होवे संतै लग पाई। आसा मैला पंजवां उठत बैठत सोवत त्याये मार्ग चलत हरे हर गाये। श्रवण सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा दुख रोग सगले मन लखा राव। कारज काम बाट काट जपी जय गुर प्रसाद हर अमृत पी जय। दिन सरैन हर कीर्तन गाये सो जन जन की वाट न पाये। आठ पैर जिस विसरे नाही गत होवे नानक तिस लग पाए। आसा मैला पंजवा जा कै सिमरन सुख निवास तई कल्याण दुख होवत नास। अनद करो प्रभु के गुण गावो सतगुर अपना सब सदा मनावो रहाओ। सतगुर का सत शब्द कमावो फिर कर बैठे प्रभु अपना पावो। पर का बुरा न राखो चीत तुमको दुख नहीं पाई मीत। हर हर तंत मंत गुर दीना इन सुख नानक अन्न।

हुकुम तुम्हारे दर्शन मांगो दे प्यारे तुम्हारी सेवा कौन कौन ना तारे राव जाके निकट न आवे कोई सगल सृष्ट पुआ के चरण मल धोई जो प्राणी काहू ना आवत काम संत प्रसाद का को जपिए नाम साध संग मन सोवत जागे अब प्रभु नानक नीचे लागे आसा मेला पन्नवा एको एक ही नैन निहारो सदा सदा हर नाम समारो।

के सूत्र होई कट कट अंतर रहया सोई ओ पत पर लो खिन में करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण करावन अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी। आशा मेला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दुर्लभ देह जीती नहीं हारे किलबिक बिना से दुख दर्द दूर पै पुनीत संतन की तूर रहाओ प्रभ के संत उदाहरण जोग इस पेटे जिस पुर संजोग मन आनंद मंत्र गुर दिया कृष्ण बुझी मन ने चलती नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध नानक गुरते पाई।

से पै मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ। बिन सो मन का मूर्ख टीठा प्रभ का पावना लागा मीठा। गुर पूरे के चरण गए कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म इव सफल भया कहू नानक प्रभ करी मया।

संग चारे जाग रे मन जागन हारे बिन हर अवर नाव सुका मा झूठा मो मिथ्या पसारे राव गुर की बाणी स्यो रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा नाही थाओ गुर दाता गुर देवे नाओ गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पैर नानक गुर जाप आसा मेला पंजवा आपे पेड़ विस्थारी साख अपनी खेती आपे राख जत कत पे खोए कै ओही कट कट अंतर आपे सोई राव आपे सूर किरण विस्थार सोई गुप्त सोई आकार सर गुण निर्गुण था पैनाओ दो मिल एक कै कीनो ठाओ कहो नानक गुरु परम को खोया अनुज रूप सब नैन अलोया आसा महला पंजवा

रहाओ। मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संयम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा महला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन दया।

मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुरु मंता। सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ करोए, कहो नानक।

जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ मोह परम बोह जोन को आया अस्थिर भगत हर चरण से आया बंधन अंग कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहु नानक जो प्रभ शरण आये इहा सुख आगे गत पाए आसा मेला पंजवा तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे।

तू मेरी गत पथ तू करवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अन दिन जपो नाम गुण खास, नानक की प्रभु पै अरदास, आसा मैला तन्यवा। रोवन हारे झूठ कमाना, हस हस सोग करत दे गाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवे को हस हस पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँचना मुका फिर पछताना, त्रयो गुण में वर्ते संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म ता।

निसारे हो, खिसर गयो पूम पर डारे हो, साध मोहिला दी अंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे, नानक मेली सिरजन हारे, आशा मेला पंजवा, चरण कमल की आस प्यारे, जम कम कर नस गए विचारे, ऊचित आवे तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया, रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को, पहुँच न साके जन तेरे को, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय में दी जय, आशा मेला पंजवा, मन तृप्ता नो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद तली बनी, जा के गृह सब किछ है, पूरन सो पेटिया निरपैतनी रहाओ, नाम दृढ़ाया साध कृपाल।

तो जन पूरन रहे अघाई, कछु न थोड़ा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाका तनी अगम गुसाई।

अचित रहन बिहानी अनिक रंग माया के चितवत कबू न सिमरे सारंग पानी रहाओ द्रुम की छाया नहीं चल गृह बांधिया काल के फांस सकत सर सांधिया बालू किनारा तरंग मुख आया सोथान मूड नहीं चल कर पाया साध संग जप्यो हर राय नानक जीवे हर गुण गाए आसा मेला पंजवा दो तुके नावा उनके संग तू करती केल उनके संग हम तुम संग मेल उनके संग तुम सब को लो रहे।

सहारे उनके संग तू रखी पलोल उस बिना तू छुटकी रोल उनके संग तेरा मान महत उनके संग तू साख जगत उनके संग तेरी सब बिथाटी उस बिना तू हुई है माटी ओ बैरागी मरे न जाए हुक्मे बादाकार कमाए जोड़ बिछोड़े नाम खाप अपनी कुदरत जाने आप आसा महला पंजवा ना ओ मरता।

हमको कृष्णा जय ओ निर्मल का हम जतना हम किच नाही एक ओही आगे पाछे को सोई नानक गुरु खोए परम पंगा हम ओए मिल होए इकरंगा आसा महला पंजवा अनेक पांच कर सेवा करिए जियो प्राण तन आगे करिए पानी पखा करो तज अभिमान अनेक बार जाइए कुर्बान सरई सुहागण जो प्रभु पाई तिसके संग मिलो मेरी माई रहाओ दासन दासी की पनहार उनकी रेण बसे जी नाल माथे पाग तो पावो संग मिले स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब ने मां कर्म कर्म अर्पो सब हो मां गर्भ मोह तज हो वो देन उनके संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही आराधो दिन सरेण ए सेवा साधो कहे कृपाल गोपाल गोविंद साध संग नानक बख्शिंद आशा मेला पुण्यवा प्रभ की प्रीत सदा सुख होए प्रभ की प्रीत दुख लगे न कोए प्रभ की प्रीत हो मैं नल खोए।

प्रतपाले प्रभ आप कट कट सारी है, जिस मन उठा आप किस ना विसारी है, जो किस करे सो आप आपन पाणिया, भगतां का सहाय जुग जुग जानिया, जप जप हर का नाम कदे ना चूरिए, नानक दर्श पिया।

पुरख बिराते हैं, बहुर बहुर जन्मा दे जो पयो कृपाल, दीन दुख पंजन तो गुर मिल सब सुख लादे, कहो नानक।

जन्म मरण दुख लाथे, रहाओ दूजा पासा मेला पंजवा। निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, करी मोत रंग माने फिर बोर बोर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया, रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो।

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे।

मोकुटंब बिखे रस्मा से मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतिया।

चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाहे नानक तप्त हरि मिले प्रेम प्रिय आशा महला पंजवा गुरे दिखायो लोए ना रहाओ ईते ऊते कट कट कट कट तू ही मोहिना कारण करना कारण करना एक है सोहिना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोएना आशा मेला पंजवा हर हर नाम अमोला ओ सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ न जाए ओ अगे अतोला प्रीतम पाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक इहो हर का चोला आसा मेला पंजवा अपनी भगत निवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ।

आया गुण रस रस गावे, एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे, दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे। आशा महला पंजवा, एक सिमर मन मानी रहाओ, नाम ते आवो हृदय बसावो, तिस बिन को नाही, प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये, सगले दुख जाही, जीवन को दाता पुरख विदाता, नानक कट कट आही। आशा महला पंजवा, हर बिसरत सो

सर्व फल पावे सो जन सुखिया हुआ। राज कहावे हो कर्म कमावे बांध्यो नलनी प्रमसुआ। कहो नानक जिस सतगुर भेटिया सो जन ने चलसिया। आसा मेला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। ओह नियो नवेला अपने प्रीतम स्यो लाग रहे रहाओ। जो प्रभ पावे जन्म न आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत रचे। प्रभ संग मिली जय इहो मन दी जय

माए प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संजम कर थाके नानक साध शरण प्रभ संग वसे आसा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। विकार माया माद सोयो सूझ बूझ न आवे पकर केस जम उठारियो तद ही कर जावे लोभ बिखिया बिखे लागे हिरवित चित दुखाही खिन पंगुना के मान माते असुर जाने नाही रहाओ। वेद शास्त्र जन पुकारे सुने नाही डोरा निपट बाजी हार मुका पछतायो मन पोरा दान सगल गैर वजे परया दीवान लेखे ना परया जे कारज रहे ओला सोए कामना करया ऐसो जग मोहे गुर दिखायो तो एक कीरत गाया मान तान तज

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना कै चरण लाग प्रभु गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरन भाग आसा मैला पंजवा हर्ष शोक बैराग आनंदी खेल री दिखायो रहाओ खिनहु पै निरपै खिनहु।

गोविंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कहया सो चित धर हां, हम स्यों तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ, पंकज मोह सर हां, पग नहीं चले हर हां, गह दियो मूड नर हां, अनन उपाव कर हां, तौ निकसै शरण पैरी सखी, थिर थिर चित थिर हां, बन ग्रहो समसर हां, अंतर एक तिर

मना रहाओ। टूटे अन परानहा रवयो सर्व थानहा लहो जम पयानहा पायो पेड़ थानहा तो चूकी सगल कान।

तिस निकट ना कदे दुख हा, जो हर हर जस सुने हा, सबको तिस मने हा, सफल सो आया हा, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला पंजवा। मिल हर जस गाये हा, परम पद पाये हा, उआ रस जो बिदे हा, ताको सगल सिदे हा, अन दिन जा गया हा, नानक बड़ पा गया।

हर नाम जिन लए हर तज अन लगे हां जन्मे मर पगे हां हर हर जन लहे हां जीवत से रहे हां जिसे कृपाल होए हां नानक भगत सोए।

अब घट सरवर नावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, परपुर तार रहा सब ठौरे, रहाओ सच व्रत नेम न काल सुनतावे, सतगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच

सिरत विभूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारसारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मत एक भाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार कमाई खसम रजाए, अवगत नाथ न

उजड़ पर मैं रहे न पाई, बिन बूझे को थाए न पाई, नाम बिहुने माथे छाई, साथ तनी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मुहे बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पे उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुरु सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए।

अतत कसो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साथ सबे सुख नाला, नजर करे राखे रखवाला, त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूजे सच समावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारन हारा।

जम्मन मरना हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवरना पाल हालत पलत निभी तुझ नाल शब्द मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप।

जग पंडित बिरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरे अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी भोगी गुण रोए। जग उपजे बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझे सोए। महगो मोल पार अपार, अटल अछल गुरमति तार। पाए मिले पावे पैकार, नानक नीच कह।

जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरना गुर बोहित शब्द पै सरना निरपो आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सोपो कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म तर्म बहु संख असंख बिन पै भक्ति जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप सृष्ट उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पखे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक जल

कर शिव सहज कर गुर करतार आसा मनसा शब्द जलाए राम नारायण कहे कहाए गुर ते वाट महल कर पाए।

पांच अकूट पंच तीन नव चार समावे, तरण गगन कल तार रहावे, बाहर जातो उल्ट करावे, मूर्ख होए ना आखी सूजे, जेवा रस नहीं कहया बूजे, बिखका माता जग स्यों लूजे, उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को पावे अवगण तोवे।

गुरमुख राम नाम तृप्ता से खोजत पावो सहज हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लब लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द।

नानक हर जन के दासन दासा। आसा मैला पहला तन बिन से तन का को कही है, बिन गुरु राम नाम कत नहीं है। राम नाम तन संग सिखाई, एनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा, सुख दुख सम कर नाम न छोड़ो। आपे बक्स मिलावन हारा रहाओ, कनक कामनी हेत गवारा। दुबदा लागे नाम विसारा, जिसको बक्से नाम जपाए, दूत ना लाग सके।

अवरना औषध तंत न मंता, हर हर सिमरन किल विखानता, तू आप पुलावे नाम विसार, तू आपे राखे कृपा धार। रोग परम पेद मन दूजा, गुर बिन परम जपे जप दूजा, अमृत पुरख गुर दर्शना देखे, विन गुर शब्द जन्म के लेखे, देख अचरज रहे विस्माद, कट कट सुर नर सह समाद, पर पुर पार रहे मन माही, तुम संसार अवर को नाही, जाके भगत हेत मुख नाम, संत भगत की संगत राम, बंधन तोरे सहज ध्यान, छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान, ना जम दूत दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त पए हर रंग, आस्था महला पहला इक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने, राम जपो मेरी सखी सखेनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म तर्म हो किया, बंधन पुत कल

सास संचय तन जाए बिन हर भगत न कविताए बंधन वेद बाद अंकार बंधन बिन सह मोह विकार नानक राम नाम शरणाई सतगुरु राखे बंद ना पाए।

जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर से सिर काती मुनियन गल विच आवे तूर महला अंदर होंदियां हुण बहन ना मिलन हदूर।

तीन गल सिलका पाया टुटन मोक्षरिया तन जोबन दोई वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पट गवाए जे तिस पावे दे।

दुख जो तिस पावे सो थिए, नानक क्या मनुख आसा मेला पहला। कहां सो खेल तबेला कोड़े, कहां पेरी सहनाई। कहां सो तेग बंद गाडे रड़, कहां सो लाल कवाई। कहां सो आरसिया मो बंके, एथे दिसे नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई, एक कड़ी में थाप उठापे, जरवंड देवे पाई। राव कहां सो करदर मंडक महला, कहां सो बंक सराई। कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेत नींद ना पाई। कहां सो पान संगोली हरमा।

ओनी तुपक तावन चलाई, ओनी हस चिड़ाई, जिनकी चीरी दरगे पाटी, तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी, पटियाणी ठकुराणी, इकना पेरण।

कोई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे ओसनो तुम

न होई जे चलदा ले चलिया किछ संपै नाले ता तन संचो देख के बूझो बिचारे वणज करो मकसूद ले हो मत पछोतावो अवगुण छोड़ो गुण करो ऐसे तत् परावो धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किस कमावो।

पर पंडित पांदे जोए सी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जाननी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थवासा।

बिन गुर शब्द ना छूट ही प्रम आवे जावे। एक गिर ही सेवक साध का गुरमती लागे। नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत सो जागे। गुर ते दर कर जानिए।

जय गुरमुख नाम ते आई है मन मंदिर पी जय रहा कूड़ा लालच छोड़िए तो साच पछाने गुर के शब्द समाये परमार्थ जाने यो मन राजा लोभिया लुभ तो लोभाई गुरमुख लोभ निवारिय हर्षो बने आई कलर खेती बीजिए क्यों लाहा पावे मन मुख सच ना पी जई कूड़ कूड़ गडावे लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी साचो साहिब मन वसे हो मैं बिखमारी दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई एनस नाम सलाहिए सतगुरु शरणाई मन मुख पत्थर सैल

हुक्मे ही सिर मार बंदर वाणी है, लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही, नानक मंगे सच गुरमुख कालिए।

मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है। आसा मैला पहला क्या जंगल टूटी जाए मैं कर बन हरियावला। सच टिकै कर आए शब्द उतावला। जै देखा तह सोए अवर न जानी है। गुर की कार कमाए महल पछाणी है। रहाओ आप मिलावे सच ता मन पावे।

परछाई गुर बिन किने न पायो के ती कह कहाए अलप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए मन मुख जे समझाए पी उजड़ जाए बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए जन्म मरे परमाई है।

जिस पाप कर आए नानक सिर दे छूटिया दरगे पत पाए। आसा मेला पहला रूड़ो ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी वड्डे पाक सतगुर मिले पाईए पद निर्वाणी।

आप गया सोजी पई गुर सब्दी मेला रहाओ। हौ मैं गर्भ गवाये पाये विचार, साहिब से मन मानिया दे साच आधार। एन इस नाम संतो किया सेवा सच्चाई, ताको बिघ्न न ला।

अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई, तिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुकम संजोगी आया चल सदा रजाई, औगुण आरे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मैला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया, लोकां दा क्या जाए जा कुद पाणिया। जो लग जियो प्राण सच दियाई, लाहा हर गुण गाए मिले सुख।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दर गए नाम हदूर गुरमुख जान सी, वेला सच परवान शब्द पछाण सी, सत संतोख।

अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सासत वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत।

ताके रूप न जाही लखणे क्या कर आस विचारे। तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने। कर्म होवे ता परम पद पाये कथे अकथ कहानी। तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी। जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाने। नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आवन जाने। जात दुपावे ता गुरमुख बूझे।

गुर सेवा के सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवड पागी जे गुर सेवा लाए, अंगिन पगत सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए।

सोई सतगुरु नाम बुझाया बिन नामे भुख न जाई नामे तृष्णा अग्न बुझे है।

कर कृपा नाम मनवसाए, एहो सिर दी जय आप दवाए, हुक्मे बूझे सदा सुख पाए, आप करे तैं आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मार्ग पाए, सच्चा शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मनमुख मोहे परम पुलानी, बिन नामे सब फिरे बोराणी, तीन पवन में एक काम आया, मूरख पर दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख समाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा शब्द विचार, अंधन पोगे हूं मैं मार, सहज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार, हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जब पढ़िए हूं मैं मार, हर जपिए पै सच प्यार, नानक नाम गुरु।

गुर ते कर दर पाया भगती परे पंडारा, गुरमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरमुख परत सलाह है अंतर शब्द अपारा, गुरमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरमुख हो मैं मारिये मन निर्मल होई, सत गुर मिले आप गया त्रिभुवन सो जी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मिलाई, पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई, पूरा सतगुरु ता मिले जा नजर करे, किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होए, अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाए, नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाए, आसा मैला तीजा सुन मन मन वसाए, तू आपे आए मिले मेरे भाई, अंदिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई, एको नाम त्याए तू सुख पावे मेरे भाई, हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ, इस भगती नो सुर नर मुंजन लोच दे, विन सतगुर पाई न जाए, पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए, आपे थे सब रखियो ने किस कह न जाई, आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे सबना का सोई, मंदा किसनो आखिए जे दूजा होई, इको हुक्म वर्तदा एका सिरकारा, आप वाली दितियन अंतर लोग विकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा, भगत भी ओना नो बख्शियन अंतर पंड

सोई कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वस ना आवनी नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा करे अंदर सब वस है बाहर किछ नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरे।

पंडारा। अंदर महल अनेक हैं, जियो करे वसेरा, मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए न फेरा। पार किया वक्त कमाल लई, गुरसो जी होई, नाम पदार्थ अमूल सा गुरमुख पावे कोई। बाहर पाले तो क्या लहे, वक्त करे अंदर भाई, पर में पूला सब जग फिरे, मनमुख पत जो आई। कर दर छोड़े अपना, पर कर झूठा जा।

अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई, आपे दान करे किस आखिए आपे दे बुझाई। नानक नाम से आए तू दर सच्चे तो बापाई। आसा महला तीजा, आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई, हर रस चाखिए मुक्त भये जिना साचो भाई। हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा, गुरमती साला ये बिखिया माए उदासा रहाओ। बिन शब्द आप न जापई सब अंधी भाई, गुरमती कट चानना नाम अंत सखाई। नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा। नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई। नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई। बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई, जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई। नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई, नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई। जिसनो देवे तिस मिले गुरुमती नाम बुझाई, नानक सब किछ नाम।

का बोले नान वे दूजा पाव सुहाओ क्यों मनुआ क्यों करवत आवे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ सोहागणी आप सवारियों ने लाए प्रेम प्यार सतगुर के पाने चल दिया नामे सह शिगार सदा रामे फिर अपना सच्ची सेज सुवाए फिर के प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार सासब राई सुंदरी फिर कहे प्यार सोहागणी विच रंग रखियो न सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सोहागणी सिगार बनाया गुण का गलहार प्रेम पिरमल तन लावना।

सोए, ऐथे कर कर जाप दे आ गए जुग जुग प्रगट होए। ए मन रूड़े रंगुले तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूड़ी बाणी जे रपे ना इह रंग लह ना जाए। रहाओ हम नीच मैले अत अभिमानी, दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल जोत अपार। बिन गुर कोई ना रंगी है, गुर मिले रंग चढ़ाओ, गुर कै पै पाए जोरते सिफ्ती सत समाओ। पै बिन लाग ना लग गई ना मन निर्मल होए,

सच सुवाए, बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पस्तोर, जिनकी तेत से न जाननी बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाजे।

मेल लै एक दरगे मार कडे कूड़ियार, एक तुर पवित पावन है तुझ नामे लाए, गुर सेवा ते सुख उपजे सच्चे शब्द बुझाए, एक कुचल कुचील विखली पते नामो आप खुआए, ना ऊन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिरे उत्वताए, नदर करे जिस अपनी किसनो पावनी लाए, सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए, लेखा पढ़ना पहुँची है कछ कहने अंत न पाए, गुरते कीमत पाई है सच शब्द सोजी।

हथ निर्मल मन वसाए, सुहागणी सदा फिर पाया हूँ मैं आप दुआए, फिर सेती अम दिन गह रही सच्ची सेज सुपाए, मेरी मेरी कर गए पल्ले किछ ना पाए, मैल नाही दुहागणी अंत गई पछताए, सो फिर मेरा एक है एक क्यों लिव लाए, नानक जे सुख लो।

मन सदा हरि आवला सहजे हर गुण गाए राव मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिना पिरका स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरमुख बीजे सच जम्मे सत नाम व पार जो इतला है लायन भगती दे।

जिन्ना तिर रावया अपना तिना विटो बल जाओ सदा तिर कै संग रहे विचों आप गवाए तन मन शीतल मुख उजले फिर कै पाए प्यार से सुखाली फिर

गया सफल जन्म हमारा, नाम नवे निज पाया परे अकुट पंडारा, आवे इस राशि के व्यापारिये जिना नाम प्यारा, गुरमुख हो वे सो तन पाए तिना अंतर शब्द विचारा, भगति सार न जाननी मनमुख अहंकारी, तुरु आखो आयन जुए बाजी हारी, बिन प्यारे भगत न हो वही ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है।

अन रस में पोलाया बिन नामे दुख पाए, सतगुरु पुरख ना पेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साध पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए, रहाओ इस जुग में गुरुमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनार, बिन नावे सुख न पाईए ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करे सिगार, अंदिन सदा जल्दिया फिरे सेजे रवे ना पतार, सुहागणी महल पाया विच्चों आप गवाए, गुर शब्दी सिगारिया अपने सहलैया मिलाए, मरना मनो विसारिया।

आप संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रहाओ, दर्शन की प्यास कणी चितवत अनेक प्रकार, करो अनुग्रह पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार। मन परदेसी आया मिलियो साध के संग, जिस वखर को चाहता सो पायो न मैं रंग, जेते माया रंग रस बिनस जाए खिन माहे, भगत रते तेरे नाम स्यों सुख पुंचे सब ठाए। सब जग चल तो पेखी है नेचल हर को नाओ, कर मित्राई साध त्यों नेचल पावे ठाओ, मीत साजन सुख

जुग जुग रही समाए, जो तुद पावे सो पला प्यारे, तेरी अमर रजाए, नानक रंग रते नारा।

गोविंद गर्व पया कर पांडे जिन आवी साजी चारण वाह तही किया कगे काल सेवक जे काले शब्द गुरु के लाग रहे बुरा पला जे समकर जाने इन विद साहिब।

पंडित आप सिया छछ छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम होआ परम उपाय पुलायन आपे तेरा कर्म होआ तिन गुरु मिलिया जज्जै जान मंगत जन जाचे।

हारो अपना पाज पड़ो तुम हर सरना ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा सही जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी जो किछ होआ सो सब चलना तिसे सिरेवो ता सुख पावो सर्व निरंतर रव रहा।

गुरमुख आखे गुरमुख बूझे गुरमुख एको जाने रारे रव रहा सब अंतर जेते किए जनता जंत उपाए तंदे सब लाए कर्म हुआ तिन नाम लया लल्ले लाए।

पाकड़िया बब्बे बूजे नाई मूड़े परम पुले तेरा जन्म गया अनहोंदा नाव तरायो पांदा अवरा का पा।

राम पछाता निर्गुण राम तिन्नी बूझ लिया तेरा अंत न जाई लखिया अकथ ना जाई हर कथिया नानक जिनको

तन पिरे मेला होए स्वामी, आप प्रभ कृपा करे, सेजा सुहावी संग पिर के सात सर अमृत भरे, कर दया मया दयाल साचे, शब्द मिल गुण गावो, नानका हर वर देख बिगसी, मुंद मन उमाहो, मुंद सहज सलोनड़िए, एक प्रेम बिनंती राम, मैं मन तन हर भावे, प्रभ संगम राती राम, प्रभ प्रेम राती हर बिनंती, नाम हर कै सुख वसे, तो गुण पछाणे ता प्रभ जाने, गुणे वस अवगण नसे, तुद बाज एक

जप तप कर कर संयम थाकी, हठ निग्रह नहीं पाइए, नानक सहज मिले जग जीवन, सतगुर बूझ बुझाइए। गुर सागरो रत्नागर, तित रत्न कणे रे राम, कर मज्जनो सप्त सरे, मन निर्मल मेरे राम, निर्मल जल नाए जा प्रभ पाए, पंच मिले विचारे, काम क्रोध कपट बिखिया तज।

सच साहिबो आद पुरख अपरम परो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने।

सुरत मुक्त क्यों पाये, नानक गुरमुख शब्द पछाणे, एहनिस नाम ते आये। मेरा मनो मेरा मन मानिया, नाम सखाई राम, हो मैं ममता माया संग न जाई राम। माता पित पाई पुत चतुराई,

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम अवगुण मेट चले।

ते कबहु ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेड़ ना आवे जमन मरण तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पा।

हर दरगे मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाणे ओह नव निध पावे, गुरमत हर त्यावे नित हर गुण आख वखाणे। एनस नाम तिसे का लीजे, हर उत्तम पुरख प्रदान जियो।

साचा साहिब मन वसै की फासे जम जाले राम। मछली विचुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्दिक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया।

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलियो जन्म सवाया। दूजड़े कामन परम पुली हर वर न पाए राम, कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी अवगुणवंती चूरे, अपना सतगुरु सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए, नानक बिन नावे कामन परम फुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामन जानिया गुर मेल मिलाई राम, अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई, सहजे हर रस चाख्या मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने। सच्चे शब्द सुवाख्या पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई नानक बिन भक्ति जग बौराना। सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन आनंद भया, हर जियो मेल प्यारे राम। सा तन हर कै

भगत पाव इहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कह नानक जिस करे कृपा सो हर भक्ति चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर

गुरमुख हुकम पछाणे, जिन हुकम पछाता हरि केरा, सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी, अन दिन हर लिवलावे। जै जै मन तू तावदा, तै तै हर तेरे नाले, मन स्याणप छोड़िए,

नानक मन तन अर्प गुर आगे जिस प्राप्त सो पाए। रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडार।

जगत निस्तारा राम नाम वडियाई, कलयुग राम नाम बोहे था गुरमुख पार लंघाई, हलत पलत राम नाम सुहेले गुरमुख करनी सारी, नानक दास दया कर देवे राम नाम निस्तारी। रामो राम नाम जपया दुख के लिए नाश गवाया राम, गुर परचय गुर परचय।

रोम रोम रोम में मैं गुरुमुख राम से आए राम, राम नाम से आए पवित्र होए आए तिस रूप न रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाए, मन तन शीतल सिगार सब होआ गुरमत राम पर गाता, नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम विसारिया ते मन मुख मूड अपागी राम, तिन अंतरे मोह व्यापे खिन खिन माया लागी राम, माया मल लागी मूड पै अपागी जिन राम नाम नह पाया, अनेक कर्म करें अभिमानी हर रामो नाम चुराया, महा बिखम जम पंस दुहेला कालू खत मोह अंधियारा, नानक गुरुमुख।

दुख बिनाशन पति पावन हर नाम जियो। हर सेवा पाई परम गत पाई हर उत्तम हर हर काम जियो। हर उत्तम काम जपिए हर नाम हर जप

हर जपिए आसन राम जियो, हर हर करता दुख बिनासन, पतित पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सतगुरु पाए जियो, गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए, हर जपते सुनते दुख जाए जियो। हर हर नाम जपिया।

सुर लिख पाए जियो। हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम, हर जपिए सतगुर पाए जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई, प्रम चूका आमन जान जियो।

हर नाम सिखाई हर दरगे पावे मान जियो सतयुग सब संतोख शरीरा पग चारे कर्म ध्यान जियो तेता युग आया अंक।

कल जुग हर किया पग त्रै किया पग चौथा टिके टिकाए जियो गुर शब्द कमाया औखद हर पाया हर कीरत हर शांत पाए जियो हर कीरत रुत आई हर

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखन हम तारो, सद लेवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो। जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ।

मन नाम जपाना हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जग मरण ना पाया, निक आप लुकाया, मत जम पकड़े।

जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया जन उबरे हर हर ध्यान जियो हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पैदे जान जियो हर दरगे पैदे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवे दुख में ते हर नामे नाम समाया हर

जो हर हर नाम से आएंगे तिन जम नेड़ न आवे, जन नानक को हर कृपा कर, नित जपे हर नाम करावे। जिन्नी गुरुमुख नाम से आया।

रूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते जल संग्राती माछली नानक हर माते चात्रिक जाचे बूंद जो हर प्राण अधारा राम राजे माल खजी ना सुत प्रात नीत सबू ते प्यारा राम राजे सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानी है हर सास गिरास न बिसरे कबहू गुर शब्दी रंगमानी है प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मन ओरथो पूरा राम राजे ताथी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला सुख सहज आनंद कनेरे पतित पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मन ओरथो पूरा आसा महला पंजवा संत कर सेवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक जा को पय कृपाल प्रभ हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों पेटक साथ संगात संत जल दूध न्याई रीत अब दूध आत नहीं मन ऐसी प्रीत हरे अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे तरे खिन नाहे तरी है प्रीत हरी है सिगार हगरस अर्पिय जह दूख सुनिए जम पंथ पणिये तह साध संग ना डरपिय कर कीरत गोविंद गुणिये सगल प्राचत दुख हरे कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर इक खिन भी ना दीरे मन ऐसा निहो करे हो जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो हर प्रीत करी जय इह मन दी जय अकलाय चित मुरारी मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी गुर सो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो चकवी सूसने हो चितवे आस पणी कर दिनियर देखिए कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए हर प्रीत करी जय मान न की जय इक राशि के हम पाहुणिया अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावणिया फिर साधु सरणी पड़िए चरणी अब टूटस मोह जो किती है कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय जैसी तरण पतार उर्जी तिरह सिवे यो मन लाल दी जय मन लाले दी जय पोक करी जय हब खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने गुरथी आसाखी ता डिठम आखी फिर जेहा अवर न दिसे कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय आसा महला पंजवा श्लोक बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जग हर पाया मन माहे छंत जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना कर गवन बसुदा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते कोट विषम अवतार शंकर जटाकार चाहे तुझे दयार मन तन रुच अपार अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी सुर सिद्ध गण गंधर्व से आवे जप किन्नर गुणपनी कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार कोट देवी जा को सेवे लक्ष्मी अनेक पाप
गुपत प्रगट जाको अरादे पौन पानी दिन सुरात। नक्षत्र ससियर सूरत आवे बसद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे। सिमरत पुराण चतुर्वेद खट शास्त्र जाको जपात पतित पावन भगत वछल नानक मिलिए संग साथ। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवे तेती न जाय गनी। अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा। वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी त्यो दान मान नानक पाए शीश सादे तर चरनी। ऐसा मेला धन्यवाद श्लोक। उद्दम करो वड पागियो सिमरो हर हर राय नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए। संत नाम जपत गोविंद ने अलसाई है पेट साधु संग जमपुर ने जाइए। दुख दर्द ना कहो व्यापे नाम सिमरत सब सुखी सास सास आराध हर हर त्याए सो प्रभु मनमुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाइए नानक प्रेम पे चरण जमपे नाम जपत गोविंद ने अलसाइए। पावन पतित पुनीत नाम निरंजना परम अंधेर विनाश।

सूर्या अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नाम स्वयं पै चरण जम पै पावन पतित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोय आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरन हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुत तरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नानक पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया जय जय संत अराधे तै तै प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुभाये भगत कार्य सारया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारया चमत्कार प्रगास देह दिस एक तह दृष्टाया नानक स्वयं पै चरण जम पै भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया आसा महला पंजवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जहाँ कह गए हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर देह दिस पूरन सब सदा प्राण पत गत मत जाते प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरबचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा को राम पतार का कह अनुद घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु वचन जाने जाको राम पतार का अनद घना आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप से आगी है तज आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु वचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूरन आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन लागया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्यागया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु वचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर हर

छंते। मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो, बिनो करो कर जोर हर हर नाम दे हो। हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया। कतहु न तावो शरण पावो, करुणा में प्रभ कर मया। समरथ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी, बिनो एहो कर जोर नानक दान मांगे, जन्म मरण निवार ले हो। अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच, सठ कठोर कुलहीन व्यापत मोह कीच। मल परम कर्म अहं ममता, मरण चीत न आवे। बनता विनोद आनंद माया, अज्ञान तालप तावे। खिसै जोबन बलै जरुआ, दिन निहारे संग मीच। बिनवंत नानक आस तेरी, शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहो ते संग मीठे पोग सोन। प्रमत पार अगमत आयो, बहु परदेश पायो। अब ओट तारी प्रम मुरारी, सर्व सुख हर नायो। राख महारे प्रभ प्यारे, मुझते कछु न हुआ होन। सुख सहज आनंद नानक, कृपा तेरी तय पौन। नाम तारी उधारे पगत संसा कौन। जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बानी पुरुष ज्ञानी, मन निधाना पावे। हर रंग राते प्रभ विधाते, राम के गुण गावे। बसुद कागद बन राज कलमा, लिखन को जे होए पवन। बेअंत अंत न जाए पाया, गई नानक चरण शरण। आशा महला पंजवा, पुरख पते भगवान ताकी शरण गही। निरपो पे प्राण चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन, इष्ट बंधक जानिया। गय कंठ लाया गुर मिलाया, जस विमल संत वखाणिया। बेअंत गुण अनेक महिमा, कीमत कछु न जाए कही। प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर, ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाय आप भये, राम नाम उरहार बिक के दिवस गए। गत परम मोह विकार बिन से, जोन आवन सब रहे। अगन सागर पै शीतल, साध अंचल गह रहे। गोविंद गोपाल दयाल समरथ, बोल साधु हर जय जय। नानक नाम त्याय पूरन, साध संग पाई परम गते। जय देखो तय संग एको रव रहा, कट कट वासी आप विरले किने लया। जल कल मैयल पूर पूरन कीट हस्त समान्या। आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जान्या। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला, गोविंद गुण निर्जन कहा। सिमर स्वामी अंतर जामी, हर एक नानक राव रहा। दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे। चरण कमल संग प्रीत कलमल पाप तरे। दुख पूख दरिद्र नाथे, प्रगट मग दिखाया। मिल साध संगे नाम रंगे, मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन चुपुन्नी, पुल संभुआ सब तरे। दिन श्रेण आनंद अंदिन, सिमरंत नानक हर हरे। आशा मैला पंजवा, छंत कर सतवा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद श्लोक। शुभ चिंतन गोविंद रमन, निर्मल साधु संग। नानक नाम न विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत छंत। पिन्नी रैनड़िये चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरे अंजनो। चरण कमल ध्यान हृदय, प्रभ विसरना ही किनो। तब मान मोह विकार मन का, कलमला दुख जारे। बिनवंत नानक सदा जागे, हर दास संत प्यारे। मेरी सेजड़िये अडंबर बनिया, मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया। प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी, चाव मंगल रस भरे। अंग संग लागे दुख पागे, प्राण मन तन सब हरे। मन इच पाई प्रभ त्याई, संजोग सा शुभ गणिया। बिनवंत नानक मिले श्री पर, सगल आनंद रस बनिया। मिल सकिया पुछे कहो कंत निशानी, रस प्रेम परी कछ बोल न जाने। गुण गुड़ गुपत अपार करते, निगम अंत न पावे। भगत पाए ते आए स्वामी, सदा हर गुण गावे। सगल गुण सो ज्ञान पूरन, आपने प्रभ पानी। बिनवंत नानक रंग राती,
प्रेम सहज समाने सुख सोए लड़े हर गावन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे

आप कृपा कारिया, हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया। शुभ दिवस आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन पागे। आशा मैला कंजवा उठ वंज बटा उड़िया, तै क्या चिर लाया मोलत कुंडिया, कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया, तो माया करे पाप अमित्या, तन पसम तेरी जमे हेरी, काल बकड़े जितया।

नै अंत जाई पाया, बिन वंस नाम सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया। नरक ना दिखड़िया सिमरत नारायण, जय जय धर्म करे दूत पहे पलायन। परम तीरज सह सुखिए साथ संगत हर पजे, पर अनग्रो राख लीने मोह ममता सब सजे। गय कंठ लाए गुर मिलाए गोविंद जपत अघायण, बिन वंस नाम सिमर स्वामी सगल आस पुजायन। निध सिद्ध चरण गहे ता के हाकारा, सब किछ वस जिसे सो प्रभु असारा। गह पुजाली ने नाम जी ने कर पार मस्तक राखिया, संसार सागर नह व्यापे अम्यो हर रस्ता क्या। साध संगे नाम रंगे रणजीत वड्डा अखाड़ा, बिन वंश नाम सर्व स्वामी बहुड़ जमना उपारा।

साथ है संग देखे करणहारा काय पाप कमाइए सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है पद साध संगत सदा नानक मिटे दुख कमाते वल वंश कर उधर परे मूर्ख गावारा सब किस दे रहा हर देवन हारा दातार सदा दयाल स्वामी काय मनो विसारी है मिल साध संगे पद निसंगे कुल समूह आतारी है शिव साधक देव मुंजन भगत नाम आधारा बिनवंत नान सदा तजी है प्रभ एक करने हारा खोट न की चई प्रभ परखन हारा पूर कपट कमाऊ गड़े जन्म है संसारा संसार सागर तिन्नी तरिया जिन्नी एक से आया तब काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरणाई आया जल फल मैयल रविया स्वामी ऊंच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा पेट हर चंदौरड़ी अब फिर किछ नाही माया रंग जेते से संग न जाही हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए हर एक बिन कछ अवर नाही पाव दुतिया जालिए मीत जोबन माल सर्बस प्रद एक कर मन माही बिनवंत नानक वड पाग पाई है सुख सहज समाही आशा महला पंजवा चंक पर अठवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद कमला परम पीत कमला परम पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवध अकाल जात गैबर बन कोर गैबर बन कोर हे गृह मूसक मन चोर हे दिन करो अन दिन खास दिन खास जात बिहात सब बिन मिलो प्रभ करणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रेय संग बिन कछ नह गते कुल रूप तूप ज्ञान ही नी तुझ बिना मोहे कौन मात पर जोड़ नानक शरण आयो प्रिय नाथ नरहर करो गात मीना जलहीन मीना जलहीन हे ओह बिछरत मन तन खीन हे कत जीवन प्रिय बिन होत सन्मुख सहबान सन्मुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओह बेदियो सहज स्रोत प्रिय प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तन तिस बिना पलका ना लागे प्रिय प्रेम पागे चितवंत अंजन प्रमना श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंदावत आप चात्रिक चित प्यास चात्रिक चित प्यास हे तन बूंद बचित्र मन आस हे अल्पीवत बिन सतताप ताता विनाशन दुख नाशन मिल प्रेम मन तन अतकना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कौन रसना गुणपना गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जम पै पतित पावन हर दर्श ते सतमें संग

सुंदरतम ध्यान सुंदरतम ध्यान। हे मन लुबिद गोपाल ज्ञान, हे जाचिक जन राखत मान। प्रभ मान पूरन दुख विदीरन, सगल इच पूजंतिया। हर कंठ लागे दिन सुबागे, मिल नहा सेज सुअंतिया। प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी, सगल कलमल पहे हान। बिन वंश नानक मेरी आस पूरन।

इकना उसमें करे विनाश, इकना पाने कड ले, इकना माया विच निवास। ए पे आखन जाते जे किसे आने रास, नानक गुरमुख जानिए है जा को आखरे परदास पौड़ी। नानक जी उपाय कै लिखना वे तरम बहा लिया, ओ कै सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कडे जिजमा लिया। थाउ ना पायन कूड़ यार मोका ले दो जुक चा लिया, तेरे नाय रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया। लिखना में तरम बहा लिया श्लोक महला पहला, विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद, विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरे जंत। विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी, विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद साद लगे प्राणी। विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद कुख विस्माद भोग, विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रहा, विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर। वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला, कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत।

पढ़ पढ़ गड्डी लगी है, पढ़ पढ़ परिये साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डिया खात, पढ़िए जेते बर्स बर्स, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेख है एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला, लिख लिख पढ़िया ते ता पढ़िया, बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या, बहु पेक किया देही दुख दिया, सोवे जी आपना किया, अन्न न खाया साद गवाया, बहु दुख पाया दूजा भाया, बस्तर न पहरे एन स्पहरे, मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग पे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख समझे पत गवाई, गिण नावे किछ खाई न पाई, रह बिमाणी मरी मसाणी, अंग न जाने फिर पछताणी, सतगुर पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सो पाए, आस उंदे से ते ने केवल, हो मैं सब जलाए पौड़ी, भगत तेरे मन पाउन दे, दर सोहन कीर्त गाउन दे, नानक करमा बाहरे दर तो न लेनी ताउन दे, इक मूल ना बुझन अपना अनहोंदा आप गणाए दे, हो टाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जीत जैत आए दे।

मूर्त होए, नानक पाहे बारा पूरे रंग न सोए, पैर खुम चढ़ाई है शर्म पावता होए, नानक पवती जेर पै कूड़े सोए न कोई मेला पहला। लब पाप दे राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार, काम लेव सब पूछिए बह बह करे विचार, अंधी रैयत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दार, ज्ञानी नच्चे बाजे वावे रूप करे सिंगार, उच्चे कूके वादा गावे जोधा का विचार, मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार, कर्मी कर्म करे गावावे मंगे मोख द्वार, जति सदावे जुगत न जाने छड बह कर बार, सबको पूरा आपे हो वे कट ना कोई आखे, पग परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला। वदी सवज जग नाम का सच्चा वेखे सोए, सबनी चाला मारिया करता करे सोए, अग्गे जाप मजोर है अग्गे जियो नवे, जिनकी लेखे पपवे चंगे से के पौड़ी, तुर कर्म जिना को तुद पाया ता किन्नी खपन से आया, ए ना जनता।

कुदरत वस्या तेरांत न जाई लख्या रहाओ। जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर आया। तू सच्चा साहिब सवालियो जिन की तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा जो शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है। खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है। सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो। नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव दिवाता आत्मा आत्मा बास देव जे को जाने भयो। नानकता का

दुर्बिन ज्ञान न होए पौड़ी। पढ़िया हो वह गुनेगा ताओ उमी साधना मारी है, जे हाँ काले कारणा तेवे हो नाव पचारी है। ऐसी कला न खेड़ी है जित दर गए हारी है, पढ़िया अतै उमिया विचार गए विचारी है, मुझ चले सो अगे मारी है। श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाओ, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे। सब जुग रथ संतोख का कर्म अग्गे रथवाओ, त्रेते रथ जते का जोर अग्गे रथवाओ। द्वापर रथ पपे का सत अग्गे रथवाओ, कल युग रथ अगन का कूड़ अग्गे रथवाओ। महला पहला। शाम कहे सितंबर स्वामी सच में आछे साथ रहे, सबको सच समावे रिक कह रहा भरपूर। राम नाम देवा में सूर नाई ले प्राचित जाहे, नानक तो मुखंतर पाहे।

पहला पहला लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख गियां पहनामिया रात दिरस जी नाल तब कपाह पत्ती है बामन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होई पुराना सुती है पीसर पाई है होर नानक तग न टूटे जे तग होवे जोर महला पहला नाई मने है पथ उपजे साला ही सचूत दरगे अंदर पाई है तग न टूटे सपूत महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुप होवे निदारी तग न तैरी तग न अखी तग न जेवा तग न अखी वे तगा आपे वत है वर्तागे अवरागत है ले पार करे भी आहो कद कागल दसे राव सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा ना सुजान पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगे पैदा जाए सी श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर कर न जाई तोती टिक्का तय जपमाली तान मलेच्छा खाई अंकर पूजा अपने कतेबा संजम तुरका भाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले है जहां तरंगा महला पहला मानस खाने करे निवाज चुरी वगाने तिन गलताग

का कड़ी कार ऊपर आल बैठे पूड़ियार मत बिटे वे मत बिटे यो अन असादा फिटे तन फिटे फेर करेन मन जूठे चुली भरेन कहो नानक सत्य आई है सुच होवे ता सच पाई है पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंगा आपे देव दे आईया आपे ही कर्म कराएंगा वडो वडा वड मेदनी सिरे सिर कंधे लाएंगा नगर पट्टी जे करे।

गल्ला करे कनेरिया खसम ना पाए साध, आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मान, नानक जिसनो लगा किस मिला, लगा सो परवान महला दूजा, जो जी होए सो गुवे मौका कहे आवाओ।

साहिब तुख है जो मिले मेला दूजा, एक नहीं चाकरी जित को खसम न जाए। नानक सेवक काड़ी है जैसे ती खसम समाए पावड़ी। नानक अंत न जा अपनी हरता के पारा बार। आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार, इक ना गली जंजीरिया इक तुरी चढ़े बिशियार। आप कराए करे आप हर कैसे करी पुकार।

यो गुरचरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कवन काज जब उपजय बिन सह कहो मुहे समझाया देव करो दया मुहे मार्ग लावो जित पह बंधन टूटे जन्म मरण दुख फेर कर्म सुख जी जन्म ते छूटे राव माया फास बंद नहीं फारे अब मन सुन ना लूके आपा पद निर्माण ना चीनिया इन विद अभियो न चूके कहीं ना उपजे उपजी जाने पाव अपाव बिहुना उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिवलीना ज्यो प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना कहो कबीर ऐसा गुण परम पागा तो मन सुन समाना आशा गज साडे तै तै तोतिया तेरे पायन तग गली जिना जप मालिया लोटे हाथ निबग ओए हर के संत ना आखिए बनारस के ठग ऐसे संत ना मौके पावे डाला सो पेदा गटकावे रहाओ बासन मांझ चरावे।

ठगन बाबा दू किने विवेकी काटी तू राव सगल माहे नकटी का वासा सगल मार ओहेरी सगलिया की हो बहन पान जी जिने बरी तिस्केरी हमरो परता बड़ो विवेकी आपे संत कहावे ओह हमारे माथे कायम और हमरे निकट ना आवे नाको काटी कानो काटी काट तू।

पर्वत खाया कछुआ कह अंगार बेलोरो लूकी शब्द सुनाया आशा बटुआ एक बेहतर आधारी एक ओज से द्वारा।

आई, दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाई, काजी तै कमन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, तिन्हो खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिये, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाए मोह तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रही है, छाड कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचहारी।

रे बौरे तुह करी न राखे कोई, तू राम नाम जप सोई रहो, काकी मात पिता को काको कवन पुरख की जोई, हट कूटे को बात न पूछे काडो काडो होई, ब्योहरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए पाई, लख छुटकाए त्रिया रोवे हंस के ला जाए, कह कबीर सुनो रे संतो पैसा गर कहताई, इस बंदे से

इतना राक्षस माया, चिंतपवन मन परयो हमारा, नाम बिना कैसे उतरस पारा, देव विमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा, आशा

हार होगन हारे पो गया इस मूरत के मुखचार। मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने ना है, कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते 20 वर्ष तक तपना कियो, 30 वर्ष तक देव ना पूजा फिर पछताना विरध भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर शोक पुजंग बलयो, रहाओ सूखे सरवर पाल बंधावे लूने खेत हथवार करे। आयो चोर तुरंत तें ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण शीश पर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे। जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे तबरे कर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे। लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर खन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो अंतन कछु।

खान करारा पहर खवाद न की जय रे मन, सुकृत कर कर ली जय रे मन। रहाओ कुम्हारे एक जो माती गूंदी, बहु विद्वानी लाई, काहू में मोती मुक्ताहल, काहू ब्याद लगाई। तू मैं तन राशन को दिया, मुग्ध कहे तन मेरा, जम कर बंद मूंड में लागे, खिन में करे निवेरा। हर जन उत्तम पगत सदावे, आज्ञा मन सुख पाई, ज्योतिष पावे।

चिरगट फार चतारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ, रोजा तरह निवाज गुजारे, कलमा पिस्त न होई, सत्तर का बाकत ही पीतर जेकर जाने कोई। निवाज सोई जो न्याओ विचारे, कलमा अकल है जाने, पाचो मुस्

आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्तरी की माटी एक पेक तर नाना तामे ब्रह्म पछाना कहे कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना आशा जगन नगर।

साखी शब्द सुरत नहीं उपजै, खिंच तेज सब लीना। श्रवणन बिकल पे संग तेरे, इंद्री का बल खाका। चरण रहे कर तर्क परे है, मुखो न निक्षय बाता। थाके पंच दूत सब तस्कर, आप अपने प्रमते। खाका मन कुंचर उर खाका, तेज सूत तर रमते। मृतक पाए दशह बंद छूटे, मित्र पाई सब छोरे। कहत कबीरा जो हर त्याव, जीवत बंधन तोरे। आसा इक तुके चौथा, सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया। जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया, मार मार सर्पनी।

जिन साच पछाणिया तिन सरपनी काई, सरपनी ते आन छूछ नहीं अवरा, सरपनी जीती कहां करे जमरा। ए सरपनी ताकी कीती होई, बल अबल क्या इस्ते होई, ए बस्ती का बस्त शरीरा, गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा। आशा कहां स्वाम को सिमरत सुनाए, कहां साकत कह हर गुण गाए, राम राम राम रमे रम रही है, साकत सो पूल नहीं कही है रहाओ। कौआ कहां कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पियाए, सत्संगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत स्वान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, अमृत ले ले नीम सिंचाई, कह कबीर ओआ को सहज न जाई। आशा लंका सा

तरवर ब्याई, देखत कुतरा ले गई बिलाई, तले रे बैसा ऊपर सूला, इसके पेड़ लगे फल फूला, कोरे चर पैस चरावन जाई, बार बैल गोन कर आई, कहत कदीर जो इस पद बूझे, राम रमत तिस सब किछ सूझे, 22 चौपदे कथा पंचपदे।

कोई आशा। जो मैं रूप किए बहु तेरे, अब पुन रूप न होई, ताजा तन साज सब खाता, राम नाम बस होई, अब मोहे नाचनो ना आवे, मेरा मन मंदरी।

कहां गया परम सब छूटे। सर्व पूत ए कह कर जानिया चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया पहे राम प्रसादा। आशा रोजा करे मनावे अल्हो स्वागत जी सिंघारे, आपा देख अवर नहीं देखे काहे को चख मारे। काजी साहिब एक तो ही मैं तेरा सोच विचार न देखे, खबर न करे दीन के बौरे ताते जन्म अलेख है। रहाओ साच कतेब बखाने अल्हो नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुने ना ही कछ गौरे जो दिल में खबर न होई।

कितनी में पाई हर की कथा अनाहद बानी हंस हुए हीरा ले पछानी रहाओ तें कबीर ही रास देखियो जग में रहा समाए गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब गुरगम दिया दिखाई आशा पहली करूप कुछ आप कुलखनी सहुरह पे बुरी अब की स्वरूप

कहा कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग तरयो लोहरी संग पई अब मेरा जेठी और तरयो आशा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राखियो राम जनिया नाओ इन मुंडियन मेरा कर कुंदरावा बिटवे राम रमौआ लावा रहाओ कह कबीर सुनो मेरी माई इन मुंडियन मेरी जात गवाई आशा रहो रहो री बहुरिया कुंगत जिन काडे अंक की बार लहेगी ना आडे रहाओ कुंगत काड गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगत काडे की एह बढ़ाई दिन दस पांच बहु पले आई कुंगत तेरो तो पर साचे हर गुन गाए कूद है अर नाचे।

कोरी को काहू मरम न जाना, सब जग आंत आयो ताना। रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरो ताना। तरन आकाश की करघ बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई। पाई जोर बात इक कीनी, तह कांति मन माना। जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पछाना।

ना जीवो, भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम त्यावो, सोने की सुई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा, आशा साप कुंच के डे दिख नहीं छाडे, उदक माहे जैसे बग त्यान माडे, काहे को की जय त्यान जपन्ना, जब ते सुध ना ही मन अपना, रहाओ सिंगच पोजने जो नर जाने, ऐसे ही ठग देओ बखाने, नामे के स्वामी लाए ले चगरा, राम रसायन पियो रे दगरा, आसा पार ब्रह्म जे चीन सी, आसा ते ना भाव सी, रामा भगतें।

पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जान है ताकि के तक आस, मादो अभिव्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ

काल पास अदद लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तक गुर ज्ञान भगत जन पै हर।

संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माँ जय दी जय देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्गे संत चो ओलग ओलगणी और इत मांगो भगत चिंता मन जनी लखावो असंत पापी सन रविदास पने जो जाने सो जान संत अनंत अंतर नाही आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे संग तुम्हारे बासा नीच रूख ते ऊंच पए हैं गंध सुगंध निवासा मादो सत्संगत सन तुम्हारी हम अवगण तुम उपकारी रहाओ तुम मक्तूल सुपेत सपैयल

चरण अरविंद पान मन, पान करत पायो पायो रमैया धन, रहाओ संपत विपते पटल माया धन। पान है मगन होत

हर हर हर हर हर हर हरे, हर सुमरत जन गए निस्तरे, रहाओ हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर, निमत नाम दियो दूध पियाया, तो जग जन्म संकट नहीं आया, जन रविदास राम रंग राता, क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है, रहो जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है, मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

लालच दिख काम लुगध राता, मन बिसरे प्रभ हीरे रहाओ। दिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुंते पीत बदी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ज्ञान मान मन एक मये, प्रेम तगत मानी सुख जानिया, तृप्त अघाने मुकुट भये। ज्योत समाए समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया करनी तर, मिल जन संत सम

त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय वक्षया पार ब्रह्म पगता में गनिया।

राग गुजरी महला पहला, चौक दे कर पहला। तेरा नाम करी चरनाठिया, जे मन उरसा होए, करने कुंगु जेर ले, कट अंतर पूजा होए। पूजा की चे नाम त्याय, बिन नावे पूज न होए रहाओ। बाहर देव पखालिए, जे मन तोवे कोए, झूठ लह जियो मन।

रहाओ। राव सस दीपक जाके त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरुमुख हुए सो एनस निर्मल, मन मुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करें नित चगरा, दो लोचन क्या हेर, अंतर ज्योत शब्द सुन जागे, सतगुर चगर निवेर, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी, सच महल अपारा, नानक सहज।

पाए। जित कम हर विसरे दूजे लगे जाए, ऐसा सतगुरु सेविए मना जित सेविए, गोविंद प्रीत उपजे अवर विसर सब जाए। हर से की चित दहर है जरा का पौ ना हो वही, जीवन पदवी पाए रहाओ। गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी आप से ती आप खाया, कामन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समय। दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाये, जे लोचे सब कोय, पूरे की पाल विचो निकले ता सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुर की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे, सतगुर का पाना चित करे, सतगुर आपे कृपा करे। गुजरी महला तीजा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाये, दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी, गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, यहाँ सेव बनी जियो राव। हर मेरा सुमृत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधक, हर मेरा भाई, हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है, हर मेरा साथ अंत होए सखाई। हर दिन होर रास पूरी है, चल दिया नाल न जाई, हर मेरा तन मेरे साथ चाले, जहाँ हो जाऊं तह जाई। सो टूठा जो टूठे लागे, सूठे कर्म

जाओ। सतगुर मिले हर मन वसे, सहजी रहे समाए रहाओ। जहाँ पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए, बैराग ते हर पाए हर सु रहे समाए। सिर मुकते जे मन जिन्हें फिर तात न लागे आए, दसवें द्वार रहत करे त्रिभुवन सो जी पाए। नानक गुर ते गुर होया वेखो तिस की रजाए।

ही अंत गया पछताए। शिव मन काशी सब तीर्थ सिमरत सतगुरु दिया बुझाए। अक्सर तीर्थ किस संग रहे जिन हर हृदय रहा समाए। नानक सतगुरु मिले हुक्म बुझिया एक वसिया मन आए। जो तुद पावे सब सच है सच्चे रहे समाए। गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडते सुन सिख सच्चे। दूजे पाए जेता पहे परत गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर सबद सोजी होई। हर रस रसना चाक तू तामन निर्मल होई राव। सतगुरु मिले मन संतोखी है ता फिर कृष्णा पूख न होए। नाम निधान पाया पर कर जाय न कोई। कतनी बदनी जे करे मन मुख बूझ न होए।

सो मूर्ख जो आप ना पछाने सच ना करे प्यार, सच्चे जगत डहकाया कहना कछु न जाए, नानक जो किस

संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते पादहीन जम पास, जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुरु संगत पाए तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम प्रगास, गुजरी महला चौथा, गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सतसंगत शब्द मन मोह है, जप गोविंद गोविंद त्याय सबको दान दे प्रभ ओ है, मेरे भाई जना मोह को गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है, गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है, रहाओ सुख सागर हर पगत है गुरमुख कौला रिद सुध लागे पग ओ है, जन को राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नामे सो है, दुर्मत पादहीन मत फीके नाम सुनत आवे मन रो है, कौआ काग कौ अमृत रस पाई है तृप्त विस्ता खाए मुख गो है, अमृत सारे सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो है, नानक तन तन वड्डे वड पागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है, गुजरी महला चौथा, हर जन उत्तम उत्तम बाणी मुख बोले पर पुकारे, जो जन सुने सरदार।

तुम प्राण सतगुर गुर पूरा हम पापी गुर निस्तारे रहाओ। गुरमुख वड पागे वड पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे गुरमत पगत पंडारे जिन दर्शन सतगुर सतपुरुष नाम

नानक जन हर की शरणाई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी महला चौथा। ओ दयाल मेरा मन लावो, है अंगन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपिए दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्ज है ले छाई राव। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुरु शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाय, नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दर्जे हर हर देव डियाई, तन तन सबा।

पड़या सैल पत्थर में जंतु पाए ताका रिजक आगे कर तरया मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरया गुरु प्रसाद परम पद पाया सूखे पास ठहरया रहाओ जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरया सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन पौ करया।

हारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को बिरला सेवक होर सगले व्योहारी रहा सासत वेद सिमरत सब सोदे सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुक्त न को पावे मन वेखो कर बिचारी। अस सच मज्जन कर सुनाना प्रम आए थर सारी अनक सोच करे दिन राती बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जगत आयो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेख बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो।

कोट न आवे हलत पलत के संगे लाज खजाना गुरु नानक को दिया यो मन हर रंग रंगे। निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा पजो जगदीश रहाओ सतगुर तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत काकड़ पथ पर।

रंग तमाशा पूर्ण आशा कभी न व्यापे चिंता। पावर तुम्हारा यो मन हो हर चरणा हो कौला नानक दास उन

सहाओ। देश कमावन तंजोरन की मनसा भी चैनिक से सास, लश्कर नेब खवास सब त्यागे जमपुर ऊट।

सोई फिर फिर खात सहज सुभाए भय कृपाला उस जन की काटी फांस कहो नानक गुरु।

कर आया, कल कलेश मिटे छिन पीतर, नानक सहज समाया गुजरी महला पंजवा। जिस मानुख पे करो बिनंती, सो अपने दुख परया, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, तिन पौ सागर तरया। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे, प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है, तित मान महत जस काटे। रहाओ माया के संबंध सेन साथ, तित ही कामना आया, हर का दास नीच कुल ऊंचा, किस संग मन बांचित फल पाया। लाख कोट बिखिया के बिंजन, ता मैं तृष्ण न बूझी, सिमरत नाम कोट उजियारा, बस्त अगोचर सूजी। फिरत फिरत तुम रे द्वार आया, पै पंजन हर राया, साध के चरण तूर जन बांछ है, सुख नानक हो पाया। गुजरी मेला पंजवा, पंच पदा कर दूजा इको अंकार।

सुंदर बाग मंदिर संग न कछु जाया, अवर सब मिथ्या लोभ लभी, गुरपुर दियो हर नामा, जी को एहा वस्त सभी रहाओ। इष्ट मीत बंद सुत पाई, संग बनता रच हसया, जब अंति

चलन नाही एक पैरे, नाम तन नाम सुख राजा नाम कुटुंब सहाय, नाम संपत गुरु नानक को दी ओ मरे।

राम निदान सतगुरु दृढ़ाया दिलस ना आवे जाई हर जप माया बंधन टूटे अरे कृपाल दयाल प्रभ मेरे साध संगत मिल छूटे रहाओ। आठ

सगल करत नमस्कारो, वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो, ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो, सगल सृष्ट को तनी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुध पाई, हर कीर्तन आधारो, नाम देव त्रिलोचन।

पई कल्याण आनंद रूप हुई है, उबरे बाल गोपाल रहाओ, मिल वर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जिन सबका किया उधार, गुजरी मेला पंजवा। मात पिता पाई सुख बंदत, तिन का बल है थोरा, अनक रंग माया के पेखे, किछ साथ न चाले पोरा, ठाकुर तुझ बिन आए न मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा, साध संग नान

मन को ए उपदेश दृढ़ावे, सहज सहज गुण गाई, साजन ऐसो संत सहाई, जिस पेटे टूटे माया बंद, बिसरना कभू जाई राव, करत करत अनिक

पूरे मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा सर्व प्रत पालक प्रभु को सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम समारो तुम ही कहो प्रभु आही नानक टेक पही करते की और आस बिदानी लाही।

ओर चित चित वो हर रसन अरादो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर बिनो करो कर जोर नाम जपे नानक दास।

कपटे अनेक जुगत कर कायो विसरत प्रभु के ते दुख गनिय महामोनी खायो करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो गोविंद दयाल कृपा।

मिटै सगल उपाद रहाओ। मात पिता सुत मीत पाई तिस बिना नहीं कोए। ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रविया सोए। कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवे काम। शरण साधु निर्मला गत होए प्रभ के नाम। अगम दयाल प्रभ ऊंचा।

राम सास सास ना बिसर कबहू ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगनत सदा कथ दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर शरण गुजरी मैला पंजवा अहं बुद्ध बहु सगन माया महा दीर्घ रोग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो।

दुख निवारे, मिले हर जन संत, सर्व विद प्रमते पुकारे, कतै नाहीं छोट, हर चरण शरण अपार प्रभु के।

तुझ बिन अवर ना ठाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, जपी तुम्हारा नाव रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी, वड्डे पाग लागी, कवल प्रगास पए साध संगे, दुर्मत बुद्ध त्यागी, आठ

मोख मुकत सो पाए चेतो बास दियो मनवाली राम हृदय जप माली राव उर्द मूल जिस साख तलाहा चार वेद जित लागे सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे पार जात कर आंगन मेरे पोप पत्र पट डाला सर्व जोत निरंजन शंभू छोड़ो बोत जंजाला सुन सुखवंते नाम।

योगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिष्माया मन तत अविजत त्याया गुरु प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात तकियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तास्र साधन जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं बित्तज अमृत पियाया गुजरी मेला पहला कवन कवन जाचे प्रभदाते ताके अंत न परे सुमार जैसी पूख।

जल थल तरण जगन तह नाही आप आप किया करतार। ना तद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ना जोत अपार। सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सो त्रिगुण सार। पवन पानी अगन तिनकिया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार। सर्वे जाचक तू प्रभ दाता दात करे अपने विचार। कोट के तिस जाचे प्रभ नायक देंदे तोट नाही पंडार। पूंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार।

जम जो है बूझे अंतर शब्द विचार। अब तब अवर ना मांगो हर पे नाम निरंजन दीजे प्यार, नानक चात्रिक अमृत।

पत्ताई पाई रे राम नाम चुकलाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाचे ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेट करें पिछिया को केते उधर परन कहताए बिन हर पगत।

सोग विजोग विसर्जत रोग पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सतगुरु वास हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहा हर गुण रसन रवे प्रभ संगे ज्योतिष पावे।

भगत प्रेम अराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल बिनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरणी।

पज शरण सतगुरु उबरे हर नाम रिद रमन गुरमत निर्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित

हर दिन जियरा रह न सके, जो बालक खीर अधारी, अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये, अपने सतगुर के बलिहारी, मन रे हर कीरत तर तारी, गुरमुख नाम अमृत जल पाये, जिनको कृपा तुम्हारी रहा। सनक सनंदन नारद मुन सेवे, अन दिन जपत

का जोत मुरारी सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी भगत जना की उत्तम वाणी गावे अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म पया तिन केरा आप तरे कुलतारी मन मुख दुबदा दुर्मत व्यापे जिन अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना पावे ओई डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल तोवे ओ मल पख माया तारी संत जना की निंदा व्यापे ना उर्वार न पारी यो परपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी हर एक को सूत वरते जुग अंतर सूत खिंचे एकंकारी रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी नानक हर बिन अव

तेरी प्रभ आज्ञा हुक्मन सिर हुक्मा। ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। गुजरी मैला पंजवा कर चौथा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। नाथ नर हर दीन बंदव पतित पावन देव, पै त्रास नास कृपाल गुण निध सफल स्वामी सेव।

हरन मद मोहो दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार तरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिदमंत छेद अहंग बुद्ध करुणा में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहज समाद दीन दयाल प्रसन्न पूरन जाचिय रज साध मोह मिथन दुरंत आसा बासना बिकार रख धर्म परम बिदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड पंडार हर निद होत जिनाना चीर खल मुगद मूड कटाक्ष श्री तर पय गुण मत तीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमणंग परम हंस रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नाम।

जा। एहो जगत ममता मुआ जीवन की बिद नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाए। महला तीजा अंदर सहसा दुख है आपै सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कभे न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मन मुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर न कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रै लोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई। जो तिस पावे तिवें करे तिस बिन अव

ना जाए, सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए, अवर न दूजा क्यों सेवी है जब मैं ते मर जाए, नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने अपना अवरी को चितलाए, नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा, सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच, नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच, कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई अंधा कच निकच पौड़ी, संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया, ज्योति हूँ सब चानना सतगुर सबद सुनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैगुण सिर तंदे लाया, माया का मूल रचायुन तुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा, सो जप सो तप जे सतगुर पावे, सतगुर

माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों करिए तारी, अन दिन पगति रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड़ विकारी, हर हर नाम त्याय है हर हर निस्तारी। श्लोक

हो जाए। हो मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुर मिले हो मैं गई जोत रही सब आए। इहो जीव सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाई है दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सबदे हो मैं खोई है हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विगसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुर स्यो चित न लायो नाम न वस्यो मन आए। त्रिग एवे आ जीविया क्या जुग मैं पाया आए। माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुर स्यो चित लाया तिन सुख वस्या मन आए। हर नाम त्यावे रंग स्यो हर नाम रहे लिवलाए। नानक सतगुर सो तन सौंपया।

छड़ जाए, केसनो कूड़ बोल के खवा लिए, जे चल दिया नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, होता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा, एको ने चल नाम तन, होर तन आवे जाए। इस तन को तस्कर जोए न सके, ना ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जीए से

जिना नाम तन खटिया ए पौड़ी। मेरा साहिब अत वड्डा सच गहर गंभीरा, सब जग तिसके वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाई है नेचल तन थीरा, कृपा ते हर मन वसे पेटे गुरसूरा। गुणवंती सलाया सदा थिर नेचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा। त्रिग तिना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुखों में पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत ओए सुख ना पावे, अंत गए पछताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस होमे विच्चों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊदा कौल है ना तिस भगत ना नाओ, शक्ति अंदर वर्तदा कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चितना पिजई मुख फीका लाओ। ओए तरम रलाए ना रलन ओना अंदर कूड़ सुहाओ। नानक करते बनत बनाई मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे, गुरमुख तरे जप हर नाओ। पौड़ी।

विचों उतरे सुख वसे मन आई सदा सदा सलाई है हृदय लिवलाई। श्लोक महला तीजा जे सतगुरु सेवे आपना तिसनो पूजे सब कोए सबना उपावा सिर उपाओ है हर नाम प्राप्त होए अंतर शीतल सांत वसे जप हृदय सदा सुख होए अमृत खा।

हर सुखदाता मन वसै, हौ मैं जाय गुमान नानक नदरी पाई है, ता अंदिन लागे ध्यान पौड़ी। सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता, तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता, सबना दाता एक है इको हर मिता। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कहिए, जे अंदिन हर लिवलाए, सतगुर पुछे सच संजम कमावे, हो मैं रोग तिस जाए, हर गुण गावे गुण संग्रह है, ज्योति ज्योत मिलाए, इस युग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी, जे हो मैं मेट समाए, नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई है, जे अंदिन हर नाम त्याए। महला तीजा। अंतर कपट मन मुख अज्ञानी, रसना झूठ बुलाए, कपट की तय हर पुरख न पीजे, नित वेखे सुने सुवाए, दूजे पाए जाए जग प्रबोधे, बिख माया मोह सुवाए, इत कमाणे सदा दुख पावे, जम्मे मरे फिर आवे जाए, सहसा मूल ना चुकई विच विष्टा पचे पचाए, जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी, तिस गुर की सिख सुनाए, हर नाम त्यावे हर नामो गावे, हर नामो अंत छड़ाए। पौड़ी। जिन्ना हुकुम मनायोन ते पूरे संसार, साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार, हर की सेवा चाकरी सच्चे शब्द प्यार, हर का महल तिन्नी पाया जिन्हो मैं विचो मार, नानक गुरमुख मिल रहे जब हर नामा उरधार। श्लोक महला तीजा। गुरमुख त्यान सहज तुन उपजे, सच नाम चित लाया, गुरमुख अंदिन रहे रंग राता, हर का नाम मन पाया, गुरमुख हर वेखे गुरमुख हर बोले, गुरमुख हर सहज रंग लाया, नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया, जिसनो कर्म होवे तुर पूरा, तिन गुरमुख हर नाम ते आया। महला तीजा। सत गुर जिना न सेवियो, शब्द ना लगो प्यार, सहजे नाम ना त्याया कित आया संसार, फिर जूनी पाई है विष्टा सदा खुआर, कूड़े लालच लगिया ना उरवार ना पार, नानक गुरमुख उबरे जे आप मेले करतार। पौड़ी। भगत सच्चे दर सोंदे सच्चे शब्द रहाए, हर की प्रीत तिन उपजी हर प्रेम कसाए, हर रंग रहे सदा रंग राते, रसना हर रस प्याए, सफल जन्म जिन्नी गुरमुख जाता, हर जियो हृदय वसाए, बाज गुरु फिरे बिल लांदी, दूजे पाए खुआए। श्लोक महला तीजा। कल युग में नाम निधान भगती खटिया, हर उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंदिन नाम ते आया, विचे गृह गुर बचन उदासी, हौ मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुर अपने विटो, जिन परम पुला मार्ग पाया। महला तीजा। त्रै गुण माया वेख पुले, ज्यो देख दीपक पतंग पचाया, पंडित पुल पुल माया वेखे, दिखा किने क्यों आन चढ़ाया, दूजे पाए पढ़े नित बिखिया, नावो देख खुआया, जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अंकार बहु गर्भ बधाया, छादन भोजन ना लेही सत पिखिया, मन हठ जन्म गवाया, एतड़िया विच्चों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनो आख सुनाई है, जा कर दे सब कराया। पौड़ी। माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अंकारा, ए जम की सिरकार है, एना ऊपर जम का दंड करारा, मन मुख जम मग पाईन, जिन दूजा पाव प्यारा, जम पुर बदे मारियन को सुने ना पुकारा, जिसनो कृपा।

चितलाए दे तिना व्याप रही लपटाए गुर कै शब्द पर जा लिए ता ए विचों जाए तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए नानक माया का मारण हर नाम है गुरमुख पाया जाए महला तीजा त्यों मन केतड़िया जुग परमिया थिर रहे ना आवे जाए हर पाणा ता परमायन कर परपंच खेल उपाए जा हर बख्शे ता गुर मिले अस्थिर रहे समाए।

आप वसरया आप रसभोगी आप अतीत अलिप्त है निर्जोग हर जोगी ज्योतिष पावे सो करे हर करे सो होगी हर गुरुमुख नाम ते आई है।

नानक वाह वाह करत्या प्रभ पाया करम प्राप्त होए मैला तीजा। वाह वाह करती रसना सबद सुहाई पूरे सबद प्रभ मिलियाई वड पागिया वाह वाह मोह कढाई वाह वाह करे सही जन सोने तिनको प्रजा पूजन आई। वाह वाह करम प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी। बजर कपाट काया गढ़ पीतर कूड़ कुसत अभिमानी परम पूले नदर नामनी मनमुख अंध अज्ञानी उपाय कितै न लबनी कर पेख थके पेखवानी। गुर शब्दी खोलायन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह करत्या रैन सुख विहाय वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए। वाह वाह करत्या हर्ष्यो लिवलाए वाह वाह करमी बोले बोलाए। वाह वाह करत्या शोभा पाए नानक वाह वाह।

है जे सतगुरु दिया दिखाए महला तीजा वाह वाह गुरमुख सदा करे मनमुख मरे बिख खाए ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए गुरमुख अमृत पीवना वाह वाह करे लिब लाए नानक वाह वाह करे से जन निर्मले त्रिभवन सोजी पाए पौड़ी हर के पाणे गुर मिले सेवा भगत बनी जय हर के पाणे हर मन वसे सहजे रस पी जय हर के पाणे सुख पाये हर लाहा नित ली जय हर के तख्त बहालिये निज कर सदा वसी जय हर का पाणा तिन्नी मन्या जिना गुरु मिली जय स्लोक महला तीजा वाह वाह से जन सदा करे जिनको आपे दे बुझाए वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे हों मैं विच्चों जाए वाह वाह गुर सिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए वाह वाह करें से जन सोहने हर तिन के संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहारे जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाह जल फल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुरसिख नित सब करो गुरपूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे इस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणी है सच है समाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमत्ती हर रस चाखिया से पुन पराणी। बिन गुर किने न पायो पच मोए अजानी। श्लोक महला तीजा। वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न

सो होए, वाह वाह अमृत नाम है, गुरमुख पावे कोए, वाह वाह कर्मी पाईए, आप दया कर दे। नानक वाह वाह गुरमुख पाईए, अंदिन नाम ले महला तीजा।

अतर लोभ विकार है दूजे पाए खुआए जम्मण मरण न चुकई हो मैं विच दुख पाए। जिना सतगुरु से चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना हो वही ना ओए दुख सहाए। नानक गुरुमुख उबरे सच्चे सबल समाए।

टाडी दर कर पाए सी सच रखे उतार, टाडी का महल अगला हर कहनाए प्यार, टाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा, गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना, गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना, जिस सतगुरु मिले तिस तौ पवे सा कुलवंती नार, सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनो कृपा कीती करतार, ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार, पै पै मल कटिए निर्मल होवे शरीर, अंतर प्रगास मत उत्तम होवे हर जप गुणी गहीर, पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार, कैथे सुख वडियाईयां दरगें।

तैया तिथै सोग विजोग ना व्यापये अस्थिर जग थिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किछ आवन जान है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सो हो आपरवान नानक जे को आप गणाईदा सो मूरख गावार। महला तीजा। मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जह खिंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया अमृत हर का नाव सदा त्याया संत जना के संग दुख मिटाया नानक पय अचिंत हर तन ने चलाया। श्लोक महला तीजा। खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय महल पगती कर सरे सज्जन पाहुण्यो बरसना ता बरसकना बहुड़ बरसे काहे नानक तिन बलिहारण जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा। मिठा सो जो पावदा सज्जन सो जे रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याए जी जंत सब तेरे आ तू रहा समाए जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाए चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा। आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए नानक आशा पूरिया।

गुर आराधना जेवा जप गुरु नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुरु नाओ सतगुर से तीरतिया दरगे पाये ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वस दे जग में उत्तम काडिये विरले के ईके महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन सात जना कै संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है सच्चो सच्चा सच सच निहारी है कूड़ न जापे किछ तेरी तारी है सबसे दे दातार जेत उपारी है इकत सूत परोए जोत संजारी है हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है तेरी गत मित लखी ना जाए हों तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर्म है पाहे जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा किती बहन बहने मुच बजाएं वाज नानक सच्चे नाम विण किसे न रहिया लज। पौड़ी तुद त्यायन बेद कते बां सन खड़े गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े ब्रह्मे तुद त्यायन इंद्र इंद्रासना शंकर विष्णु अवतार हर जस मुखपणा पीर पिकाबर शेख मसायक औलिए ओत पोत निरंकार कट कट मौलिए कूड़ो करे विनाश तरमे तगी है जित जित लाए आप तित तित लगी है। श्लोक महला पंजवा चंग्याई आलक करे बुर्याई होए शेर नानक अजकल आवसी गाफल फाही पेर। महला पंजवा कितिया कुटंग गुज्जा थी है नाहित नानक तै सह ककिया मन में सच्चा मित। पौड़ी हौ मांगो तुझे दयाल कर दासा गोलिया नौनिद पाई राज जीवा बोलिया अमृत नाम निधान दासा कर कणा तिन कै संग निहाल श्रवणी जस सुना कमावा तिन की कार शरीर पवित्र होए पखा पानी पीस भिक्षा पैर तोए आपको कछु न होए प्रभ नदर निहाली है मोहि निर्गुण दिचै थाओ संत धर्मशाली है। श्लोक महला पंजवा।

की गई बलाए मिटे अंदेशिया, तिसका दर्शन देख जगत निहाल होए, जन के संग निहाल पापा मैल तोए, अमृत साचा नाओ उथे जापी है, मन को हुए संतोख पुखा त्रापी है, जिस कट वस्या नाओ तिस बंधन काटी है, गुर प्रसाद किने विरले हर तन खाटी है। श्लोक महला पंजवा।

पंजवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रत्ता मूल नानक जो प्रभ पाणिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगै ना मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होए संतोख त्याये सदा हर सो लगा सतगुर सेव जा को कर्म तुर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया नानक लहरी लख से आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन पिहाव लहिक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई संत प्यारे नानक पूरन कामा। पौड़ी पायन सब निधान तेरे रंग रत्या ना होवी पछो ताओ तुदनो जपत्या पहुंच ना सके कोए तेरी टेक जन गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन गुर पै सिफत पंडार कर्मी पाये सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना ताये रखे आप दयाल कर दासा अपने हर हर हर।

तेंदे सिमरन हब किच लगदम बिखमना डिठम कोई जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट न सके कोई पौड़ी होवे सुख कणा दे त्याए वन्ये रोगा कान हर गुण गाए अंदर वरते ठांड प्रभ चित आए पूरन होवे आस नाए मन वसाए कोई न लगे बिघन आप गवाए ज्ञान पदार्थ मत गुर ते पाए तिन पाए सभ्य थोक जिस आप दिवाए तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैडा खोज न खुंबे मंज मुहब्बत तेरी कौ सह चरणी मैडा हीड़ा सीतम हर नानक तुल्हा बेड़ी। महला पंजवा। जिना दिसंदड़िया दुरमत बंजे मित्र असाडड़े से हों टूडे दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया पगता डिठिया मन की कटिये मैल साथ संग उठिया जन्म मरण पौ कटिये जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस्यो लाइन रंग जिस दी सब तारिया ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा। बार विडानले हुमस तुमस कूका पैया राही तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अनद सेती बन गाही। महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग न की चई नानक जिना अपना सुआओ। पौड़ी सावेला परवान जिस सतगुर पेटिया हुआ साधु संग फिर दूख न तेटिया पाया नेचर थान फिर गर्भ न लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए त्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखों बोलेटिया हुक्मे बुझ निहाल।

सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुर न खोटिया। श्लोक महला पंजवा। विछो है जम्बूर खवे ना मंजन गाखड़े जेसो तनी मिलन नानक सुख संभू सच। महला पंजवा। जिमी वसंदी पानी है ईदन रखे पाए नानक सो सो आहे जाके आडल हब को। पौड़ी। तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे सोई वरते जग जे किया तुद तुरे। बिस्म पे बिस्माद देख कुदरत तेरिया शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया। तेरे हाथ निधान पावे तिस दे जिसनो होए दयाल हर नाम से ले। अगम अगोचर बेअंत अंत न पाये जिसनो हो है कृपाल सो नाम ते आई है। श्लोक महला पंजवा। करछिया फिरन सुआव ना जान सुनिया से मुख दिसन नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा। खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़ कैसे दिती वाड़ नानक खेत न छिजई। पौड़ी। आरा दियो सच्चा सोए सब किस जिस पास दोहा सिरिया खसम आप खिन में करे रास। त्यागो सगल उपाव तिसकी ओट गहो पौ शरणाई पज सुखी हो सुख लहो। कर्म कर्म तत् ज्ञान संता संग होए जपिए अमृत नाम बिघन न लगे कोए। जिसनो आप दयाल तिस मन उठिया पायन सब निधान साहिब तुठिया। श्लोक महला पंजवा। लदम लबन हार कर्म करन दो मापिरी इको सिरजन हार नानक बिया ना पसी है। महला पंजवा। पापड़िया पछाड़ बाण सचावा सन कै गुर मंत्रड़ा चितार नानक दुख न थी वही। पौड़ी। वाह वाह सिरजन हार पायन ठाड आप जी जंत मेरवान तिसनो सदा जाप। दया तारी समरथ चुके बिल बिलाप नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप। कीतियन अपनी रख गरीब निवाज थाप आपे लयन छाए बंधन सगल काप। तिसन बुझी आस कुन्नी मन संतोख त्राप वड्डी हूँ वड्डा अपार खसम जिस लेप न पुन पाप। श्लोक महला पंजवा। जाको पै कृपाल प्रभ हर हर से जपात नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों पेटत साध संगात। महला पंजवा। राम रमो बड़ पागी हो जल थल मही अल सोए नानक नाम अराध्य बिघन न लागे कोए। पौड़ी। पगता का बोलिया परवान है दरगे पवे थाए पगता तेरी टेक रते सच नाए जिसनो होए कृपाल तिसका दुख जाए। भगत तेरे दयाल ओ ना मेहर पाए दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए। भगता एहो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रैन इको इक त्याए पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अगाए। श्लोक महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अन दिन बिलपते ज्यो सुनजे कर काओ। महला पंजवा। प्री मिलावा जाथी है साई सुहावी रुत कड़ी मोहत ने विसरे नानक रवि है नित पौड़ी। सूर वीर वरियाम किने न होड़िए फौज पानी हाठ पंचा जोड़िए दस नारी औ दूत देन चमोड़िए जिन जिन लैन रलाए एहो ए ना लोड़िए। त्रै गुण इन कै वस किने न मोड़िए परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़िए। गुरपुरा आराध बिखम दल फोड़िए हौ तिस अगे दिन रात रहा कर जोड़िए। श्लोक महला पंजवा। किलविक सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेसा उपजे नानक बिसरे नाओ। महला पंजवा। नानक सतगुर पेटे पूरी हो वै जुगत हसंदिया खेलंदिया पैनंदिया खावंदिया विचे हो वै मुक्त पौड़ी। सो सतगुर तन तन जिन परम गर तोड़िया सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया। नाम निधान अखुट गुर दे दारुओ महारोग विकराल तिने बिदारुओ
पाया नाम निधान बहुत खजानिया, जिता जन्म अपार आप पछानिया। महिमा कही न जाए गुर समरथ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेव। श्लोक महला पंजवा। उद्यम करेंदिया जियो तू, कमाउंदिया सुख पुंच, त्याइंदिया तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी, कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डर पिए, जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए। आए चित निहाल साहिब बेसुमार, तिसनो पोहे कवन जिस वाल निरंकार। सब किछ तिस कै वस ना कोई बारा, सो पगता मन उठा सच समाहरा। तेरे दास ते आयन तुद तू रखन वालिया, सिर सबना समरथ नदर निहालिया। श्लोक महला पंजवा। काम क्रोध मद लोभ मोह, दुष्ट वासना निवार, राख लियो प्रभ अपने, नानक सद बलिहार। महला पंजवा। खांदिया खांदिया मोह कटा, पैनंदिया सब अंग, नानक त्रिग तिना दा जीविया, जिन सच ना लगो रंग पौड़ी। ज्यो ज्यो तेरा हुक्म त्यों त्यों होना, जय जय रखे आप तह जाए खड़ोवना। नाम तेरे कै रंग दुर्मत तोवना, जप जप तुद निरंकार परम पौ खोवना। जो तेरे रंग रते से जोन ना जोवना, अंतर बाहर इक नैन अलोवना। जिनी पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना, नाओ नानक बख्शीस मन माहे परोवना। श्लोक महला पंजवा। जीवन दिया ना चेत्यो मुआ, रलंदड़ो खाक, नानक दुनिया संग गुदारिया, साकत मूड नपाक। महला पंजवा। जीवन दिया हर चेत्या, मरन दिया हर रंग, जन्म पदार्थ तारिया, नानक साधु संग पौड़ी। आप जुगादी आप रखन वालिया, सच नाम करतार सच पसारिया। ऊना कही न होए कटे कट सारिया, मेहरवान समरथ आपे ही कालिया। जिन मन उठा आप से सदा सुखा लिया, आपे रचन रचाए आपे ही पालिया। सब किछ आपे आप बेअंत अपारिया, गुर पूरे की टेक नानक समालिया। श्लोक महला पंजवा। आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया, सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया। सादा संग अपार अंदिन हर गुण रवे, पाए मनोरथ सब जोनी नै पवे। सब किछ करते हथ कारण जो करे, नानक मंगे दान संता तूर तरे। महला पंजवा। तिसनो मन वसाए जिन उपाया, जिन जनते आया कसम तिन सुख पाया। सफल जन्म परवान गुरमुख आया, हुक्मे बुझ निहाल खसम फुरमाया। जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया, जो जो दिता खसम सोई सुख पाया। नानक जिसे दयाल बुझाए हुक्म मित, जिसे पुलाए आप मर मर जम्मे नित पौड़ी। निंदक मारे तत्काल खिन टिकन न दिते, प्रभ दास का दुख ना खब सके। हर जोनी जुते मत्थे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते, दुख लगे बिल लाणिया नरक कोर सुते। कंठ लाए दास रखियन नानक हर सते। श्लोक महला पंजवा।

महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अन दिन बिलपते जो सुन्ये कर काव पौड़ी सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया इच पुन्नी मन आस गए विसूरिया पाया नाम निधान जिसनो पालदा जोत मिली संग जोत रहया कालदा सुख सहज आनंद उठे तित कर आवन जान रहे जन्म ना तहां मर साहेब सेवक इक इक दृष्टाया गुर प्रसाद नानक सच समाया।

चार पाव दो सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। ऊठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुसखई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महा परम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसर्यो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों

सतगुरु प्रसाद। जो राज दे ता कमन बढ़ाई, जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई। तू हर पज मन मेरे पद निर्बान, बौर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई। सतगुरु मिले।

मले ना लाछे पार मलो परमलियो बैठो री आई आवत किने ना पेखियो कमने जाने री बाई कौन कहे किन बूजिए रमैया आकुल री बाई रहाओ ज्यो आकाश है पंखियलो खोज निरखियो ना जाई ज्यो जल माजे माछलो मार्ग पेखनो ना जाई ज्यो आकाश है कड़ुअलो मृग तृष्णा परिया।

त्रिलोचन जियो के पदे कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद। अंतर मल निर्मल नहीं कीना बार पे खुदासी हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना काहे पया सन्यासी। परमे पूली रे जय चंदा नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ कर कर खाया पिंड बंडाया चिंता मुंडा माया ओम मसान की पसम लगाई गुर बिन तप्त न पाया काय जपोरे काय तपोरे काय बिलो वो पानी लख चौरासी जिन उपाय सो सिमरो निर्वाणी काय कमंडल कापड़िया रे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही गुजरी। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे सर्प जोन वल वल अवतरे अरि बाई गोविंद नाम मत बिसरे रहाओ। अंत काल जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे बेसवा जोन वल वल अवतरे अंत काल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे सूकर जोन वल वल अवतरे अंत काल जो मंदर सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे प्रेत जोन वल वल।

सतगुरु प्रसाद। परमाद पुरख मनोपिमंग सत आद पावरतंग परमद पुतंग परकृत परंग जद चिंत सर्वगतंग केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयं नादनोत जस समरणेन जन्म जराद मरण पयं रहाओ इच्छस जमाद पराभयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं पावपूत पाव समभ्यं परमं प्रसन्न मिदं लोबाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर पगत निज ने केवला हृद कर्मणा।

लकड़ी मदरी ठाकुर पाई ओ सुंदर हर कुल मिली। एको प्रयो सखियां सब तरह की जो पावे पुरसा बली। नानक गरीब क्या करे बिचारा हर पावे कित रहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलू ले राती। हर प्रेम पीनी चोली है रहा हो फिरो दीवानी आवल बावल किस कारण हर टोली है। कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा हम किसकी गुलगोली है। सतगुरु पुरख मनावो अपना हर अमृत पी चोली है गुरु प्रसाद।

बुरा कहो हम तन दियो है तार। जो आओ शरण ठाकुर प्रभ तुमरी किस राखो कृपा थार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार। देव गंधारी हर गुण गावे हों किस बलिहारी। देख देख जीवा साध गुर दर्शन जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ। तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी हम क्यों कर मिले जुठारी। हमरे जिए होर मुख होर हो तो है हम कर्म ही कूड़ियारी। हमरी मुदर नाम हर स्वामी रुद अंतर दुष्ट दुष्टारी। जो पावे क्यों राखो स्वामी जन नाम शरण तुम्हारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नट्टी। जो बेसुआ के कर पूत जमत है किस नाम परयो है कपटी रहाओ। जिनका हृदय नाहि हर स्वामी ते बिगड़ रूप बिनरक्ती। जो निगुरा बहु बाता जाने ओह हर दरगे है प्रस्ती। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी तिना साध जना पग चकती। नानक पतित पवित मिल संगत गुर सतगुर पाछे चुकती। छक्का पहला देव गंधारी महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुर चरणी चितलाई है प्रभ होए कृपाल कमल प्रगासे। सदा सदा हर त्याई है रहाओ अंतर एको बार एको सब में एक समाई है। काट अब घट गविया सब खाई हर पूरन ब्रह्म दिखाई है। पुस्तक करें सेवक मुन के ते तेरा अंत ना कतहू पाई है। सुख दाते दुख पंजन स्वामी जन नाम सद बल जाइए। देव गंधारी माई होन हार सो होई है। राज रहो रचना प्रभ अपनी कहां लाभ कहां खोई है रहो। कै फूले आनंद बिखे सोग कब हसनो कब रोई है। कब हूँ मैं परे अभिमानी कब साधु संग तोई है। कोई न मेटे प्रभ का किया दूसर नाही अलोई है। कहो नानक किस गुर बलिहारी जिन पर साग सुख सोई है। देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत। मेर ते तजो अभिमाना शरण स्वामी की परत रहाओ। जो जो कहे सोई पल मानो नाही ना का बोल करत। निम्फ न बिसरो हिये मोरे ते बिसरत जाई हों मरत। सुखदाई पूरन प्रभ करता मेरे।

देवनारी मन सगल स्यानक रही, कर्म कराम हार स्वामी नानक कोट गही रहाओ, आप नेक पै शरणाई एह मत साधु कही, प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा लही। जान प्रवीण स्वामी प्रभु मेरे शरण कुमारी अही, खिन मैं

अंग गुंग पिंगल मत हीना प्रभ राखो राखन हारा करें करावन हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी महला पंजा। सो प्रभ नेरे हूते नेरे सिमरत आए गाय गुण गोविंद दिन रैन सांझ सवेरे रहाओ उदर दे दुलभ साधु संग हर हर नाम जपे रह करी न मोहत न चसा बिलंब हो काल नित नित हेर अंग बिलाते काजो करते क्या नाही करते रह नाम आधार दी जय नानक को अंग सूख कने रह छके दूजा देव गंधारी महला पंजवा। मन गुरमिल नाम आराध्यो सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल बांधो रहाओ कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया पांदो पाओ भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साध्यो पयो अनुग्रह मिट्यो मोर्चा अमोल पदार्थ ला दियो बलिहार नाम लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगा दियो देव गंधारी महला पंजवा। माई जो प्रभ के गुण गावे सफल आया जीवन फल ताको पार ब्रह्म लिवलावे रहाओ सुंदर सुगड़ सूर सो बेता जो साधु संग पावे नाम उचार करे हर रसना बहुड़ न जो नी पावे पूरन ब्रह्म रविया मन तन में आम न दृष्टि आवे नरक रोग नहीं होवत जन संग नानक जिस लड़ लावे देव गंधारी महला पंजवा। चंचल सुपने ही उड़ जायो इतनी न बूझे कभू चलना बिकल पयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया बिखिया एक उपायो लोग सुने मन सुख कर माने देव कहाँ उठतायो फिर्क बहुत श्रम पायो संत दुआरे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो। देव गंधारी महला पंजवा सर्व सुखा गुर चरना कलमल दारन मने सुधारन एह आसर मोहे करना रहाओ पूजा अर्चा सेवा बंदन एह टहल मोहे करना बिकसे मन होवे प्रगासा बहु न गर्वे परना सफल मूरत परसों संतन की एह त्याना करना पयो कृपाल ठाकुर नानक को परयो साध की सरना। देव गंधारी महला पंजवा अपने हर पै बिनती कही है चार पदार्थ अंग मंगल निध सुख सहज सिद्ध लही है रहाओ मान त्याग हर चरनी लागो तिस प्रभ अंचल गही है आँच न लागे अग्न सागर के सरन स्वामी की अही है कोट पराध महा अकीर्त कान बहुर बहुर प्रभ सही है करुणा में पूरन परमेश्वर नानक के सर नहीं है। देव गंधारी महला पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा रोग सोग सब दुख विनाशे उतरे सगल कलेसा रहाओ जन्म जन्म के किल विनाशे कोट मजन स्नाना नाम निधान गावत गुण गोविंद लागो सहना कर कृपा अपना दास कीनो बंधन तोड़ निहारे जप जप नाम जीवा तेरी बाणी नानक दास बलिहारे छके तीजा देव गंधारी महला पंजवा। माई प्रभ के चरण निहारो करो अनुग्रह स्वामी मेरे मन से कभू न डारो रहो साधु तूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध दिख जारो सब से नीच आत्म कर मानो मन में एह सुख पारो गुण गावे ठाकुर अविनाशी कलमल सगले चारो नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए उधारो देव गंधारी महला पंजवा। प्रभ जियो पेखो दर्श तुम्हारा सुंदर त्यान तार दिल रहनी जी प्राण ते प्यारा रहाओ शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत विचारा दीना नाथ प्राण पत पूरन पव जल उदरन हारा आजुवाद पगत जन सेवक ताकी बिथे अधारा तिन जन की तूर बंश है नित नानक परमेश्वर देव अनहारा। देव गंधारी महला पंजवा तेरा जन राम रसायन माता प्रेम रसा निज जा को उपजी छोड़ न कतहु जाता रहाओ
बैठत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अब सब तीरथ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता सफल जन्म हर जन का उपजया जिन कीनो सौत विदाता सगल समूह लै उदरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता देव गदारी महला पंजवा माई गुरु बिन ज्ञान न पाई है अनेक प्रकार फिरत बिल्लाते मिलत नहीं गोसाई रहा मोह रोग सोग तन बांधियो बहु जोनी परमाई है टिकन न पावे बिन सत्संगत किस आगे जाए रुआई है करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट कोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाई है देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पै कल्याण आनंद रूप हुई है उबरे बाल गोपाल रहाओ दो कर जोर करी बेनंती पार ब्रह्म मन से आया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उधार इको अंकार सतगुरु प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुरु पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख पंजन मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सया कर मस्तक तार साध निवाजे मोहे दुष्ट जो खया परोपकारी सर्व सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण को दाता चरण कमल उर दरिया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो राखन हारे रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछे अंति वारे जब चितो तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ साथ दरसारे मन में राखो एक असारे नानक प्रभ मेरे करने हारे देव गंधारी महला पंजवा प्रभ यह मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोह दीजै कर संतन का चेहरा रहाओ प्रातः काल लागो जन चरनी निष्बासर दर्श पाओ तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावो सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रही है एक आधार नाम तन मोरा अंग नानक एह लही है राग देव गंधारी महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ न जाए सब ही संगे अंदिन गुर मिल गाए रहाओ मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कठू जाए अनक अनक पांत बहु पेखे प्रिय रोम ना समसर लाए मंदर पाग सोग

दर्शन नाम को मन आचे प्रम आयो है सगल खान रे आहे परयो संत पाछे रहाओ किस हो सेवी किस आराधी जो दिसते सो गाचे साध संगत की सरनी परिय चरण रेन मन बाचे जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्तर माया आचे आयो पयो नानक गुरचरनी।

सारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल बिसारे देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारे हो दीन दयाल पे प्रभ अपने बहुर जन्म नहीं मारे हो रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारे हो प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया

बहु व्यंत अत बड़ो गारो खा नहीं अगहु चार तोल न तुलिये मोल न मुलिये कत पाइये मन रूचा खोज असंख्या अनित पंखा बिन गुर नहीं पहुंचा कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव।

अगम अगम्मा कवन महमा मन जीवे सुन सो। चार आश्रम चार ग्रन्ना मुकत पे शेर को। गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो। कहो नानक पव सागर तरिया हर निज पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक कह रे हर एक कह जान एक कह रे गुरुमुख जान। रहाओ काहे परमत हो तुम प्रमो।

महला पंजवा जानी ना जाई ताकी गात रहाओ कह पे थारो हों कर कतराई दिश्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध और साधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्म आदिक चतुर वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत बेअंत तन नानक कह न जाई परे परा देव गंधारी महला पंजवा त्याय गाय करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अंत को ही रे एक समार रहाओ सफल मूरत गुर मेरे माथ है जब तक देखो तब तक साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभ मेरा काट काट

नेक ना करो करे शीख सिखाए रहो अपनी सी दुर्मत से ना डरे रहो मद माया के पयो बावरो हर जस ने उचरे तर पर पंच जगत को ढके

मात पिता पाई सुत बंदक अर्पुन गृह की नाव तन से प्राण होत जब न्यारे तेर को प्रेत पुकार आज धरी को नाखे करते देख निकार मृग कृष्णा जो जग रचना यह देखो हृदय विचार कहो नानक पज राम नाम नित जाते होते उदार देव दंदारी में।

रीत अंधकार संगीन है को ए अचरज है रीत मन मूरख अजहू ने संगत सिख दे हारियो नीत नानक पौजल पार पर जो गावे प्रभ के गीत।

या रहाओ मिथन मोरिया अंत ओ मेरिया विच उमन क्रिया सगल बटरिया बिरख इक परिया बहु बंदे परिया फिर साध सफरिया जय कीर्तन हरिया नानक सरनरिया। इक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागरा महला नावा हर की गत महको जाने जोगी जति तपि पच हारे अर बहु लोग सियाने रहाओ छिन में राव रंग को करी राव रंग कर डारे रीते परे परे सखनावे यह तांको विवहारे अपनी माया आप पसारी आपे देखन हारा नाना रूप तरे बहुरंगी सबसे रह न्यारा अगनत अपार अलख निरंजन जे सब जग परमायो सगल कर्म तज नानक प्राणी चरण ताहि चितलायो। राग बिहागड़ा चंत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम से आई।

मन सिंधिया फल पाया हर प्रभ गुण नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन अमृत उठदा मेरी जिंदड़ी मुख अमृत बैन अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ी मन सुनिए हर लिव लाए राम। चिरी विछुना हर प्रभ पाया गल मिलिया सहज।

कोई हर सब आन मिलावे राम। हाँ मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी, हर सब की हर कथा सुनावे राम। गुरमुख सदा आराध हर मेरी जिंदगी, मन चिंदेरा फल पावे राम। नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी, वड पागी नाम ते आवे राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदगी, गुरमत नाम प्रगासे राम। हाँ हर बाज उगीनिया मेरी जिंदगी, जो जल दिन कम

दिखलै जाए राम मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़ी हर हर नाम ते आए राम हर साज वडे लिख पाया मेरी जिंदड़ी जन नानक नाम समाए राम हर सेती मन भेदया मेरी जिंदड़ी जो बालक लग दुख खीरे राम हर दिन शांत ना पा।

जन नाम घर में लाया मेरी जिंदड़ी कर वाजे शब्द कनेरे राम। मन हो मैं विचड़े मेरी जिंदड़ी बिख बांधे हो मैं जाने राम। जो पंखी कप

हर हर पुरख दयाल है मेरी जिंदगी है, गुर सतगुर वीत लगाया राम, कर कृपा सुन बेनती हर हर जन, नानक नाम से आया राम। बिहागड़ा महला चौथा, जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदगी है, हर कीरत हर मन तारे राम, हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदगी है, जप हर हर नाम उधारे राम। सब के लिए पाप दुख कटिया मेरी जिंदगी है, मल गुरुमुख नाम उतारे राम, वड पुन्नी हर प्याया जन नानक, हम मूर्ख मुगध निस्तारे राम। जो हर नाम से आए दे मेरी जिंदगी है, तिना पंचे वसगत आए राम, अंतर नव निज नाम है मेरी जिंदगी है, गुर सतगुर अलख लखाए राम। गुर आशा मनसा पूरिया मेरी जिंदगी है, हर मिलिया सुख सब जाए राम, गुरमस्तक हर प्रभ लिखिया मेरी जिंदगी है, जन नानक हर गुण गाए राम। हम पापी बलवंशिया मेरी जिंदगी है, पर द्रोही ठग माया राम, वड पागी गुर पाया मेरी जिंदगी है, गुर पूरे गत लित पाया राम, गुर अमृत हर मुख चोया मेरी जिंदगी है, फिर मरदा बहुड़ जीवाया राम, जन नानक सतगुरु जो मिले।

जिन हर हर नाम आधारो राम, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदड़िए, बिक औजल कारण हारो राम, जिन एक मन हर प्याया मेरी जिंदड़िए, तिन संत जना जयकारो राम, नाम तो हर जप

तरस पाताल आकाश है मेरी जिंदगी, सब हर हर नाम ते आवे राम। पौन पानी बैसंतरो मेरी जिंदगी, नित हर हर हर जस गावे राम। वन तृण सब आकार है मेरी जिंदगी, मुख हर हर नाम ते

जो मनुख पाप लुभाने राम जन नानक गुर मिल उबरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम। सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए जो हर हर नाम दृढ़ावे राम हर जप दिया।

ऐसा हर नित सेवी है मेरी जिंदड़ी है जो सब दू सब वड्डा आराम है जिन्नी एक मन एक आराध्या मेरी जिंदड़ी है तिना नाही किसे दी किछ कदाराम गुर सेविया गुर सेविया हर महल पाया मेरी जिंदड़ी है चक मारन सब निंदक कंदाराम जन नानक नाम से आया मेरी जिंदड़ी है तुर मस्तक हर लिख छदाराम बिहागड़ा महला चौथा सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रव तू जाने जो जिए कमाइए राम हर अंतर बाहर नाल है मेरी जिंदड़ी है सब वेखे मन मुकुराइए राम मन मुखामो हर

करते वो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो, जन का मार्ग साधे राम, मार्ग बिखरा साध गुरमुख, हर दरगे शोभा।

ए मन तन सब अर्पे हा राम, मन तन तन सब प्रभु केरा, क्या को पूज चढ़ावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी, सो प्रभु अंक समावे पाग मस्तक होए जिसके, तिस गुर नाल सुनेहा जन कहे नानक मिल साध संगत, हर हर नाम पूजे हा। देह दिस खोजत हम फिरे वे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर तिस में रहा समाए राम, सर्वे समाना आप स्वामी गुरुमुख प्रगट होया, मिटिया अंधेरा दुख नाशा हम्यो हर रस चोया, जहां देखा तहां स्वामी पार ब्रह्म सब ठाए, जन कहे नानक सतगुर मिलाया, हर पाए अड़ा कर आए। राज जहागरा महला पंजवा, अत प्रीतम मन मोहना कट सोहना, प्राण अभारा राम सुंदर शोभा लाल गोपाल।

कवन रसना गुण कना प्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सखी मंगल गाया नानक परम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कल कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे।

कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरत मुगद अनाथ चंचल बलहीन नीच अजाना।

हर की भगत मंगे, हर भगत पाए प्रभ ते आए, जाए मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए।

अंग कूप ते उदर करके सगल कट प्रतपाला सरन तेरी कट महाबेरी इक नाम दे आधारा।

अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने। कर अनुग्रह पतित पावने बहु जोन तम से हारी बिन वंश नानक।

नानक सब किछ आप है अवर न दूज जाए पौड़ी। तेरी वड्याई तू है जानदा, तुझ जेवड़ अवर न कोई, तुझ जेवड़ होर शरीक।

मन पर कीक ना आया सहज न लगो पाओ शब्द साध न पायो मन हथ क्या गुण गाए। नानक आया सो परवान है जो गुरमुख सच समाए।

सतगुर कह तै पन ना करियो रहे अंक समाए। अंदिन सहसा कदी न चूके बिन शब्द दुख पाए। काम क्रोध लोभ अंतर सबला।